ओम शं शनैश्चराय नमः। कलयुग में न्याय के देवता शनि देव भगवान जो सबको कर्म फल देते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शनि की बुरी दशा से बचना हो तो हमेशा अच्छे कर्म करो। एक बार रावण भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को बोले। इस पर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण को कहा कि ये तो मेरे वश की बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ शनि देव ही कर सकते हैं। शनि देव शत्रु नहीं है, शनि देव मित्र हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो।

रावण ने सोचा कि मैं अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को अमर न कर सका तो क्या हुआ, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने होने वाले पुत्र को अवश्य ही अमर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा सोच विचार कर रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों पर चढ़ाई करके सबको पराजित करके सबको बंदी बना लिया, सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रावण ने सबको अपने वश में कर लिया।

महान तपस्वी रावण, जो अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर चुका था, उसने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह और नक्षत्रों को ज्योतिष के हिसाब से अमरत्व के निश्चित स्थान पर बैठाकर अमर योग बना दिया, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो, उसके होने वाले पुत्र को कभी कोई मार न सके।

न्याय करने की बात सोचने लगे और जन्म का शुभ मुहूर्त आने के सही वक्त पर उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया, जिससे अमर योग समाप्त हो गया। और अमर योग के समाप्त होने पर रावण ने क्रोध में आकर शनि देव के पैर पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक पैर सदा के लिए लंगड़ा हो गया।

प्रिय भक्तजनों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शनि देव सच में न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं समस्या में चले जाते हैं, मगर अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए तो कहते हैं, सुखी रहना है, चिंता से दूर रहना है, तो शनि देव की पूजा करो, शनि देव की आराधना करो। जय शनि देव।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
2: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
1: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों की के बारे में बताया है।
2: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
1: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक आधार उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
0: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
4: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द है, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth at 20th Rozgar Mela this afternoon. Prime Minister Modi to inaugurate International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi today. India and Canada reaffirm their commitment to expedite comprehensive economic partnership agreement negotiations to further deepen economic ties. India ranks first in business climate among 41 global markets, reports Swedish Chamber of Commerce. India's software services exports surge 8.2% year-on-year to over $221 billion in 2025-26, says RBI. And 20th edition of Asian Games 2026 set to begin in Japan today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government organizations at the 20th Rozgar Mela this afternoon through video conferencing.

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: कोई मिल गया
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
6: हाँ, मेरी कसम
5: मिस कर दिया तो रीलोड।
7: चाय चाय चाय
8: बिंदास मॉर्निंग।
5: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

दोस्तों कहते हैं पानी और सोच जितनी साफ रहती है उतनी बढ़िया होती है। देखिए गंदा पानी रहेगा तो वो इंसान को बीमार कर सकता है, अगर सोच साफ नहीं होगी तो वो जिंदगी को खराब कर सकती है। इसीलिए अपने जिंदगी को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपनी सोच को थोड़ा सा अच्छा बनाना बहुत जरूरी है। आज की सुबह इसी बात के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं RJ आनंद को, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। श्रोताओं, ढेर सारी बातें लेकर अब हम आपके रेडियो पर आ गए हैं। आज दिन है शनिवार का, बहुत प्यारा सा दिन है आज। और बात कर लेते हैं भैया समय की, तो 8:21 हो रहे हैं और आज 19 सितंबर की तारीख है। बहुत ही प्यारा दिन है आज के दिन की। ढेरों मंगल शुभकामनाएं आपको देता हूं मैं, आपका रेडियो वाला आनंद। और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं आपके शहर के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन दिस इज कम्युनिटी रेडियो के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारे लिसनर्स हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आई नो। और कुछ लोग अपनी छुट्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं तो कुछ लोग अपने ऑफिस की तैयारी करने वाले हैं। दोस्तों देखिए सुबह सुबह का समय है, हम तो आपसे यही कहेंगे अगर आप अपना वर्कआउट करके आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर करने जा रहे हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। सुबह सुबह वर्कआउट करना बहुत जरूरी है और हम आपके इस टाइम को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे कुछ अच्छे गानों से, ताकि आपको और एनर्जी का डोज मिले और आप थोड़ा सा और अपनी तरफ से 100% दें, है ना। तो बस हम भी अच्छी अच्छी कोशिश करते हैं आपके लिए एवरी मॉर्निंग, एंड आज की मॉर्निंग की किक स्टार्ट करेंगे एक अच्छे गाने के साथ। उसके बाद लौट कर आएंगे तो बात करेंगे, आपके मैसेजेस की तरफ बढ़ेंगे और आज के दिन के बारे में भी बात करेंगे। और आज क्या कुछ खास चल रहा है वो सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं आपके रेडियो स्टेशन पर। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए, सुनते रहिए आनंद को और रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
5: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
4: पर पापा।
5: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
6: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
7: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

बिल्कुल श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं हमारी भी लाइफ में मजे मजे हैं और हम आपके साथ हैं, तो बस आपको पॉजिटिव पॉजिटिविटी देने के लिए आए हैं। वेलकम बैक है श्रोताओं, ढेर सारे संदेश आपके पहुंच रहे हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच। देखिए शुभम त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, लिखते हैं, आनंद जी सुप्रभात, आप ये गाने चलाकर सुबह सुबह बिंदास बना देते हो, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। एक संदेश मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है। ये मुझे दिल्ली रोड पागवाड़ा से मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पर सुमन लाल जी का, इन्होंने भी लिखा है, सर आज की सुबह आपके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी गीत आप प्ले करते हैं, थैंक यू सो मच। आनंद जी नमस्कार, मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम, चौधरी मुमताज आलम, हमारे दोस्त हैं राकेश वर्मा जी, कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ही बढ़िया हूं सर, आपको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, हाय सर नमस्ते, कैसे हो, लाइन पार से हमारे पास मैसेज आ रहा है गरिमा जी का, गरिमा जी मैं बहुत ही बढ़िया हूं। और ये काशीराम गेट से हमारे पास संदेश पहुंच रहा है दिव्या अग्रवाल का, ये लिखती हैं, आनंद जी कैसे हैं आप, सुबह की चाय के साथ आपका स्वागत करते हैं, आपका रेडियो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू सो मच सुबह सुबह इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं हम तो आपसे यही कहना चाहेंगे, आप चाहे जहां भी जा रहे हैं अच्छे से पहुंचिए, लेकिन सुबह सुबह कुछ चीजों को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, जैसे सुबह उठते ही आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा अपने लिए वक्त जरूर निकालें, आप 10 मिनट 20 मिनट हो सके तो अपने लिए जरूर निकालें, ये सबसे कीमती वक्त होता है आपके खुद के लिए। जब आप खुद के लिए समय निकालते हैं तो यकीन मानिए आपकी आधी चीजें तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं ना तो आपको अपने अंदर की चीजों से मिलने का मौका मिलता है। और सुबह सुबह अगर आप बैक टू बैक डेली अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक मतलब टेंशन से बाहर निकालती है, आपकी सोच को पॉजिटिव करने में काफी मदद करती है। तो मैं तो बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप भी देखिए, भले ही सुबह में निकालिए आप अपने लिए 10 मिनट 20 मिनट, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जरूर निकालिए, क्योंकि सुबह जो समय एक बार आप निकालते हो ना अपने लिए, ये समय सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल होता है। ये वही समय होता है जब आप खुद से रूबरू हो पाते हो, अपनी बातों से, अपने काम से, क्या बेहतर करना है, क्या और कैसे करना है। श्रोताओं अच्छी गानों का कॉम्बिनेशन यहाँ चल रहा है, आज 19 सितंबर की तारीख है, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आनंद को, ये आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। आइए बात करते हैं आज के दिन के बारे में, क्या कुछ खास है आज इतिहास के पन्नों में, इस पे हम चर्चा करेंगे, लौट कर आते हैं इस गाने के बाद। एक और बेहतरीन ट्रैक आपके रेडियो सेट में निकाल दिया है, इस गाने के बाद वापस मिलता हूँ, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।

0: आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
2: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मोबिक किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: श्रोताओं, 19 सितंबर की सुबह आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप। आपके शहर के अपने कम्युनिटी रेडियो के साथ 8:51 हो गए हैं। ढेर सारे संदेश लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सारे संदेश हमारे पास पहुंचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। और आज राधा अष्टमी है, तो सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, आज राधा रानी का जन्म दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अभी हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और अब हम राधा जो राधा अष्टमी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यानी कि राधा जो हमारी देवी हैं उनका आज हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। इसे हम कहते हैं राधा अष्टमी। आज के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तरफ से, हमारे पूरे एफएम परिवार की ओर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी राधा अष्टमी।
1: राधे राधे राधे, ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे।
0: एग्जैक्टली,
1: राधे राधे राधे,
0: प्यार हो तो ऐसा,
1: राधे राधे
0: आहा,
1: तेरे बिना कृष्णा तो लगे।
0: जैसे हम आपके बिना आधे हो जाते हैं।
1: राधे राधे,
0: ओ राधे राधे
1: राधे,
0: तेरे बिना
1: कृष्णा तो लगे। राधे राधे,
0: आज गणेश विसर्जन बहुत जोरों शोरों से होने वाला है मुरादाबाद के अंदर। इस पे अभी बात करेंगे लोकल फॉर वोकल में, और क्या चल रहा है मुरादाबाद के अंदर सारी जानकारियां दूंगा आपको।
1: राधे राधे आहा, ओ राधे,
0: जरा सी देर में
1: तेरे बिना कृष्णा तो लगे।
0: हैप्पी राधा अष्टमी, राधे राधे,
1: ओ

चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं जरा फटाफट से आज के इतिहास के पन्नों के बारे में। आज की तारीख क्यों खास है इतिहास के पन्नों के लिए? श्रोताओं, 19 सितंबर की तारीख है, इतिहास के पन्नों के लिए यूं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की तारीख। तमाम सारी चीजें आज के दिन सेलिब्रेट की जाती हैं, ढेर सारे संदेश हमारे पास आपके पहुंच रहे हैं इसी बात को लेकर। किसी ने मुझे कुछ बताया है, कोई मुझे कुछ बताता है, ये मुझे जानकर बड़ा मतलब अंदर से खुशी वाली फीलिंग होती है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारे लिसनर्स भी इतने एक्टिव हैं कि वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमें तरह तरह की बातों को जो है हमारे साथ साझा करते हैं। श्रोताओं, आपको बता सकते हैं आज का दिन 19 सितंबर का इतिहास के पन्नों में आज कई खास घटनाएं जो है वो मतलब दर्ज हैं आज के इतिहास के पन्नों में। उन्हीं में से एक सबसे स्पेशल जो चीज हो रही है वो मैं आपको बता दूंगा। सर, 19 आज के दिन जो है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकू में आज के दिन विश्व धर्म संसद हिंदू धर्म पर अपना एक मतलब पेपर प्रस्तुत किया था श्रोताओं। और इसी दिन न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। सर, 1960 में आज के दिन जो है एक और बहुत ही खास चीज हुई जिसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल सिंधी हुई एंड इसी बीच साल सन 2000 में कुमार मलेश्वरी ने ओलंपिक पद जीत कर भारतीय खेल में मतलब इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया श्रोताओं आज के दिन। और तमाम सारी चीजें आज के दिन हुई इतिहास के पन्नों में, तमाम ऐसी बातें होती हैं जो हर दिन को स्पेशल और खास बनाती हैं। और आपको बता दें क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत खास है। 19 सितंबर सन 2007 को युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे, यानी 19 सितंबर का इतिहास उपलब्धियों और यादगार की पलों से भरी हुई तारीख है, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। श्रोताओं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी अपने कर्मों की किताब को उठाइए और कुछ बेहतर से बेहतरीन लिख डालिए। देखिए, इतिहास लिखने के लिए कलम की जरूरत नहीं होती, आपके साहस की, आपकी हिम्मत की, आपकी पॉजिटिविटी की जरूरत होती है। श्रोताओं, हम भी बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि अपने कर्मों की किताब से जितना हो सकता है ना कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। आज की सुबह आपको मिली है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, पूरी पॉजिटिविटी के साथ जो है चीजों को करना शुरू करें। देखिए, आपकी लाइफ में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। जैसा हम सोचते हैं ना वैसा यूनिवर्स हमारे साथ करता है। जैसा हम मैसेज ऊपर ब्रह्मांड में डिलीवर करते हैं वैसे ही हमें रिटर्न में मिलता है ना। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो ईश्वर कहता है तथास्तु, कल्याण होते रहा। इसीलिए हमेशा अपनी तरफ से अच्छा सोचें, अच्छा बोलने का प्रयास करें। जब आप अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी होने लगती हैं। श्रोताओं, स्टेशन क्लॉक में वक्त हुआ है 8:55 और अभी मैं बता रहा था आपको युवराज सिंह के बारे में। हाँ जी, कि आज ही का दिन था सन 2007 में जब युवराज सिंह जी ने 19 सितंबर को मतलब T20 में मतलब इंग्लैंड के खिलाफ युवराज ने जो कमाल का मतलब एक अपना परफॉर्मेंस दिया था, मतलब वो आउटस्टैंडिंग था यार। सो बस वही होता है कि इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसी चीजें छपी होती हैं जिनको पढ़कर जानकर काफी अच्छा लगता है और काफी चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आती हैं, जिससे हम रूबरू हो जाते हैं श्रोताओं। और ऐसे ही आज के दिन जो है मैं आपको बता भी रहा था, सन 1893 में आज के दिन 19 सितंबर को न्यूजीलैंड के कानून के जरिए महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था श्रोताओं आज के दिन। जी हाँ, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। हमारे पास संदेश पहुंचा है रोहित जी का, ये मुझे लिखते हैं, आज किसी एक इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए, आपका दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। वेरी नाइस रोहित भाई, वेरी नाइस थॉट, आई रियली अग्री विद यू एंड आई रियली अप्रिशिएट। मैं डेफिनेटली इस बात से अग्री करता हूँ। सुमन जी लिखती है, ऑफिस निकलने का समय हो गया है आनंद जी, लेकिन ऑफिस निकलते निकलते बस आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ भाग दौड़ में। बहुत अच्छे अच्छे गाने आप प्ले करते हैं, बहुत आनंद आता है, थैंक यू सो मच। मनप्रीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह और ये मुझे मैसेज करते हैं, हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ मेरे भाई। और ये मुझे आशियाना फेस टू से मैसेज करते हैं, लिखते हैं, सुबह सुबह आनंद जी जो टाइम होता है ना वो बस पॉजिटिविटी का होता है, तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से सभी लिसनर को पॉजिटिविटी देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के मैसेजेस वाकई में बड़े जबरदस्त होते हैं और इतनी बेहतरीन बातें आप करते हैं ना, दिल को छू जाती हैं आपकी बातें, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप सभी को एक बार फिर से राधाअष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। और अगर आप भी आज की सुबह हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। नंबर हमारा आपको पता है 9837896896। जरा सी देर में एक और गाना लगाएंगे। देखिए, राधा अष्टमी है तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना सभी भक्तों के लिए। ये वंडरफुल ट्रैक जरा सी देर में।
आपकी रेडियो पर जाएगा।

चलिए आप कहीं मत जाइए, आप सभी को एक बार फिर से राधाअष्टमी की शुभकामनाएं। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए श्रोताओं। और आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं श्रृंखला में 9837896896 पर। फटाफट से व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे। फिलहाल एक ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया है मैंने आपके रेडियो सेट पर।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: हाँ मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
7: 9 बज चुके हैं यार, पता नहीं चल रहा है बॉस, बहुत तेजी से घड़ी जो है आगे भाग रही है। सैटरडे की सुबह है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक हियर वंस अगेन, यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 9.6 विद मी आपको मैं आनंद, लेडीज एंड जेंटलमैन। 19 सितंबर की सुबह और ढेर सारी बातें आपसे हो रही हैं आज की मॉर्निंग, बहुत सारी अपडेट डेफिनेटली यहाँ पर हम आपको बता ही रहे हैं। एंड आज आपको बताया अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, गणपति बप्पा जो है अपने घर को जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है अपने अपने घर से गणपति बप्पा को विदाई दे चुके हैं, विदा कर चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आज भी गणपति विसर्जन है। अगर आप रामगंगा बिहार की तरफ जाओगे तो भाई बड़े बड़े डीजे उधर, मतलब क्या लाउडनेस के साथ डीजे जा रहे हैं और इतने बड़े बड़े गणपति लेके जा रहे हैं लोग विसर्जन के लिए, और मतलब इतना ज्यादा वहां पे क्राउड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज भी रहने वाला है, इनफैक्ट आज तो बाजारगंज के गणपति बप्पा जो वहां पर एक महोत्सव चल रहा था पिछले 27 सालों से, वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पे गणेश उत्सव। एंड फाइनली 5 दिवसीय के बाद आज विशाल भंडारा और साथ ही साथ दोपहर को 1 बजे के बाद जो है एक शोभा यात्रा होगी, बहुत ही बड़ी और बिगेस्ट शोभा यात्रा ये होने वाली है, बाजारगंज से निकलेगी, तो इस शोभा यात्रा का हिस्सा आप डेफिनेटली बन सकते हैं आज की दोपहर। आज वहां पर भी गणेश विसर्जन होने वाला है और बाकी कुछ आसपास आपके गली मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं आज गणेश विसर्जन के लिए रामगंगा बिहार पहुंचे, जहां पर रामगंगा है वहां पहुंचे विसर्जन के लिए, तो अगर आपके आसपास ऐसा कुछ नजारा है तो भाई डेफिनेटली उसे कैप्चर करके हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो आप। एक बार फिर से गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो 9:07 हो गए हैं, ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपसे एक बड़ा छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों आज की मॉर्निंग, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, नहाते समय, घर के बर्तन धोते समय या फिर गाड़ी साफ करते समय, ऐसे कौन सा तरीका अपनाते हैं जिससे आपको लगता है कि आप पानी की बचत कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है पानी बचाना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो पानी बचाने के थोड़े तरीके बताओ यार। कल मैं कहीं पर जा रहा था और मैंने देखा भाई

खुली पड़ी है, मतलब लोग आ रहे हैं उस टंकी में पानी पी रहे हैं बट उसको बंद नहीं कर रहे हैं। फिर मैं उसको जाके बंद किया, मेरे को लगा नहीं यार ये चीज तो गलत हो रही है। तो कहीं पर क्या होता है ना, हम बड़ा ऐसे लाइटली ले लेते हैं पानी को। अब अभी बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे ऐसे गांव हैं, इलाके हैं जहां पर आज भी पानी नहीं आता है दो दो तीन तीन दिन। वो लोग बेचारे कितना जो है पानी को सेव करके रखते हैं, एक ही पानी को भर के वो दो तीन दिन स्टोर करके रखते हैं बेसिकली। तो उनके लिए कितना टिपिकल वाला टाइम है सोचो आप। इमेजिन अगर ऐसा हमारे आसपास हो जाए तो हम क्या करेंगे यार। और अभी हमारे पास पानी है तो उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज टेल अस मुरादाबादी, क्या लगता है पानी बचाने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं? आज आप मुझे एडवाइस दो फटाफट से, व्हाट्सएप करना या आप कैसे पानी बचा सकते हो, बचाते हो, जो भी आपको लगता है आप मुझे व्हाट्सएप करके बताओ 9837896896। ऑफकोर्स यार आप में से और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी ना कभी ट्रेन में टॉयलेट की लंबी लाइन में डेफिनेटली लगे होंगे या फ्लाइट की। अगर ऐसा है तो बिल्कुल उसी से जुड़ी खबर अभी लेकर आ रहा हूँ। थोड़ी सी देर में से स्टेशन ऑफ द नेशन पे फिलहाल आनंद के साथ जुड़ चुके हैं आप ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पे, जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। और आज राधाष्टमी है तो हम कोशिश करेंगे आज के ट्रैक हम उन्हीं के ऊपर जो फीचर्स हैं, उन्हीं के नाम के ऊपर जो फीचर्स हैं, उन्हीं को आज की सुबह हम यहां पर रेडियो पर प्ले करें। एग्जैक्टली, वंस अगेन हैप्पी राधाष्टमी। इसके बारे में बात करने वाला हूँ, अभी लौट के आऊंगा। तो राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है एंड इसके पीछे एक स्टोरी भी है, वो आपके साथ शेयर करूंगा इमीडिएटली। एंड साथ ही क्या है आज का शुभ मुहूर्त, सब कुछ पता लगेगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पर आनंद के साथ। So don't go anywhere, अभी लौट कर आ रहे हैं इस स्टेशन पे। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: देखो देखो वहाँ क्या।
1: अजय आनंद इज बैक।
2: चली गोकुल की राधा चली चली चली चली गोकुल की।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
4: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
5: वेलकम बैक है जी वंस अगेन। बिल्कुल रेडियो ऐसे ही बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और आरजे आनंद के साथ ऐसे ही निभाते रहिए। हां जी, कैसे हाल चाल है? 9:18 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद के साथ। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था पानी बचाने के तरीके बताओ मुरादाबादी, और बहुत सारे संदेश मेरे पास पहुंचे हैं। थैंक यू सो मच इतने वंडरफुल मैसेज करने के लिए। सबसे पहले तो जोरदार तालियां यार। अभी लौटकर मैं वापस आया हूं, तो आपके लिए पहले तो आपके संदेशों के लिए थैंक यू करना चाहता हूं। इतने वंडरफुल मैसेज आप कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और अब आगे बढ़ते हैं एंड यहां पर आपके नाम के साथ आपके संदेश को शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए वेरी गुड मॉर्निंग ये बताना बहुत जरूरी था। चलिए आपको बता देते हैं पानी बचाने को लेकर हमारे शो। मैंने आपसे पूछा था कि देखो यार पानी बचाने के लिए आप कौन से फंडे फॉलो करते हो, पानी को आप कैसे बचाते हो, कैसे सेव करके रखते हो, क्या फंडे फॉलो करते हो आप, मतलब पानी को कैसे कम से कम इस्तेमाल में लाते हो ताकि पानी बचा रहे, क्योंकि भैया आपको पता है जल है तो जीवन है, राइट। अभी देखिए मेरे पास पूजा जी का मैसेज आया है लाइन पार से ही। ये मुझे लिखती है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, मैं पूजा बात कर रही हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ू। छोटी सी आदत जो है हमारी, ये हमें कभी कभी ऑकवर्ड भी लगती है, लेकिन यही आदत हमारी पानी बचाने में हमारी बहुत हेल्प करती है। तो आनंद जी मैं तो मोस्टली यही करती हूँ। कई बार मैंने देखा है कि हमारे घर में कुछ लोग हैं जो मतलब नहाते टाइम पे टंकी पूरी खोल के रखते हैं, सर ऐसे करके टाइप भी कर दिया आपने, वाओ, एंड वो फिर खुला रहता है, उससे बहुत ज्यादा वेस्टिंग होती है। तो मैं चाहूंगी कि इस तरह की हरकतें ना करें। ये आपको लगता है कि आप इससे खेल रहे हो, लेकिन ये पानी बर्बाद हो रहा है। एग्जैक्टली जी, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कहा पूजा जी, थैंक यू सो मच। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है मंत्री जी का, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? सुबह सुबह अच्छे गाने बजाकर सबका दिन बनाते हो यार, थैंक यू सो मच। ओहो क्या बात है यार, थैंक यू मंत्री भाई। आगे लिखते हैं कि यार मैं बस इतने कहना चाहूंगा कि मैं जब भी कभी कहीं पर खुला नल या टंकी देखता हूं तो मैं कोशिश करता हूं उसे जाकर के बंद कर दूं, जैसे अभी आपने बताया। और मैं जब भी कभी गाड़ी धोता हूं तो मैं बड़े बड़े पाइप का इस्तेमाल नहीं करता हूं, मैं छोटी छोटी बाल्टी में पानी भर के ही गाड़ी धोता हूं, ताकि भैया मेरी जो गाड़ी है उसमें ज्यादा पानी की खपत ना हो, अच्छा मतलब पानी बच सके। ऑलराइट, आप किसके लिए फंडा फॉलो करते हैं? एक चीज और ये लिखते हैं कि भैया मैं देखिए कोशिश करता हूं कि बार बार गाड़ी ना धो, और मेरी कोशिश ये भी होती है कि अगर आसपास में कहीं पर भी पानी खुला है तो मैं उसे जाके बंद कर दूं। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। आप लोग भी मुझे अपने मैसेज पहुंचा सकते हो, आपको क्या लगता है आप किसे अपने पानी बचाने के तरीके को फॉलो करते हो? यू कैन टेल अस 9837896896, आपको जो भी लगता है आप मुझे व्हाट्सएप करके बता दो यार, 9837896896। आज राधा अष्टमी सेलिब्रेट की जा रही है, एग्जैक्टली, और आज गणेश विसर्जन भी किया जा रहा है बहुत सारी जगहों पर। और यार मतलब जब गणपति जी जाते हैं तो यार बड़ा दुख होता है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, जो लोग अपने घरों में गणपति जी रखते हैं ना उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता, आपको सच बता रहा हूं। और आज भी गणेश विसर्जन हो रहा है इस खास मौके पर, बस इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए जो गणपति बप्पा है ना वो हमारी आस्था है, और मतलब बहुत अच्छा लगता है जब 10 दिन के लिए गणपति जी आते हैं। इस बार तो बताया जा रहा है कि 12 दिन के लिए गणपति जी विराजमान है, तो आज तो खैर 6 दिन हो गए गणपति को आए, अभी और भी दिन है, बट कुछ लोग आज विसर्जन कर रहे हैं, कुछ लोग कल विसर्जन करने वाले हैं। आपके घर पे कभी विसर्जन आप मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है मैं आपके यहां पर पहुंच जाऊं यार। और फिलहाल

जरासी दिन में इसको भी सुनेंगे। न्यूयॉर्क सिटी में न्यू टॉयलेट्स को इंस्टॉल किया गया है बड़े धाकड़ रूल के साथ। आप सुनेंगे तो आपको भी ना हंसी आ जाएगी, व्हाट आनंद ये क्या बता रहे हो एग्जैक्टली, मतलब एक बड़ी अलग सी सिनारी जो है वहां पर हुआ है। आप सुनोगे तो आप भी मतलब सोच में पड़ जाओगे, बहुत चक्के रह जाओगे, भाई कुछ ऐसा सा सीन हुआ है वहां पर। अभी लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा डेफिनेटली। आप ऐसे ही ट्यून रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं तो डू लेट मी नो, फटाफट बता सकते हैं 9837896896 पे, और यहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे सोशल ही आप हमें ढूंढ सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर हमारे साथ कनेक्ट हो गए व्हाट्सएप पे। अगर सोशल मीडिया पे आना चाहते हो तो भाई एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से ऑफिशियल आईडी आपको मिल जाती है हमारी। एंड अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है मतलब आनंद को फॉलो करना है तो मेरा इंस्टा हैंडल बहुत सिंपल है, जुड़ सकते हैं आप, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिल जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, वहां पर भी आप हमें कुछ भी बताना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो यार, बहुत जरूरी है सोशली कनेक्ट होना, तमाम सारी अपडेट वहां भी होती है। फिलहाल मलंग सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, लौट के आता हूँ जरा सी में। आपको ये न्यूयॉर्क में जो एक बड़ी अजीबो गरीब रूल सेट हुई है इसके बारे में बताने वाला हूँ। सो आप ऐसी ट्यून इन रहो आनंद के साथ।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

0: क्या बात है भाई साहब, मतलब आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है इतनी खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे बॉलीवुड में गाने जो बने हुए हैं।
1: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: वेलकम बैक वंस अगेन, ढेर सारे संदेश तो आपके पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इन प्यारे प्यारे संदेशों के लिए, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं, और आप लोग ऑफ कोर्स इतने प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए भी आपका दिल से थैंक यू।
4: राधे राधे राधे राधे आनंद जी, राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और वह FM सभी सुनने वाले श्रोताओं को।
0: जी थैंक यू।
4: आज जल दिवस है, तो जल ही जीवन है, जल है तो कल है,
0: समझ गया।
4: और आनंद जी, हम लोग ऐसा करते हैं कि आरओ का जो वेस्टेज पानी रहता है उसका जो पाइप निकलता है उसको हमने थोड़ा लंबा कर दिया है नीचे की तरफ, और उसमें बाल्टी लगा देते हैं और जो पानी स्टोर हो जाता है वो पानी हम लोग पौधों में डाल देते हैं ताकि वो पानी वेस्ट ना जाए, वेस्ट पानी भी यूज हो जाए। और यही है, छोटी छोटी आदत से ही हम लोग पानी को बचा सकते हैं, क्योंकि पानी जो हम बचाएंगे वही हमारा कल काम देगा। जल है तो कल है।
0: क्या बात है,
4: धन्यवाद,
0: बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच अलका जी, आपने तो मतलब दिल ही जीत लिया है, ये कि दिल था वो ही आपने जीत लिया, बाकी अब कोई जीते ना जीते। थैंक यू सो मच, और आप सभी को भी राधा अष्टमी की शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क सिटी की बात आपको बताता हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में बेसिकली हुआ क्या ना, वहां पर कुछ नए टॉयलेट को इंस्टॉल किया गया है बेसिकली, और वहां पर जो है एक रूल सेट किया गया है, मतलब एक टाइमलाइन सेट की गई कि टॉयलेट के अंदर जो भी व्यक्ति जाएगा उसको सिर्फ 10 मिनट ही दिए जाएंगे, 10 मिनट के बाद उसको बाहर आना ही पड़ेगा, और अगर वो 10 मिनट में नहीं आता है तो बड़े मतलब ऑटोमेटिकली फीचर्स सेट किए गए हैं इन टॉयलेट जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में, अक्रॉस द न्यूयॉर्क सिटी। एंड बेसिकली वहां पर ये हो रहा है कि उस टॉयलेट के अंदर 5 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच अगर वो व्यक्ति नहीं आता है तो वहां पर एक म्यूजिक सुनाई देगा। बेसिकली आपको ऐसा लगेगा आप टॉयलेट सीट पे नहीं, आप म्यूजिकल सीट पे बैठे हैं, अचानक से आपको म्यूजिक सुनाई देने लगेगा, और जैसे म्यूजिक बजेगा तो आपको मतलब वहां पर एक वार्निंग दी जाएगी कि भैया अब आपका समय हो गया है टॉयलेट से बाहर आने का। एंड सेकंड बात एक और इसमें जो अच्छी एडवांटेज इन्होंने रखी है, अगर 10 मिनट तक आप टॉयलेट से बाहर नहीं निकलते हो, रूल जो है आउट होता है तो उसके गेट अपने आप खुल जाएंगे। ओ माय गॉड, मतलब जब मैं उन इंडियंस की बात करूं, हमारे भारत में ऐसे तमाम सारे प्रेमी है, टॉयलेट प्रेमी जो अपने टॉयलेट में बैठ के घंटों फोन का इस्तेमाल करते हैं, बाहर वीवी अब हवें चल रही होती है, भैया गेट से खोलो, बाहर निकलो भाई, टाइम हो रहा है, मेरे को भी जाना है वॉशरूम, मुझे भी जो है फटाफट नहा धो के रेडी होके अपने ऑफिस निकलना है। लेकिन भाई साहब है कि मोबाइल चला रहे हैं मैट के अंदर है जी, अगर ऐसे 10 मिनट वाला रूल इंडिया में आ जाए तो पता नहीं क्या ही होगा यार। लेकिन फिलहाल न्यूयॉर्क सिटी में ये जो रूल सेट किया गया है, मतलब इसके बारे में आपका क्या कहना, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है क्या ये होना चाहिए टाइम पीरियड या नहीं होना चाहिए, आपको क्या लगता है? मतलब सोचो कि आप 5 से 8 मिनट आपको हुई नहीं, वहां पे एक म्यूजिक बजने लगेगा, अतरंगी म्यूजिक सुनाई देगा आपको, एंड उसके बाद आपके दरवाजे भी अपने आप ओपन हो जाएंगे। ओ माय गॉड, सो डेंजरस यार, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि होना ही नहीं चाहिए। वैसे आपके व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको? वैसे ऐसे भारत में अगर हो जाए तो आप पहली बात तो मैं चाहूंगा हो ही ना यार, बहुत सारे टॉयलेट के अंदर जो फोन चलाते हैं ना लोग, उनका दिल टूट जाएगा मुझे ऐसा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये एक वंडरफुल सी मुझे न्यूज थोड़ी अतरंगी भी लगी, तो मुझे लगा चलो आपको फटाफट अपडेट कर देते हैं कि चल क्या रहा है देश दुनिया में, ना तरह तरह की चीजें चल रही हैं। अभी फिलहाल एक और खबर आपको बताने वाला हूं अपने मुरादाबाद शहर से जुड़ी, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इन्फॉर्मेशन है, लौट कर आता हूं उसके बाद बताता हूं। एंड आपके संदेश लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने प्यारे और वंडरफुल मैसेज करने के लिए, मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं। फिलहाल अभी ये गाना भी आपके लिए बजाना चाहता हूं, जैसे ही गाना खत्म होगा मेरी एंट्री तुरंत हो जाएगी और मैं एक सवाल भी लेकर आऊंगा, और कुछ खास बेहतरीन खबरें हैं आज के दिन से जुड़ी जो मुझे आप तक पहुंचानी है फटाफट से। तुम्हारी सुलू का गाना हेलो, ये विद्या बालन की टोन आपको याद है, रेडियो इंडस्ट्री के ऊपर पूरी पिक्चर है, कैसे रेडियो में काम करते हैं, क्या होता है रेडियो के अंदर, रेडियो का पूरा किस्सा जो इस मूवी के अंदर बयां किया गया है, विद्या बालन ने क्या जॉब की है रेडियो जॉकी, वंडरफुल शो, वंडरफुल मूवी, ऊपर से गुरु बाजी इतना अच्छा गाते हो यार।

0: वेरी गुड यार, सॉन्ग बहुत प्यारा है। मजाक सुन के 9:41 हो गए हैं और अभी फिलहाल इमिडिएटली आपको बता देता हूँ, आज के दिन जो है बहुत ही अच्छे अच्छे डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, नाचते रहना बहुत जरूरी है और आज नाचने से मुझे याद आया, आज नेशनल डांस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। जो लोग डांस प्रेमी हैं, जो लोग कोरियोग्राफी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है आज का। एंड ऐसा लगता है मुझे यार कि जो डांस है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज है। जो लोग करते हैं ये, उनसे आप पूछ सकते हैं कितना बेहतरीन जो है मूड हो जाता है जब आप डांस वांस कर लेते हो। तो मतलब खैर, अपने को तो नहीं आता है भाई, जिसको आता होगा उसको पता होगा ना, अभी अपन को तो इतना नहीं पता है बॉस। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे अच्छे डेज जो है आज सेलिब्रेट किए जाते हैं आज

के आसपास पोल्यूटेड चीजें होती हैं वो साफ सफाई करने का जो दिन है आज सेलिब्रेट किया जाता है और भी ऐसे तमाम सारे दिवस हर दिन मनाए जाते हैं भाई, ताकि हमारे आसपास साफ सफाई रह सके। और वैसे भी 2 अक्टूबर को तो हम मनाते ही हैं, स्वच्छता का एक बहुत ही बड़ा विशेष पर्व है ना। तो उसके अलावा बाकी मैं कह रहा हूँ पाजी, सिर्फ एक ही दिन क्यों सेलिब्रेट करना है ना, हमें थोड़ा थोड़ा करके हमेशा कॉन्ट्रीब्यूट देते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। एंड जब हम अपना कॉन्ट्रीब्यूट देते हैं तो और भी अच्छा रहता है। चलिए फिर इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप भी कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं 9837896896 पर। फिलहाल ऐसे ही ट्यून इन रहिए हमारे साथ। डांस की बात हुई है तो फिर डांस वाला गाना भी होना चाहिए आज की सुबह, और डांस से ये गाना मुझे याद आता है, सिर्फ मिलेनियल्स का नहीं जेंजी का भी फेवरेट है गाना। अभी नेशनल डांस डे मना रहे हैं तो भाई इसी पे डांस करते हुए आगे बढ़ेंगे। 9:44 हो गए स्टेशन क्लॉक में। चलिए इसके अलावा और क्या है आज की तारीख में, मैं इमीडिएटली आपको बता देता हूँ फटाफट से। इसके अलावा आज लव एंड फ्रेंडशिप डे भी सेलिब्रेट किया जाता है लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: सच्चाई तो है यार इस गाने में. वैसे जो भी बोलो, मतलब सच बात बोली गई है. जो आजकल ना स्कैम कॉल्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना अभी मतलब एक इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है. और भैया जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरे की घंटी शुरू हो गई. भाई जो लोग ऐसा करते हैं ना, कभी कभी लोग प्राइम करने के लिए भी ये चीज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई साहब. बार बार स्पैम कॉल्स अगर आपको आ रहे हैं तो उनके ऊपर अब कार्यवाही होगी. एग्जैक्टली, जो बैक टू बैक कॉल्स इस तरह की आती है, स्पैम कॉल्स आती है, फ्रॉड कॉल्स आती है, तो उनके लिए जो है अब नए नए रूल सेट किए जा रहे हैं भाई साहब. और उनके नंबर को पकड़ के जांच वांच करके जो है ना फिर अच्छे से उनकी कुटाई भी हो सकती है. तो भैया अगर ऐसे स्पैम कॉल्स आपके पास आ रहे हैं तो पहले तो अवॉइड ही करो यार. और अगर आपसे कोई आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगता है तो प्लीज साझा बिल्कुल नहीं करनी है आपने, है ना. छोटी छोटी चीजें होती हैं, अक्सर हम अवॉइड करते हैं, और इन्हीं चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारी चीजों से हम जो है बच सकते हैं.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है.
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने.
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है.
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में. ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की. और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है.
1: अच्छा.
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद.
4: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें.
5: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
4: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पीस मेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर. स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन. आज ही अपॉइंटमेंट ले. श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद. कॉल करें 7060022430.

यार गाना इतना अच्छा चल रहा है ना, मैं भी डांस करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा। अरे भाई सुबह सुबह बिना खाए पिए मेरे दिमाग की बत्ती काम नहीं करती है ना। बहुत ही अच्छा गाना फ्रॉम द फिल्म मुझसे शादी करोगी, सोनू निगम सुनिधि चौहान की आवाज। आप बिलीव नहीं करोगे, अपने यूपी में एक जो लिस्ट निकल के आई है ना अपने उत्तर प्रदेश से, मतलब वो बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट आई है। सिर्फ लोन लेने से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और आप सुनोगे तो आप भी बहुत चक्के रह जाओगे, अरे ये क्या चल रहा है।

यार ये बात तो सच है, जवानी फिर ना आए। लेकिन फिलहाल मैं वापस आ गया हूँ अपने एक सवाल लेकर, जिसका जवाब आप मुझे पहुँचा सकते हैं। गाने बहुत अच्छे हैं, मजा आ जाता है सुन के। फिलहाल चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बहुत ही वंडरफुल ट्रैक है, थोड़ा पुराना गाना है, बट ऑफकोर्स आप आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी गाने का म्यूजिक है।

चलिए व्हाट्सएप कीजिएगा आप मुझे अगर आपको समझ में आया है. अभी जो मैंने म्यूजिक प्ले किया है वो बेसिकली कौन से गाने का है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा म्यूजिक है, बहुत प्यारा गाना है.

चलो जी, मैसेज करके बताइए जरूर भाई साहब, अगर आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। सुबह सुबह दिमाग पे ज्यादा स्ट्रेस मत डालो, बहुत ही अच्छा गाना है, मतलब आप समझ ही गए होंगे। ऑफ कोर्स नहीं समझे तो चलो थोड़ी देर में आऊंगा तो एक और क्लू एक हिंट दे दूंगा, शायद फिर आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा गाना है यार, मतलब ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, अभी जन्माष्टमी पे हमने बहुत बारी प्ले किया इस गाने को, बहुत ही अच्छा गाना है। अभी थोड़ी देर में एक हिंट दूंगा, पहले देखता हूँ कितने लोगों को पता है, कितने लोग पहचान चुके हैं इस गाने के बारे में, कितने लोगों को इसका म्यूजिक समझ में आया है। चलो जी, व्हाट्सएप करो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब, उठाओ अपना फोन, टाइप करो अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। आज की सुबह बहुत ही प्यारा पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, ये गाने का मतलब कौन से गाने का म्यूजिक है ये बेसिकली।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सुबह के 10:02 हो गए स्टेशन क्लॉक में। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आरजे आनंद के साथ। फिलहाल वीकेंड है, सैटरडे है, ऑफ कोर्स अच्छे गाने भी हैं।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: आवश्यक सूचना, 400 KV बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 KV उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
0: आजकल मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी लोन लेके एक बढ़िया सी गाड़ी निकाल लूँ यार। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि लोन लेके एक अच्छी सी मैं भी बढ़िया सी घर में एक LED लगवा दूँ। कभी कभी ऐसे ख्याल आता है। अच्छा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यूपी के अंदर भाई साहब एक रिकॉर्ड जो है ना अभी निकल के आया, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो लोगों ने लोन ले लेके क्या क्या चीजें खरीद ली है। एक पूरी लिस्ट शेयर हुई है। हाँ जी, देश में भाई साहब उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हेलो, हाई, वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 और उत्तर प्रदेश के लोग लोन लेने के मामले में सबसे आगे निकल गए हैं बॉस। जी हाँ, एक रिपोर्ट के मुताबिक पता लगा है यूपी में सोना यानी गोल्ड गिरवी रखकर लोग जो है लोन लेते हैं, उसके बाद वो लोन से अपनी चॉइसेस की चीजें खरीदते हैं। और इसी मामले की रिपोर्ट को जो है एक रिसर्च में बताया गया है, जिसमें पता लगा है कि भैया 122.8% इतने प्रतिशत लोगों ने जो है भाई साहब जबरदस्त रिकॉर्ड बना लिया है लोन लेने में। और ये लोन लेकर के भाई साहब टीवी, फ्रिज और कंप्यूटर, टैबलेट, बड़े बड़े मोबाइल फोन्स वगैरह वगैरह चीजें खरीद रहे हैं, जिसका रिकॉर्ड बना है। और ये रिकॉर्ड बना है 62.3% जो है उछाल के साथ ये चीज एक रिकॉर्ड बन गई है। मतलब कैन यू इमेजिन कि उत्तर प्रदेश के लोग अपने यूपी के लोग लोन लेने में इतने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे। भाई मैं तो सोच के डर रहा हूँ भैया, लोन ओ माय गॉड जो रातों की नींद छीन लेता है और वो भी गोल्ड रखकर जो है लोन, लोग जो है लोन खरीद रहे हैं, उसके बाद वो अपने चीजों को मतलब सपनों को पूरा कर रहे हैं। नहीं देखिए, सपने पूरा करना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन लोन लेके पूरा करना मतलब हर चीज के लिए मुझे लगता है यार फिर ये तो गड़बड़ है यार। मतलब इतनी और एक रिकॉर्ड जो बन गया ये फिर अलग से रिकॉर्ड निकला है, मतलब सिर्फ ये यूपी का रिकॉर्ड बना है बॉस। मतलब यार मेरे को यकीन नहीं होता कभी कभी कि लोग मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि लोन लेने के लिए इतना आगे निकल जाएंगे बॉस, पता नहीं था। लेकिन फिलहाल आप आगे निकल सकते हो आज की सुबह हमारे साथ कड़क क्वेश्चन पूछ के। एग्जैक्टली, मतलब मैंने आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है आज की सुबह। आपको आइडेंटिफाई करना था ये गाना कौन सा है, बहुत प्यारा ट्रैक है।

चलिए अभी आपको देता हूँ दिस इज योर हिंट। इस गाने में विवेक ओबेरॉय है, बहुत ही अच्छा गाना है उन्हीं का, ये उन्हीं के ऊपर पेचराइजेशन है। इससे बड़ा क्लू अब क्या ही दूं आज की सुबह। अगर आपको समझ में आया है कौन सा गाना है उनका तो प्लीज मुझे बताइए 9837896896 पे व्हाट्सएप करो।

बहुत प्यारा ट्रैक है, अगर आपको समझ में आया है तो फटाक से आप मुझे मैसेज करेंगे 9837896896 पे। मैं अभी लौट कर आता हूँ। एक कड़क क्वेश्चन तो हमने पूछ ही लिया, लेकिन अभी एक कड़क विनर लकी कॉलर के साथ वापस आता हूँ। देखते हैं कौन बनेगा आज की सुबह हमारा लकी कॉलर। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे शो में तो भैया हम आपसे ये कहना चाहते हैं अपने फोन के बस आसपास ही रहिएगा, कहीं दूर मत जाइए, क्योंकि किसी एक लकी वन को कॉल लगाने वाला हूँ अभी।

0: मसक कली बहुत ही प्यारा गाना था, दिल्ली से एंजॉय कर रहे थे अभी आप एक अमेजिंग ट्रैक। फिलहाल मेरा जाने का समय हो गया है। मोहित चौहान की आवाज में गाना था, एआर रहमान का म्यूजिक, बहुत ही अच्छी कंपोजिशन। इसी गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। श्रोताओं आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। एंड फाइनली सैटरडे है, वीकेंड है, बहुत सारे लोग हैंग आउट के मूड में होते हैं। बहुत जरूरी है भाई, हैंग आउट करते रहना चाहिए लाइफ में। एंड आज मैंने आपसे पूछा था सवाल, बहुत प्यारा गाना था विवेक ओबेरॉय पर पिक्चराइजेशन गाना, राधाअष्टमी का दिन है, मैंने सोचा इससे बेटर और क्या ही हो सकता है ना। आइए बात करते हैं हमारे आज के लकी लिसनर से। हेलो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप, प्लीज अपना नाम बताएं।
1: गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार सिंह है, रामगढ़ बिहार मुरादाबाद।
0: अरे वाह दीपक जी, क्या करते हैं आप? अच्छा डॉक्टर तो आपने बोल ही दिया है फिर।
1: जी
0: मतलब किस चीज के डॉक्टर हैं, थोड़ा सा ये बताएं आप।
1: मैं सर फिजियोथेरेपिस्ट हूँ।
0: अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है, अरे वाह बहुत बढ़िया। कहाँ, रामगंगा बिहार में?
1: रामगंगा बिहार सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के पास।
0: अच्छा ऑल राइट, बहुत बढ़िया। और कैसा चल रहा है सर फिलहाल?
1: बढ़िया चल रहा है सर।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी कहाँ निकल रहे हैं सुबह सुबह आप?
1: सुबह सर हमारा एक साइड बिजनेस भी है सोलर लगाने का, सोलर भी लगाते हैं हम।
0: अच्छा अगर आप, अरे वाह दैट्स वेरी ग्रेट। अच्छा दीपक जी मैं थोड़ा सा इसी विषय में बात करना चाहूंगा, सोलर आप लगाते हैं, ये क्यों जरूरी है हमारे लिए बाकी आम जनता के लिए?
1: सर देखिए आने वाले टाइम में ग्रीन एनर्जी जो है मस्ट हो जाएगी हर किसी के लिए।
0: एग्जैक्टली,
1: जरूरी नहीं है कि सारा काम सरकार करे, कुछ जिम्मेदारी हम लोगों को अपने आप भी उठानी चाहिए। जरूरी नहीं है सरकार बिजली दे, हम तभी बिजली इस्तेमाल करें, अपनी बिजली भी बचानी चाहिए।
0: बिल्कुल 100% सही बात है।
1: सन तो अपनी एनर्जी सबको दे रहा है, उसको हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं वो हमारे ऊपर
0: डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, और जब हमें नेचुरली कुछ चीजें मिल रही है तो उससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है ना।
1: जी, उसको उपयोग करना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, गुड लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा आज जो मैंने म्यूजिक प्ले किया था वो कौन से गाने का था, जरा आप मुझे ये बताएं।
1: सर वो म्यूजिक गाना है, वो है अलबेला मंदनो वाला, वो किसना है करके।
0: अरे वाह बहुत ही बढ़िया, चलिए आपके लिए ढेर सारी ताली बजाते हैं हम आज के सुबह। बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपक जी। और रेडियो सुन के कैसा लगता है सुबह सुबह?
1: बहुत बढ़िया लगता है सर, बहुत बढ़िया।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। कब कब सुनने का समय मिल जाता है वैसे आपको?
1: सर अक्सर ड्राइविंग करते वक्त ही मिलता है समय तो।
0: अरे वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब जाते समय और आते समय ऐसा।
1: जी
0: बहुत अच्छा लगा आपको, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।
1: आपको भी सर बहुत बहुत
0: थैंक यू सो मच दीपक जी। तमाम लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे रेडियो के माध्यम से? बहुत सारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं लाइव।
1: सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, एक दूसरे का ख्याल रखते रहें, बस यही कहना चाहेंगे।
0: बहुत बढ़िया, और अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: जब हम ठीक होंगे तभी हम सबका ख्याल रख पाएंगे,
1: सबका
0: है ना। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी थैंक यू सो मच, पहुंचिए अपने जहां भी आप जा रहे हैं वर्क पे, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बाय बाय सर।
1: थैंक यू
0: जी। तो ये जुड़े थे हमारे साथ रामगंगा बिहार से दीपक कपूर जी, एंड एग्जैक्टली दिस इज द राइट आंसर, वो कृष्णा है, विवेक ओबेरॉय पर पिक्चराइजेशन था, बहुत ही प्यारा गाना। एक बार फिर से आप सभी के लिए जोरदार तालियां भी होनी चाहिए पाजी। पाजी एक बार गाना गा के बताओ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पूरे दिल से थैंक यू यार। एक छोटा सा एड ब्रेक आ रहा है, उसके बाद जल्दी से आपके नाम को शामिल करके फिर मैं यहाँ से इजाजत।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
0: चलिए गाइस एड ब्रेक खत्म हो गया है, फिलहाल मेरा भी जाने का समय हो गया है, जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे वापस, है ना। तो अभी फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, खिसकते हैं, आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, धीरे धीरे गाड़ी चलाते रहिए, मैं भी धीरे धीरे यहाँ से लेता हूँ आपसे इजाजत, जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। लेकिन जाने से पहले देखिए बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर मुझे अपने प्यारे प्यारे संदेश वॉइस नोट पहुंचाए थे, बहुत सुंदर सुंदर आवाजें आप लोगों की पहुंची हैं, जरा ये भी सुन लेते हैं ये क्या पहुंचाना चाह रहे हैं आज की सुबह। जी
3: अधरो पर बंसी की तान, मन में प्रेम का स्पंदन, गाना की हर सांस में बसती राधा का है अभिनंदन, श्याम ध्याय जिसका नाम वो शक्ति अनूठी है, भक्ति की परिभाषा वो प्रीत कभी ना छूटी है, बरसाने की वो राजकुमारी नटखट मन की चोर, चरण पड़े जहां जहां उसके बरसे ने घनघोर, कनक सी कांति मूरत जिसकी त्रिपुरारी भी ध्याए, गोकुल के हर रास्ते पर बस राधे राधे गाए, बिना प्रेम के अधूरी मोहन की हर एक वांसी, राधा के ही स्मरण से सस्ती प्रेम सुंदर की झांकी। कृष्ण का मान जो रखे और कान्हा का अभिमान, राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, राधे राधे, आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ, मैं आपका दोस्त भूति शर्मा, नगर पंचायत पागबड़ा से। आज है जगत जननी राधा अष्टमी और राधा जी का जन्म दिवस। सभी को राधा जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज, बज जाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।
0: थैंक यू भूपी जी, राधे राधे, बहुत ही अच्छा बोला, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हैप्पी राधा अष्टमी। देखिए वो कृष्णा है, ये राइट आंसर मेरे पास पहुंच रहा था, कहां से विभूर का आंसर आया। हाय विभूर भाई, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से शाह हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? आप नई नई जानकारियां लेकर आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, और सही जवाब भी आपने दिया सर, थैंक यू। एंड अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से सही जवाब पहुंचाती हैं। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, नाम ही लिखा आपने। एंड दुर्गेश जी मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह। इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंचा था शिवपुरी से सुहानी का, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबॉडी। अभी फिलहाल मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, घर जाने का समय हो गया है। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हाल चाल है? ये मेरे पास सना एंड नाजिया तुर्क मैसेज करती हैं, लिखती हैं, हेलो सर, आज राधा अष्टमी जी पर बहुत बहुत बधाइयां, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, आपने एक बहुत ही अच्छा गाना सजेस्ट किया था, ये नेक्स्ट स्टाइल में डेफिनेटली प्ले होगा। हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर, वो कृष्णा है, दिस इज राइट आंसर, थैंक यू नाजिया एंड सना, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग आनंद जी, राधा अष्टमी की शुभकामनाएं एफएम मुरादाबाद में, सभी को बहुत बहुत बधाइयां, एंड एफएम मुरादाबाद के आरजेस को भी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं, सही जवाब भी दे रहे हैं, थैंक यू अमित वर्मा जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मी देवी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं आज की सुबह। एंड इसके अलावा ये हमारे पास संदीप जी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है? ललिता कश्यप भी जुड़ चुकी हैं, एंड बबली अनजान, गीता कश्यप, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं आज की सुबह। साथ ही साथ बाबू अंसारी साहब जुड़ चुके हैं करूला से हमारे साथ, रहमत नगर गली नंबर 1 से, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम बाबू अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लिखते हैं, आज राधा अष्टमी, किसी को बताना मत, वाह क्या बात है। गुलाम जलाली पाशा कुंदरकी से जुड़े हैं, सहारनपुर से जोन, रोजी, पलविलीस हमारे लिसनर रेगुलर, ये भी जुड़े हैं। रिहाना जुड़ चुकी हैं, विक्की सागर जी जुड़ चुके हैं, रेडियो वाले आनंद को गुड मॉर्निंग, थैंक यू गाइस। फिलहाल इतना ही बहुत है, अभी मैसेज तो बहुत है लेकिन इजाजत चाहूंगा। टेक्स्ट मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं, हाय आनंद जी, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हाल चाल है? आलम भाई बात कर रहे हैं गागन से, गागन तराहा से, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आई एम नेहा स्वाति, गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, एंड आपका शो अच्छा लगता है एंड बहुत मजा आता है, थैंक यू सो मच। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग जी, चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी राधा अष्टमी और गणेश विसर्जन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लोग आज कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाइयां, बप्पा जा रहे हैं, ढेर सारी खुशियां आपको देकर जाएं और बहुत सारी हैप्पीनेस आपके घर में आए, रिद्धि सिद्धि, प्रोस्पैरिटी, हैप्पीनेस, एवरीथिंग जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। अभी मेरी तरफ से

0: अत्याधिक गर्द वाली मॉर्निंग है आप सभी को। और समय की बात करूं तो 10:25 हो चुके हैं और आज की तारीख ना सच में बहुत स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि आज का दिन राधा जी का प्रेम, भक्ति और समर्पण का एक ऐसा मिसाल है जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ ही लिया जाता है। राधे कृष्ण का रिश्ता हमें सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव सिखाता है। राधा अष्टमी के दिन भक्त राधा रानी जी की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में भजन कीर्तन करते हैं और खासकर बरसाना में भैया आज का जो दिन है ना बहुत ही उत्साह वाला दिन है, क्योंकि हमारी जो राधा रानी है करुणा माई है, बहुत ही भोली है और ये हर किसी के दिल की पुकार सच में सुनती है। जब आप एक बार दिल से उनको पुकारोगे ना, उनसे आप जो मांगोगे वो अवश्य देती है, लेकिन मन में उस टाइम किसी के प्रति लालच हीन भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो राधा रानी है ना गुस्सा क्या होता है इसका मतलब ही नहीं पता है। इतनी करुणामयी है, बहुत ही सहनशीलता, बहुत ही सहज स्वभाव और इनका जो रूप है एक सोने के आकार यानी कि चमकता हुआ दिव्य। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आई होप कि बहुतों ने आज फास्ट भी रखा होगा और बहुतों ने आज फास्ट नहीं रखा होगा, लेकिन राधा अष्टमी के मौके पर पूजा आप सभी ने करा होगा, क्योंकि ये कहा जाता है जब हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं तो इसी के साथ साथ हमें राधा अष्टमी का भी व्रत रखना चाहिए। देखा जाए तो देखिए हम वैसे भी खाना लेट ही खाते हैं और इसमें 12 बजे के बाद भोग लगाने के बाद खाना खा ही लेते हैं, तो इसीलिए 12 बजे तक बस व्रत रखना होता है। तो आप आसानी से इस व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि प्रेम से बोलिए राधे राधे। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद मैं एक गाना सुनवाऊंगी आप सभी को। सच में इस गाने को ना आप दिल से सुनिएगा, बहुत ही शानदार वाला गाना है।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी

0: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
0: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
0: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: कृष्णा, और समय की बात करूं मॉर्निंग मसाला शो में तो समय हो चुका है 10:35, और आज की तारीख बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास। आज है 19 सितंबर, और आज के अगर वेदर की बात करूं तो 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है अभी, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, और बाहर जब भी आप निकले तो पानी की बोतल अपने साथ जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि गर्मी में हम घर से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें ये नहीं पता होता है कि जैसे आप घर से कदम रखते हैं ना भाई, सच बताओ प्यास लगने लग जाती है। और जब आपको आसपास कहीं पानी नहीं मिलते ना, तो लगता है भाई कहीं से थोड़ा भी पानी मिल जाए, चाहे एक बूंद मिल जाए, पर मिल जाए। इसीलिए मैं कहती हूँ, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, जैसे फोन आप नहीं छोड़ते हैं, वैसे पानी की बोतल भी अपने साथ रखनी चाहिए। आप पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाएंगे तो जब भी आपको प्यास लगती है आप पानी पी सकते हैं, और आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी भी नहीं होगी, डिहाइड्रेट रहेंगे आप। और साथ ही साथ यहाँ पर प्यारी प्यारी मैसेज भी आ गए हैं। फिलहाल तो मेरे पास ना वॉइस मैसेज आया है, तो एक बार मुझे लगता है कि सुनना बहुत जरूरी है कि ये अपनी वॉइस में क्या पहुंचाना चाहती है। फिलहाल श्रोताओं, आप सभी से यही कहना चाहेंगे, मॉर्निंग मसाला शो है वो शुरू हो चुका है, सो आप भी अपना मैसेज हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9837896896। चलिए फिलहाल इनकी वॉइस मैसेज सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग रीना दी, कैसे हो? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए एक शायरी लेकर आई हूँ। लाइबा तेरी दोस्ती गुलाब के उस खूबसूरत फूलों की तरह है, लाइबा तेरी दोस्ती गुलाब के उस खूबसूरत फूलों की तरह है, जो मेरी जिंदगी को हर पल अपनी खुशबू से महकाती है। अफरोज फातिमा का ये वादा है तुझसे, अफरोज फातिमा का ये वादा है तुझसे मेरी प्यारी दोस्त, हमारा ये रिश्ता सदा गुलाब सा खिलता रहेगा और तेरे दिल को सुकून देगा। तो मुझे एक सॉन्ग सुनना है, इतना मैं चाहूँ तुझे कोई किसी को ना चाहे, साथ में मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा, मेरी सिस्टर नजमा, दरक्सा, राबिया, रुकैया, रामपुर से शगनंदी।
0: क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया आपने वॉइस भेजा है, और आपकी शायरी भी बहुत प्यारी है, और आपकी जो दोस्त है लाइबा काजमी, उनके तक ये संदेश आई होप कि पहुंच गया होगा, वो सुन रही होंगी रेडियो, तो आपके पास जरूर मैसेज कॉल करेंगी वो। और साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना मैम, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे जी। सना तुर्क, नाजिया तुर्क हमारे साथ कनेक्ट होती हैं, और ये गाना सुनना चाहती भैया, बहुत ही शानदार वाला, ईमान डोल जाएगा ये वाला हम गाना आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। बस आपने रेडियो की सुई बिल्कुल भी नहीं घुमानी है, आज रीना के साथ आपने कनेक्ट रहना है, और अपने प्यारे संदेश के साथ अपना प्यारा प्यारा गाना भी आपने जरूर सुनना है। तो चलिए फिलहाल गाना हम सुनते हैं, यानी कि इतना मैं चाहूँ तुझको कोई किसी को ना चाहे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
4: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
5: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: रीना के साथ और समय की बात करूं तो 10:48 हो चुके हैं और आज की तारीख है 19 सितंबर। और देखिए, अगर आप सुबह सुबह अपने आप को एनर्जेटिक फील करवाना चाहते हैं तो हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जंक फूड खा लेते हैं, ऑयली वाला खाना खा लेते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट में। लेकिन सोचिए, अगर आप सुबह सुबह जूस पीते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो फेस है बेदाग और चमकता हुआ आपका फेस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हर दिन का रूटीन बनाना होता है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज हमें कौन सा जूस पीना है, कल कौन सा जूस पिए, परसों कौन सा जूस पिए, इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, जब मैं हूं तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं बताती हूँ आपको। यानी कि मंडे का आपने रूटीन रखना है, यानी कि सोमवार को आप पी सकते हैं गाजर का जूस, साथ ही साथ मंगलवार की बात करूं तो टमाटो यानी कि टमाटर का जूस, बुधवार को चुकंदर का जूस, बीट फ्रूट जिसको बोलते हैं, और गुरुवार को खीरे का जूस, कुकम्बर उसका जूस आप पी सकते हैं, और साथ ही साथ शुक्रवार को आंवला का जूस पीजिए। आंवला का जूस अगर आप पीते हैं तो जिनके बाल झड़ते हैं ना भैया, जो कहते हैं मेरे सर पे तो बस 2-3 बाल ही रह गए हैं, बहुत थोड़े बाल रह गए हैं, पहले बहुत घने थे अब बहुत ज्यादा झड़ने लगे हैं, वो इसलिए झड़ते हैं क्योंकि हम खाना उस तरीके से नहीं खा पाते हैं। और आंवला एक ऐसा मतलब सोर्स है जिसको अगर आप पीते हैं इसका जूस, तो एक तो बाल अगर आपके जो टूटते हैं वो नहीं टूटेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन की जो चमक है वो और ज़्यादा बढ़ाता है ये। तो आंवला ज़रूर अपने डाइट में, जूस में शामिल करिए। और साथ ही साथ शनिवार की अगर मैं बात करूँ तो एलोवेरा का जूस। जी बिल्कुल, अब आप सोच रहे कि एलोवेरा का जूस तो पीना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एलोवेरा का जूस बहुत फायदेमंद होता है, वो यानी कि धरती की बेटी बोला जाता है क्योंकि उसको वो अपने आप उगती है, उसको कोई ये नहीं कि हाँ हाँ मैं बीज लेकर आता हूँ, लेकर आती हूँ फिर उगाऊंगी, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ आप रविवार को पी सकते हैं अनार का जूस। ये जो लिस्ट है आप रूटीन बना लीजिए कि मुझे पीना है और अपने आप को स्वस्थ रखना है और आप चाहते हैं कि बीमार से बचे रहे तो अपने डाइट में जूस शामिल करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मेरे पास वॉइस मैसेज आता है तो चलिए एक बार सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक और मैसेज। जय श्री राम, गुड वाली मॉर्निंग है रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं दुर्गेश सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से। गाने का बोल है, एक बार तो राधा बन कर देखो सावरिया। बहुत ही खूबसूरत गाना और एक वॉइस मैसेज, सुनिए इसको ध्यान।
1: राधे राधे रीना जी। रीना जी आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और FM से भी सुनने वालों श्रोताओं को भी। रीना जी ये गाना सुनवा देना जिसके ये बोल हैं,

0: मैंने सुन। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही अच्छी आपकी वॉइस है और बहुत ही अच्छा आपने गाने की रिक्वेस्ट भी करी है। सच में ये वाला गाना है, ट्रेंड वाला गाना है, बहुत ही शानदार वाला गाना है और हम सभी की बस एक ही ख्वाहिश होती है, वृंदावन, पावन धरती वृंदावन, जहां पर राधा जी ने, कृष्ण भगवान जी ने उन सभी गलियों में घूमे हैं, नंगे पांव तक चले हैं। उस गलियों में एक बार जाए और उस गली का जो धूल है, जो रज है, अपने माथे पर उसके एक तिलक जरूर लगाए। और जब भी आप बरसाना की परिक्रमा करने जाएंगे ना, तो पहाड़ से निकल के जाना पड़ता है, तो वहां पर कृष्ण भगवान जी के पैर के निशान अब भी तक भी है। तो आप जब भी जाएंगे ना, तो बरसाना का जब परिक्रमा लगाने का आपको मौका मिले, तो आप उसके दर्शन जरूर करिएगा। चलिए फिलहाल गाना सुनवाती है, एक बार राधा बनकर तो देखो सावरिया।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में। और समय की बात करूं तो 11:00 यानी कि 6 मिनट हो चुके हैं और एक वीडियो जो इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप कमेंट में जय माता दी लिखते हो तो आपके घर आईफोन 17 प्रो पहुंच जाएगा। यानी कि इन जनाब का कहना है, इनका नाम है राकेश यानी कि तिहार, जिन्हें राजा की किंग के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने आईफोन लंगर का आयोजन करने की घोषणा की है। यानी कि 1000 आईफोन तक बांटने की व्यवस्था पर चर्चित में चल रहे हैं। यानी कि उनका कहना है कि 22 सितंबर को चंडीगढ़ और मोहाली में आयोजित किया जाएगा। लेकिन सच बताऊं, कभी कभी हम ना ऐसे मतलब सोच कर देखो कि 1000 आईफोन, वो भी 70 प्रो, कोई नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं। हम इस बस ये वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए ऐसा डाला जाता है व्यूज बढ़ाने के लिए, लाइक्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ने के लिए। और उस चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें ये भी बोला जाता है कि अगर फॉलो हमें करोगे तो हम आपको फ्री में आईफोन देंगे, या फिर जो भी कुछ है, या फिर कम पैसों में आपको इतने इतने सामान मिल जाएंगे। लेकिन वो जरा सा स्कैम होता है, तो आपको ऐसे ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करनी है और आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और कोई कमेंट कुछ नहीं करना है कि कोई फ्री में आईफोन नहीं बांटता है। भैया आईफोन इतने महंगे आ रहे हैं, बहुत महंगे, और जो नया वाला आईफोन लॉन्च हुआ है 3 लाख रुपए। सोचो जिसकी सैलरी यानी कि साल की 3 लाख ना हो तो कैसे मैनेज कर पाएगा। और इसी मैनेज के चक्कर में आजकल बच्चों के भी मतलब बहुत सवार हो गया भैया कि आईफोन लेना है। घर पर लड़ाइयां, हम पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक हमें आईफोन नहीं मिलेगा। देखिए फोन, मुझे नहीं लगता कि आईफोन ही जरूरी है, बस काम चलना चाहिए, फोटो वीडियो खींच जाए, यही बहुत है। और मुझे लगता है कि इतने महंगे महंगे फोन, बड़े बड़े फोन, सोचिए वो टूट जाए, गुम हो जाए, तो 3 लाख गए पानी में, क्या कर पाएंगे फिर आप, कुछ भी नहीं। इसीलिए जितना जरूरत हो मतलब उतना ही, मतलब फोन बड़ा हो या छोटा, यार फोन फोन होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, आईफोन हो चाहे सैमसंग हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे पोपो हो, चाहे वीवो हो, फोन एक ही होते हैं। बस हम कहां कंफ्यूज रहते हैं क्वालिटी के ऊपर कि इसमें हमें एक तो स्टोरेज बहुत ज्यादा मिलेगा और फोटो अच्छे क्लियर आएंगे, वो तो हर फोन में आ जाते हैं, बस सेटिंग को देखना पड़ता है आपको, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। और इसी के साथ मैसेज की बात तो मैसेज आता है हमारे पास रानी नांगल से, रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। और ये गाना सुनना चाहती है, ओल्ड इज गोल्ड, सुन सुन ओ गुलाबी कली, आय हाय क्या बात है जी। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी जी, राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इनका कहना है कि ये गाना प्ले कर दीजिएगा काली काली नागिन सी तेरी जुल्फे, क्या बात है जी। ये जो गाना है मैं शायद पहली बार सुनूंगी और इस गाने को डेफिनेटली कोशिश करूंगी प्ले करने के लिए, तो हम आपको ये गाना जरूर सुनवाएंगे। फिलहाल आप अगर गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करके आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। इनफैक्ट आज किसी का बर्थडे है तो आप उनको बर्थडे सैली हम रेडियो पर विश करेंगे और देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। तो आप आराम से मैसेज कर सकते हैं, आपके पास समय है, यानी कि 11:10 हुए हैं, अभी 40 मिनट है, आराम से आप मैसेज करिए, ठीक है जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार।

हाय हाय, काली नागिन से जुल्फे तेरी। और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। सच में उदित नारायण जी की आवाज में, कविता कृष्ण मूर्ति जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना। और इस मूवी के अंदर, यानी कि जो ये मूवी फरमाया गया है आमिर खान और रानी मुखर्जी के ऊपर ये मूवी है, अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखिएगा भैया। और साथ ही साथ समय की बात करूं तो 11:20 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग मसाला शो विद आरजे रीना के साथ। और आज की तारीख यानी कि 19 सितंबर। और देखिए, लाइफ में ना कभी कभी हम इतने परेशान हो जाते हैं और हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हम अच्छी चीजें सीखते जा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप जितना आपको धोखा मिलता है आप उतने अच्छे पक्के होते जाते हो, उतनी अच्छी आपको तरकीब मिलती है, एक्सपीरियंस मिलता है कि हाँ भाई हमें किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहिए और किस तरीके से हर किसी के साथ पेश आना चाहिए, कैसे किसी के साथ रहना चाहिए, ये सब चीजें हमें जिंदगी में सिखा देती हैं। फिलहाल आप सभी के मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग हमारे पास आता है रिस्पेक्टेड होस्ट, यानी कि ये मैसेज आता है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजेस परवलीर जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं एक बहुत ही शानदार हमको तो जान से प्यारी है नैना मूवी से, ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हम आपको ये गाना सुनवाएंगे। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये मैसेज आता है हमारे पास, हेलो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मसाला शो में आप कैसे हैं? बहुत अच्छे जी, राधे राधे राधे राधे। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती है। मैम बहुत तेज वाली धूप हो रही है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, बहुत तेज वाली धूप हो रही है। और आज राधा रानी जी का जन्मदिन है, राधा अष्टमी की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं और आपको भी। और एक गाना सुनवा दीजिएगा, आपने जो गाना बताया ना, ये गाना 44 मिनट का, यानी कि जो 11 बजे का समय है ना वो पूरा इस गाने में खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार वाला गाना सुनवाऊंगी। राधा कृष्ण का एक गाना है, बहुत ही फिंटास्टिक वाला है, उस गाने को आप जरूर सुनिएगा। और आगे कुछ लाइनें भी लिखती है, राधा रानी की भक्ति में ऐसा रंग भर जाए, रीना मैम के जीवन में खुशियों के फूल खिल जाए, हर कदम पर मिले राधा रानी का प्यार, सदा बना रहे खुशियों से भरा आपका संसार। सेम टू यू जी, बरसाने वाली राधा रानी की कृपया बरसती रहे और रीना मैम की हर मनोकामना पूर्ण होती रहे, चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्रेम रहे अपार, राधे राधे रीना राधे रानी रखे आपका ख्याल, आप सभी का भी राधा रानी ख्याल रखे। और राधा रानी तो है ही करुणामयी, वो हर किसी का ख्याल रखती है, बहुत शीतल स्वभाव की है हमारी किशोरी जी, राधा रानी जी बहुत करुणामयी है। और जो आपने गाने की रिक्वेस्ट करी है वो गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो लव यू प्रेजेंटेशन, बेस्ट योर प्रेजेंटेशन। अजित कशाना जी, माया देवी जी, ऋतिक और आदित्य कशाना जी कनेक्ट होते हैं काठरुद्र धावली मुरादाबाद से, तो ये वाला जो गाना है हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार करिए और आरजे रीना के साथ यूं ही कनेक्ट रहिए। चलिए फिलहाल गाना सुनवाएंगे।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

0: वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
0: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके दोस्त आरजे खुशी। आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउडस्पीकर आवाज, सभी लोग ध्यान दीजिए। आज प्राथमिकता स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर है। अरे भाई, ये HPV क्या होता है और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, जरा इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइएगा ये क्या चल रहा है?
1: आरजे साहिबा, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए और भी हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण कैंप नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में तो विस्तार से जानने के लिए आपको पहले कहानी बताता हूँ। यहाँ एक गांव था, गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरीके से निकला भी नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम भी अलग। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, जो हम कह सकते हैं गुड़िया, गांव में गुड़िया कहा जाता। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्म। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी बहुत कुछ बन जाए बड़े होकर, जिससे उसकी जिंदगी और बेहतर हो जाए। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, फिर उन्होंने अपने पति रामपाल से बात। रामपाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटियां तो बिल्कुल ठीक है ना, तो क्या जरूरत पड़ी है इस टीके की? लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, यह टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो सकता है। रामपाल कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं, बस अफवाहें थी जो सुनी सुनाई। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना, जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी की जिंदगी को बीमारियों से बचा सकता है तो हम पीछे क्यों रहे। अगले ही दिन सावित्री और रामपाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई हुई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी सी डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां तो बिल्कुल हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन दो दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और भी लोग इससे प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामपाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीने बाद एक बदलाव साफ दिखने लगा, ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी। लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बातें हैं, लेकिन अब समझ आया ये हमारी बेटियों की भविष्य की बात है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की ही नहीं है, ये हर परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
0: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लगता है, जरा खुलकर विस्तार में बताइए।
1: चलिए आपको अच्छे से ही बता देता हूँ। HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते हुए रोका न जाए तो महिलाओं के अंदर आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय में मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
0: मतलब ये सीधे सीधे जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है?
1: हाँ जी बिल्कुल। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है आर्य साहिबा?
0: जी सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
1: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई ऐसी परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
0: मतलब इंसान को पता ही नहीं चलता?
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
0: अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत खतरनाक बात है। तो फिर इससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना?
1: यही अच्छी खबर है, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
0: सच में? कैसे?
1: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर आपको बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
0: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग भी अच्छे से समझ सके।
1: चलो आप कहते हो तो समझा देता हूँ। ठीक, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
0: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
1: बिल्कुल सही कहा, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
0: ओ, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है?
1: हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं, यही बीमारी को जाने के बाद काम आए। ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
0: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए, कोई खास उम्र होती है?
1: हाँ, इसकी सबसे ज्यादा फायदा तो तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
0: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र का हो?
1: तो भी कोई चिंता की बात तो नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितनी जल्दी लग जाए उतना बेहतर है।
0: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों की क्या भूमिका होती है?
1: यही तो सबसे अहम बात है, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
0: जरा विस्तार से बताइएगा।
1: जरूर, देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वे अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उसे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वह अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधाओं और सहयोग दे।
0: सही कहा आपने।
1: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा, आधी लड़ाई वह हारेगी। इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
0: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
1: बिल्कुल सही आरजे साहिबा, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गांव मजबूत बनता है।
0: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गांव में तो तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि ये टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
1: देखिए आरजे साहिबा, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आप सुन रही हैं ना, ये सच नहीं है, बल्कि क्या है, अफवाहें।
0: मतलब इसमें कोई सच्चाई नहीं है?
1: बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको एक एक करके चलिए साफ साफ करके बता देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगवाने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई तो यह है कि टीका लगवाने के बाद बस हल्का सा बुखार आता है या हाथ में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, क्योंकि मात्र 1 से 2 दिन में आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
0: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है,
1: यह भी पूरी तरीके से गलत। इस वैक्सीन में मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ भी नहीं।
0: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
1: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले लगवाना है, और तभी ये काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं ना, वैसे ये पहले सुरक्षा देता है। जरा सोचिए आरजे साहिबा, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
0: बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
1: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने तो लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हटे जाते हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंचे। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसी केस हो जाते हैं। उसी इलाके के पास एक गांव था, छोटा पुरवा, यही रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की उम्र की ही थी, हसमुख, चंचल और पढ़ाई में बहुत अच्छी। जब गांव में HPV टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई थी और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन, अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा देना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था, उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था, और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज वहीं दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा, मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटी, तुम

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाँ जी दोस्तों, कैसे हाल चाल है? मैं आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत करते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ साथियों, अगर हमारी सोच बदलेगी, हमारे समाज की सोच बदलेगी, तो हमारा देश अपने आप बदल जाएगा। एक बार फिर से आनंद हाजिर हो गया इस प्रोग्राम को लेकर, और आज हमारा मुद्दा बहुत ही खास और विशेष और अहम और महत्वपूर्ण है। सारे शब्दों का मैंने इस्तेमाल कर लिया है श्रोताओं। एक बार फिर से सबसे पहले आपका वार्म वेलकम करते हैं आपके फेवरेट स्टेशन एफएम मुरादाबाद 9.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और इस प्रोग्राम को आज मैं अकेला होस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरा साथ दे रही है हमारी प्यारी सी को एंकर कुमकुम। बहुत बहुत स्वागत है कुमकुम स्टूडियो में, कैसी हैं आप?
3: थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। आज का जो प्रोग्राम है सोच बदलो, आज उसके बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो काफी डिजिटल के बारे में बात करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहने वाला है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पर देखने से ज्यादा सुनाई देने वाला है कुमकुम जी। कुमकुम हाँ। अभी थोड़ी नई नई है इसलिए ना वो डिजिटल जमाने में ज्यादा एक्टिव है, इसलिए वो देखने की बात कर रही है, लेकिन हम यहाँ सुनाई देने की बात करते हैं क्योंकि यहाँ आवाजों की दुनिया है। तो कुमकुम हमारे साथ अभी नई जुड़ी है, श्रोताओं कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में अक्सर छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। लेकिन श्रोताओं प्रोग्राम का नाम बिल्कुल सही बताया, सोच बदलो। आज हम इस पे एक बहुत ही अहम मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिजिटल दुनिया की, जहां दोस्ती भी ऑनलाइन है, काम भी ऑनलाइन है और पहचान भी ऑनलाइन है। आजकल तो खाना पीना भी ऑनलाइन है, क्यों कुमकुम जी? कपड़े जी भी ऑनलाइन है,
3: अब तो हमें जो चाहिए वो ऑनलाइन मिल जाता है।
2: इनफैक्ट मजे की बात यह है, आजकल मेकअप भी ऑनलाइन है, आप नहाकर मत आओ, फिल्टर लगाओ, आपका मेकअप भी आ जाता है। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। लेकिन इस डिजिटल जमाने में जितनी चीजें मेरे और आपके लिए आसान है ना कुमकुम, उतनी ही खतरनाक भी है।
3: जी हाँ,
2: सही कहा ना मैंने?
3: सोशल मीडिया से हमारे कनेक्शंस और लोगों तक जा सकते हैं जो निगेटिव रहते हैं हमारे लिए।
2: करेक्ट करेक्ट, और हम वो सारी चीजें जाने जाने में शेयर भी कर देते हैं जिसका हमारे जो हेटर्स हैं वो वेट कर रहे होते हैं कई बारी। तो श्रोताओं आज इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। आप बिल्कुल चिपक के बैठिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफ एम मुरादाबाद 89.6 पे। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। जी हाँ, चलिए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः मिलेंगे। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।

0: वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।
1: जहाँ हर चीज हमारे लिए बहुत आसान हो गई, बहुत कन्वीनियंट हो गई है, बट कहीं ना कहीं हमारे लिए रिस्क भी बढ़ गया है। डिजिटल स्कैम्स लगातार हो रहे हैं, हम इन पे बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं। चीजें बहुत आसान हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी हम नहीं रखेंगे तो चीजें खराब भी हो सकती हैं।
2: हाँ, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकती हूँ।
1: हाँ, प्लीज।
2: जैसे कि डेटिंग एप्स हैं।
1: हाँ, अरे वाह, बताओ बताओ।
2: डेटिंग एप्स पे जो गर्ल्स अपने पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, कई बार उनके साथ भी फ्रॉड हो जाता है।
1: True.
2: या बॉयज के साथ भी हो जाता
1: True,
2: है।
1: ट्रू ट्रू। आजकल तो लड़के लड़कियां बन के घूम रहे हैं, व्हाट्सएप पे आईडी बनाते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, और आपको मैसेज करेंगे ये वो। इनफैक्ट सबसे मजे की बात तो ये है कि आजकल आप ही के दोस्त के नाम की आईडी बना के आपसे पैसे लूट रहे होते हैं लोग।
2: जी राइट।
1: ये भी बहुत हो रहा होता है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा?
2: मेरे साथ तो नहीं, बट मेरी फ्रेंड के साथ हो चुका है, क्योंकि उसके साथ तो मैंने ही करा था।
1: अयो रामा भाई, सबसे बड़ी यहाँ पर साइबर क्राइम बैठी हुई है, क्या कह रहे हो?
2: बट वो एक प्रैंक था।
1: अच्छा, प्रैंक था, बट यार ऐसे प्रैंक मत किया करो, दिक्कत हो जाती है। वही जैसे जोक सपाट दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा नया प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो, और अगर हम बदलेंगे तो सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो समाज अपने आप बदलेगा। और आज हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक है सोशल मीडिया सिक्योरिटी, यानी कि खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रखना भी जरूरी है। तो तुम क्या मानती हो कुमकुम, ऑनलाइन जितनी सारी चीजें आजकल हमें मिल रही है, इसमें क्या रिस्क भी है?
2: जी हाँ, अगर हम अपनी सारी चीजें ही सोशल कर देंगे तो सारी चीजें लोगों को पता चल जाएंगी, और जिससे हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
1: और लोग करते हैं यार
2: जी।
1: अगर लोग चाय भी पी रहे हैं उसकी फोटो, थोड़ी देर बाद सैंडविच खा रहे हैं उसकी फोटो, कहीं जा रहे हैं उसकी फोटो, मैं गाइस यहाँ हूँ मैं वहाँ हूँ।
2: एक्चुअली लोकेशन इंस्टाग्राम पे मोस्ट ऑफ डालते हैं कि लोकेशन के साथ कि हाँ हम यहाँ जा रहे हैं,
1: और जबकि वो आपके लिए घातक भी हो सकता है।
2: जी, आप पैसे निकाल लें एटीएम से तब आप ऑनलाइन है, लाइव आ रहे हैं, ये सारी चीजें गलत है।
1: गॉट इट, बिल्कुल सही कहा इसने। और श्रोताओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन खुद ही शेयर कर देते हैं, जैसे इन्होंने कहा, जैसे कि लोकेशन। एग्जैक्टली, फोन नंबर भी हम कई बार डाल देते हैं ना जब हम आईडी बना रहे होते हैं। आजकल तो खैर लोग कुछ कुछ तो ऐसे हैं जो अपना आधार कार्ड भी डाल देते हैं भाई, जबकि वो नहीं डालना होता है। दिस इज फुल ऑफ प्राइवेसी, बट क्या ही कर सकते हैं। देखिए, हमारा डेली रूटीन है, मानते हैं, एक तो आदत भी हो गई है कहीं ना कहीं कुमकुम इस चीज की ना हमें, कि उठते ही हर चीज शेयर करनी है, हर चीज को दिखाना है।
2: सोशल मीडिया का कीड़ा बनना हो गया है एक तरह से।
1: करेक्ट करेक्ट, मतलब पूरे आदि बन चुके हैं हम
2: जी।
1: अगर एक दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो पता नहीं लोग क्या हाल होगा,
2: आधी दुनिया रुक जाएगी।
1: सच बोल रही है यार, ये तो मुझे भी लगता है। तो दोस्तों यहीं से शुरू होता है खतरा, यानी कि हैकर्स या फिर फ्रॉड जिन्हें हम कहते हैं। और आज छोटी छोटी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक हमने आपको बता ही दिया है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ श्रोताओं, सोशल मीडिया सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, कैसे आप बच सकते हैं सोशल फ्रॉड से, इस पे हम चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको जरूर ध्यान में रखनी है, सोच बदलो प्रोग्राम के अंतर्गत आपके साथ तमाम बातें साझा करेंगे। आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा अंतराल, उसके बाद पुनः लौट कर आ रहे हैं मैं और कुमकुम।

0: जरूरी है, थोड़ी नहीं पूरी सावधानी बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो। तो मेरे साथ दे रही है कुमकुम जी। कुमकुम, आपको कैसा लगा ये गाना और आप क्या कहना चाहेंगी इस गाने के बारे में?
1: ये गाना तो बहुत अच्छा था और मैं इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया सिक्योरिटी यानी हाँ खुद को आप ऑनलाइन कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इसके बारे में भी और आगे बताएंगे। इतने हम आनंद जी से जानते हैं, क्या क्या बोलना चाहिए?
0: देखो यार, मैं यही बोलना चाहता हूँ, देखिए सोशल मीडिया पे ना जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें अक्सर अवॉइड करनी चाहिए, और ये गलतियां हम डेली करते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऐसा नॉन लिंक हमारे पास आता है इंस्टा या फेसबुक पे हम तुरंत क्लिक कर देते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे आता है हम तुरंत क्लिक कर लेते हैं, और ये लिंक पे क्लिक करना ही सबसे बड़ा रिस्क होता है। दूसरा, तुम्हें भी पता होगा हर फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे पास 2 मिनट में आती है, ऐसे ऐसे लोगों की आती है जिनको हम जानते भी नहीं है और कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। और एक और बात, कई बारी होता है ना कि हम अपना पासवर्ड बहुत कमजोर बनाते हैं, कई बारी अपना फोन नंबर रख लेते हैं, कई बारी 1, 2, 3, 4, 5 रख लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए कन्वीनियंट है, लेकिन ये पासवर्ड हैकर्स बहुत आसानी से हैक कर सकते हैं और आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, स्कैम हो सकता है सोशल मीडिया वाला। दूसरी बात, सबसे अहम जो आपको याद रखनी है, किसी को भी अपना ओटीपी नहीं बताना है, ये तो आप भी जानती हैं।
1: शेयर नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल, आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे ओटीपी को लेकर?
1: ओटीपी को लेकर मैं शेयर करना चाहूंगी कुछ बातें, जैसे कि हमारे बैंक अकाउंट की डिटेल्स होती हैं, हमारी सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के ऐप्स के जो भी होते हैं उसका ओटीपी आता है, जो हम कभी कभी दोस्तों में अपनी आईडी बताने के चक्कर में शेयर कर देते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना चाहिए। ओटीपी तो बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों याद रखिए, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड नहीं होता, ओनली टू पर्सन यानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कुमकुम ने, जो पासवर्ड है ये सिर्फ आपके लिए है, आप ही का बनाया हुआ है और आप इसका सही इस्तेमाल करें और हर किसी के साथ अपनी पर्सनल डेटा पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी साझा ना करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, आप कहीं नहीं जाएंगे, सुनते रहेंगे कुमकुम और आनंद को। प्रोग्राम का नाम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
3: अरे बेटा बस थोड़ी दूरी तो जाना है।
2: पर पापा।
3: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
4: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है, ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया सुरक्षा की, क्योंकि आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऑनलाइन दुनिया में बीतता है। सोशल मीडिया आखिर क्या सच में हमारे लिए जितना लाभदायक है क्या उतना खतरनाक भी है? तो चलिए इस पर बात करते हैं। श्रोताओं, आज हम फोटो वीडियो शेयर करते हैं, अपनी लोकेशन बताते हैं, परिवार और दोस्तों से जुड़ते रहते हैं, निजी विचार और जानकारी पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आपकी पोस्ट कौन कौन देख रहा है और उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? सोशल मीडिया पर ज्यादा जानकारी साझा करना आपको ठगी, पहचान की चोरी और ब्लैकमेल का शिकार भी बना सकता है। तो चलिए एक रेडियो ड्रामे के जरिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि एक पोस्ट कई मुसीबतें लेकर आ सकता है। रोहन, दोस्तों मैं परिवार के साथ 7 दिन के लिए मनाली जा रहा हूँ, ये रहा होटल का नाम और पूरा ट्रेवल प्लान। रोहन, तुम्हारे अकाउंट से मैसेज आया है, तुम फंस गए हो या पैसे चाहिए? क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं भेजा, किसी ठग ने रोहन की पोस्ट से जानकारी लेकर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बना ली, उसके दोस्त को मैसेज भेज दिया, मैं मुसीबत में हूँ तुरंत पैसे भेज दो। कुछ दोस्तों ने पैसे भी भेज दिए हैं। सोशल मीडिया पर कुछ खतरे ऐसे हैं जो आम हैं, जैसे कि फर्जी प्रोफाइल, पहचान की चोरी, फोटो और वीडियो का गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेल या मार्फिंग, फ्रॉड लिंक और गिफ्ट स्कैम, लोन या इनाम का लालच। कई बार ठग आपकी प्रोफाइल से आपका जन्मदिन, आपका मोबाइल नंबर, आपके परिवार की जानकारी इकट्ठा करके आपके पासवर्ड का अंदाजा भी लगा लेता है। अगर आपको कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं तो आप जरूर सतर्क रहिए। अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट आना, आप इनाम जीत गए हैं जैसा मैसेज आना, बैंक या लोन का ऑफर सोशल मीडिया से, किसी करीबी के नाम से अचानक पैसे मांगना, संदिग्ध लिंक। याद रखिए, हर प्रोफाइल असली नहीं होती। सोशल मीडिया को आखिर सुरक्षित कैसे रखें? आपकी प्रोफाइल प्राइवेट होनी चाहिए, मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू होना चाहिए। अनजान फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अपनी लोकेशन सार्वजनिक रूप से पोस्ट न करें, निजी दस्तावेज या पहचान संबंधी जानकारी साझा न करें। महिलाओं और छात्रों को मैं कुछ खास सलाह देना चाहूँगा। सोशल मीडिया पर अक्सर महिलाओं को फर्जी प्रोफाइल से परेशान किया जाता है, छात्रों को फर्जी स्कॉलरशिप या जॉब ऑफर दिया जाता है, इसलिए अनजान लोगों से चैटिंग में सावधानी रखें। फोटो और वीडियो सोच समझकर शेयर करें। ब्लैकमेल होने पर चुप न रहें। अगर सोशल मीडिया फ्रॉड हो गया हो तो आपका अकाउंट हैक हो जाए, कोई फर्जी प्रोफाइल बन जाए, ब्लैकमेल किया जाए, तो आप तुरंत 1930 पर कॉल करें और आप अपनी शिकायत www.cybercrime.government.in पर भी जाकर कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा की अधिक जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर जा सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़े 7 ऐसे नियम मैं जो आपको बताना जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हैं। कम से कम निजी जानकारी शेयर करें, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें, मजबूत पासवर्ड रखें, संदिग्ध लिंक से बचें, लोकेशन सार्वजनिक ना करें, शक हो तो तुरंत उसे रिपोर्ट कर दें। श्रोताओं, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है लेकिन सावधानी के बिना नुकसान भी पहुंचा सकता है। लाइक और शेयर से पहले एक बार जरूर सोचें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ से। कार्यक्रम से अलविदा लेने से पहले मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानी जरूर बरतें। जैसा कि बताया गया कि हर किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। अगर आपने अपना पासवर्ड कमजोर बनाया है तो ऐसा करें कि उस पासवर्ड को स्ट्रांग बनाकर रखें। अपनी प्रोफाइल किसी के साथ साझा न करें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ पोस्ट भी कर रहे हैं अपनी फोटो, तो कोशिश करें आप लोकेशन वहां पर ना साझा करें। अगर आपके पास कोई भी मैसेज आता है जिसमें पैसे की लेन देन के बारे में बात हो रही है, तो उसे इग्नोर करें। सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी उकसाते हैं, तो उन चीजों से बचकर रहें। जितनी सावधानी आप बरतेंगे उतना आप सुरक्षित रहेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एक बार जरूर सोचें कि शायद ये सोशल मीडिया आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है, तो उतना ही इस्तेमाल करें जिससे आपको कोई परेशानी ना हो।
0: तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो जानकारी सुनी इस पे आप जरूर अमल करेंगे, गौर करेंगे और इन छोटे छोटे बिंदुओं को अपने जीवन में आप जरूर उतारेंगे। और भैया, ईच वन टू कीच वन, आप भी अप्लाई करें, औरों को भी करवाएं। तो ये छोटी सी जानकारी इस प्रोग्राम के जरिए, जिसका नाम है सोच बदलो, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम यहीं पर अटके रह जाएंगे, क्यों कुमकुम? तो इसीलिए हमारा मुद्दा भी यही है कि सोच बदलना जरूरी है, और सोच बदलने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों का बदलना जरूरी है, डेली रूटीन की हैबिट को बदलना जरूरी है। अच्छा, मान लो कुम, आज हम सोशल मीडिया सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जहां दिन भर में तमाम 50 फोटो हम शेयर करते हैं, 100 लाइक्स हमारे पे आती हैं, नहीं आती है तो हम बड़े डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार मेरे पड़ोसन की फोटो पे 50 लाइक आए हैं, मेरे पे 2 ही आए हैं, ये सोच के भी लोग तनाव में चले जाते हैं।
1: जी हाँ, बहुत सारी लेडीज भी ऐसी होती हैं, बहुत सारे पड़ोसी भी ऐसे होते हैं कि हाँ भाई ये उठ रहा है और हम नहीं उठ रहे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: ऐसा सोच के। अच्छा, मान लीजिए अगर आनंद जी आपको वो इंस्टाग्राम पे कोई लिंक सेंड करे कि हाँ आपने 50 लाख की लॉटरी जीती है और आपका भाग्य खुल चुका है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे?
0: देखो यार, अगर 50 लाख की लॉटरी या 25 लाख की लॉटरी का मेरे को कोई मैसेज आता है और वो कहेगा कि पहले लिंक क्लिक करो, तो मैं एक्साइटमेंट तो सबको होगी, मैं जरूर सोचूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो 50 लाख का मुझे लालच दिया जा रहा हो।
1: जी हाँ, ऐसा मेरे भाई के साथ भी हो चुका है।
0: अच्छा?
1: तो पक्का बोला था, मतलब? कि आपकी लॉटरी में बाइक निकली है।
0: कौन सी वाली थी, स्प्लेंडर या कौन सी?
1: सुपर बाइक।
0: सुपर बाइक या केटीएम बाइक?
1: नहीं, सुपर बाइक थी वो, एक जो कि यहाँ नहीं था, इंडिया से बाहर का था। उसमें बोला गया था कि आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आके ले लो और 15,000 रुपए पहले जमा कर दो।
0: अरे बाप रे, तो मतलब ये तो धड़ाधड़ वाला धोखाधड़ी था यार। तो मतलब किया तो नहीं भाई ने ऐसा?
1: नहीं नहीं, भैया ने बोला कि आप हमारे पहले बाइक खुद लेके आओ, अगर आप हैंड टू हैंड देंगे तब हम आपको दे देंगे।
0: ओके तो ये तो चलिए अच्छा बोला भैया ने, थैंक गॉड। तो इससे कहीं ना कहीं आप बच गए
1: जी,
0: है ना। दोस्तों ऐसे आए दिन हमारे साथ भी होते हैं, और जैसे इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई बोलता है कि आपके इंस्टाग्राम पे रैंडमली कोई मैसेज आता है

0: सामुदायिक रेडियो जो आपको कहता है सोच बदलिए, अपने इरादों को बदलिए और थोड़ी सी नई सोच को अपनाइए, है ना, स्मार्ट सोच को अपनाइए। आप सिर्फ पुरानी चीजों पे नहीं रहना है। स्मार्ट सोच का मतलब यही है कि जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा स्मार्ट बनाइए। जैसे डिजिटल हम सोचते हैं ना कि यार सब चीजें आसान हो जाए, वैसे थोड़ा सोच को भी आसान बनाइए। बहुत ज्यादा अगर थका दोगे तो कहीं ना कहीं जाने जाने में लिंक पे क्लिक कर दोगे और लिंक पे क्लिक किया तो लॉस हो जाएगा। क्यों
1: जी? राइट, आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना है जिससे कि आप खो ना जाए और लिंक पे क्लिक ना कर जाए।
0: फिलहाल तो हम दोनों खोने वाले हैं अभी एक खूबसूरत गाने में, उसके बाद हम दोनों लेंगे जाने की इजाजत। लेकिन जाने से पहले कुछ और अहम और महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, तो एक म्यूजिकल ब्रेक, फिर लौट कर आते हैं मैं और कुमकुम।

0: सकता है। एग्जैक्टली तो बस याद रखिए, सेफ रहिए, सतर्क रहिए, जो आप कर रहे हैं अच्छे से करिए, लेकिन हर चीज को अपलोड मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी फोटो का कौन गलत इस्तेमाल कर ले। एआई का जमाना है आजकल, तो वैसे भी गर्दन किसी और की होती है, बॉडी किसी और की होती है, तो उसका शिकार आप ना हो, हम ना हो, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ी सतर्कता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर और मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। तब तक के लिए मैं आरजे आनंद लेता हूँ आपसे इजाजत, अनुमति और कुमकुम आप भी चलो बाय करो।
1: बाय।
0: बस भी इतना ही बोलेगी, अभी इसको ज्यादा थोड़ा सा जो है मतलब सीखने की जरूरत है, अभी उसको ज्यादा आ नहीं रहा है, इसने प्यार से बोला बाय। चलो ठीक है, चलो मैं अपना थैला उठाता हूँ, लाओ। अरे मेरा ये फेस वॉश तो रख दो। अरे बाबा मेरी सनस्क्रीन भी रखो इसमें। एक तो गाइस धूप बहुत हो रही है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप घर से बाहर जा रहे हैं ना तो अपने थैले के अंदर सनस्क्रीन और ये काला चश्मा। मेरा चश्मा कहाँ गया यार? कुमकुम मेरा चश्मा है क्या? अच्छा ये हाँ। तो गाइस आप लोग भी अपना चश्मा, पानी की बॉटल और ये सनस्क्रीन सब अपने साथ रखिए और ख्याल रखिए, और डिजिटली थोड़ा सा एक्टिव रहिए बट सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ।
1: आपके हाथ में
0: क्या बात है, बिल्कुल मेरे हाथ में मेरा थैला दो। चलो बाय गाइस।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
4: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक TM कार्डियोलॉजी द्वारा
3: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
5: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आप सुन रहे अपने शहर का सामुदायिक रेडियो। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है सीनियर सिटीजन कानूनी अधिकारों के बारे में, यानी कि हमारे बुजुर्ग समाज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, लेकिन कई बार उन्हें अपने ही अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
1: देखिए मैं बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है। और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो सबसे बड़ी चीज है ये इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
0: सही का
1: तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल सर। तो चलिए इस सिलसिले को हम शुरू करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सीनियर सिटीजन के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है?
1: देखिए कानून के बारे में जानने से पहले मैं पहले अपने जो हमारे समाज में जो इस समय बुजुर्गों की स्थिति है उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। अधिकतर देखा गया जो हमारे समाज में सीनियर सिटीजन हैं उनको मोस्टली एक हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है आजकल के यूथ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, उनको बिल्कुल किसी भी चीज की भरण पोषण की आवश्यकता है या कोई हेल्प चाहिए उनको इग्नोर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने हमें बचपन में पाला पोसा, हमें हमारे पालन पोषण किया, भरण पोषण किया, अब हमारा भी दायित्व है कि अगर वो इस एज में है तो
0: उनकी सेवा करें,
1: सेवा करें हम भी। और भारत में सीनियर सिटीजन्स के अगर हम अधिकारों के लिए बात करते हैं, सुरक्षा के लिए उनकी बात करते हैं, तो मुख्य रूप से एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है। ये कानून के तहत बच्चों या परिवार के सदस्यों के अपने माता पिता की देखभाल के लिए भरण पोषण का अधिकार है। अगर कोई जो भरण पोषण अपने माता पिता का नहीं कर रहा है, जैसे अधिकतर घर में देखते भी हैं कि भाई बच्चों की शादी हो जाती है तो वो अपना
0: अलग रहने की कोशिश करते हैं
1: और माता पिता को उनके हाल पे छोड़ देते हैं, और उस समय जो कठिनाइयां झेलनी पड़ती है सीनियर सिटीजन्स को, तो उसके लिए भी उनके पास राइट्स है, वो कोर्ट में विवाद दायर करके उनके मेंटेनेंस इत्यादि मांग कर सकते हैं भरण पोषण की।
0: बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन है हमारा सर, अगर बच्चों के द्वारा माता पिता की देखभाल नहीं की जाती तो बुजुर्ग क्या कर सकते हैं?
1: देखिए ऐसी स्थिति में आप किसी भी लीगल लॉयर की एडवोकेट की हेल्प लें, उसे पूरी बात बताएं, और ऐसी स्थिति में आपको जो है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में आप शिकायत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल बच्चों को आदेश दे सकता है कि आप अपने माता पिता की सेवा करें। लोकल आप एसडीएम कोर्ट में आप कंप्लेन कर सकते हैं, डीएम के यहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो है कानूनी विधि हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों से मदद मांग सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रत्येक बच्चों को खुद ही आगे आके अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, दायित्व का निर्वहन करना चाहिए।
0: जिस तरीके से हमें माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, बड़े करते हैं, वही हमारा दायित्व है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए।
1: करनी चाहिए, क्योंकि हम भी कभी उसी स्थिति में थे कि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं था।
0: बिल्कुल सर। और इनफैक्ट तो हम भी उस एज में आने वाले ही एक टाइम।
1: बिल्कुल, जैसा आप बीज
0: वैसे ही फल मिलेगा,
1: फल मिलेगा आपको।
0: बिल्कुल सर। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या सीनियर सिटीजन अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो है लोकल जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे आवेदन करके आप जो है मांग कर सकते हैं। यदि कोई बुजुर्ग अपना खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहा है तो वह अपने बच्चों से कानूनी वारिसों से भरण पोषण की मांग कर सकता है।
0: श्रोताओं आपको जो ये हमारी बात है आई होप कि बहुत अच्छी लग रही होगी। तो अगर आपके भी मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896। यानी कि अगर किसी बुजुर्ग को उनके ही घर में जबरदस्ती निकाल दिया जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई आपके साथ दुर्व्यवहार या कोई जबरदस्ती घर से निकालने की कोशिश करे, तो सबसे पहले तो आप 112 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाएं। पुलिस आपकी तुरंत हेल्प करेगी। सीनियर सिटीजन एक्ट में भी ये आपको अधिकार दिया गया है। पुलिस आपकी तुरंत सहायता करती है। नजदीकी थाने या चौकी पे जाके अपनी पूरी बात बताएं। रिटन में अगर कंप्लेन करने को आप पुलिस अधिकारी आपसे कहते हैं तो लिखित में अवगत कराएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप तुरंत किसी लीगल सलाहकार से बात करके ट्रिब्यूनल में अगर आप केस डालना चाहते हैं तो आप केस भी डाल सकते हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी।
0: और बहुत से बुजुर्ग है सर, उनके पास फोन नहीं होते तो वो कैसे पहुंच सकते हैं?
1: देखिए, नजदीकी थाने में तो आपको पता होता है कि कहाँ पे है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई आपका मित्र है या संबंधी है तो आप तुरंत उसकी मदद मांगी कैसे भी करके, लेकिन सूचना आपको पुलिस को देना जरूरी,
0: पहुंचाना जरूरी है
1: तुरंत।
0: चलिए सर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी कदम उठा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल उठा सकते हैं। जितने भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग अपनी संपत्ति को देते समय कुछ शर्तें रख सकते हैं। अगर उन शर्तों का पालन के वारिसान नहीं करते हैं तो वो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द भी कर सकते हैं कानूनी।
0: बिल्कुल।
1: तो लेकिन जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन है वो लिखित में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्रॉपर यही है कि लिखित में हो।
1: हाँ,
0: तभी
1: अगर आप कोई भी संपत्ति अपने वारिसों को देते हैं या दान करते हैं और दान करने के बाद वो आपकी सेवा नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, तो अक्सर मन में ये मलाल रहता है कि हमने संपत्ति क्यों दे दी।
0: बिल्कुल।
1: तो जो भी आपके मन की बात है, जो भी टर्म्स कंडीशन है, वो पहले ही लिखित में आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं।
0: इससे लिखित में होगा तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी सर?
1: आपका अधिकार बना रहता है फिर भी। अगर मान लीजिए आपको कोई दान में दी हुई चीज रद्द करनी है या किसी चीज को लेके आप उसमें कोई पॉइंट ऐसा है कि जो आपने उसमें क्लॉज में लिखा हुआ है और उसकी वो फुलफिल आपके वारिस नहीं करते, तो आप उस चीज को लेके भी आप जो भी आपने कोई भी उनको फेवर दिया तो उस पॉइंट पे आप उनको रद्द भी कर सकते हैं।
0: ओके सर, क्या सरकार सीनियर सिटीजन के लिए अलग से अदालत या ट्रिब्यूनल की व्यवस्था करती है?
1: हाँ बिल्कुल, सीनियर सिटीजन को मुख्य रूप से प्रायोरिटी पे सुना जाता है। अगर हम कोई भी बात दायर करते हैं तो उनके लिए एक जो है कोर्ट का भी जो है अलग ही एक नजरिया रहता है। और मुख्य रूप से जो ये हमारी सरकार की नीति है या हमारी जुडिशरी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता प्रथम पायदान पे दी गई
0: दी जाती है।
1: जी।
0: सीनियर सिटीजन को सरकारी योजनाओं में कोई विशेष सुविधाएं मिलती हैं?
1: सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी सुविधाएं काफी दी गई हैं। जैसे आप सरकार की तरफ से बुजुर्गों के लिए पेंशन है, उनकी स्वास्थ्य संबंधी है, यात्राओं में छूट दी गई है, उनके सामाजिक योजनाएं कई सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं ताकि वो अपना जीवन यापन सुरक्षित व सम्मान ढंग से कर सके।
0: बहुत अच्छी बात है सर। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी बुजुर्ग के साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाए तो क्या कर सकते हैं?
1: देखिए, बुजुर्गों को सबसे बड़ी चीज है कि जो क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है वो सॉफ्ट टारगेट समझता है, क्योंकि इस एज में एक तो बुजुर्ग ज्यादा जो है सोचने विचारने की शक्ति थोड़ा सा उनकी कम,
0: थोड़ी शक्ति उनकी कम हो जाती है,
1: कम हो जाती है, शरीर भी थोड़ा दुर्बल हो जाता है,
0: मतलब एनर्जी पावर थोड़ा लो हो जाता है।
1: क्रिमिनल व्यक्तित्व के लोग हैं वो सॉफ्ट टारगेट उनको लगता है कि वो बुजुर्ग को बनाए। अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो आप तुरंत जो है पुलिस में लेकर शिकायत दर्ज कराएं, कानूनी सहायता आप लीजिए। कानून बुजुर्ग को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए ही सख्त प्रावधान कानून के तहत बने हैं और बुजुर्गों की जो शिकायत है वो बिल्कुल प्रथम पायदान पे जाके सुनी जाती है पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो निश्चित तौर पे आपको तुरंत लीगल एक्शन लेना चाहिए।
0: क्या बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार करना कानूनी अपराध है?
1: जी हाँ, बुजुर्गों के साथ कानून अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है कोई, तो ये कानूनन अपराध है। आमतौर की डेली दिनचर्या में हम देखते हैं कि अगर हम कहीं सड़क पे जा रहे होते हैं या पड़ोस में ही होते हैं तो हम किसी बुजुर्ग को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, धमका देते हैं, तो ये भी क्राइम है अपने आप में।
0: अच्छा, मतलब कोई धमका रहा है, कुछ गलत
1: तो
0: बोल रहा है,
1: आप किसी को भी आप ऐसे
2: झौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
3: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
3: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
3: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
3: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
2: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
3: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
2: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
4: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उड़ने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
5: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
0: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला यह वायुसेना का नौवां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
6: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवा मुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
7: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
8: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
7: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालुमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
10: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
9: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
11: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
12: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
11: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
12: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
11: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर। जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और फिर से आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं लेकर शो यानी कि महिला मंच, जहां हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। और मैं हूं आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी, हम दोनों साथ में ही आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है महिला मंच शो में, महिलाओं में बढ़ता वजन और खान पान। ये वजन अचानक नहीं बढ़ता, वजन तो धीरे धीरे बढ़ता है। कभी आईने के सामने खड़े होकर आपने खुद को कहा है, अरे यार वजन इतना कैसे बढ़ गया, कपड़े पहले जैसे फिट नहीं आते, सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले से ज्यादा थकान, और फिर सबसे पहला फैसला बस अब खाना कम करना है। हर कोई यही सोचता है अपने मन में कि बस खाना कम कर दो तो हमारा वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन बहनों जरा रुकिए, क्या वजन बढ़ने की वजह सिर्फ खाना है? क्योंकि एक महिला के जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव होता है। उम्र बढ़ती है, हार्मोन बदलते हैं, शादी के बाद रूटीन बदलता है, प्रेगनेंसी आती है, बच्चों की जिम्मेदारी आती है, काम का स्ट्रेस आता है, और इन सब के बीच हम अक्सर अपने शरीर को आखिरी नंबर पर रख देते हैं। तो आज हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वजन कम करो, आज हम समझेंगे कि वजन बढ़ने से पहले हमारा शरीर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं। और सबसे पहला सवाल यही है, क्या सच में कम खाना ही वजन घटने का रास्ता है? सो इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो खुशी तुम क्यों बैठी हो, बोलो तुम भी।
13: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और सभी को कंफ्यूजन रहता है एवरीवन कि खाना कम खाएं या खाना सही खाएं। बहनों तो मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगी कि वजन बढ़ना और हमने क्या किया, रोटी कम, चावल बंद, मिठाई बंद, और कभी कभी तो हम खाना ही छोड़ देते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, हमारा शरीर कोई मोबाइल नहीं है कि बैटरी कम हुई तो बस स्विच ऑफ कर दिया। शरीर को एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और वो भी हर दिन। अक्सर हम सोचते हैं जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, लेकिन असल बात ये है कि हम क्या खा रहे हैं और कितनी मात्रा में खा रहे हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है। एक महिला सुबह से रात तक घर संभालती है, नौकरी करती है, बच्चों को देखती है, ऐसे में शरीर को सही न्यूट्रिशन देना जरूरी है। तो आज से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, कि अपने प्लीज से पूछिए, क्या मेरा पेट सिर्फ भरा हुआ है या मेरे शरीर को पोषण भी मिल रहा है। और यहीं से हमारी अगली बात शुरू होती है, क्योंकि कई बार समस्याएं खाने की मात्रा में नहीं होती, समस्याएं हमारी प्लेट में छिपी होती है। तो दोस्तों, अब हम अपने प्लेट को थोड़ा गौर से देखेंगे और शायद आपको अपनी रोज की एक ऐसी गलती दिखाई दे जाए जिस पर आपने कभी ध्यान ही ना दिया हो।
14: आपकी प्लेट क्या कहती है, बात इस टॉपिक पर करेंगे। आज रात का खाना खाते समय अपने प्लेट को जरा ध्यान से देखिएगा। रोटी या चावल तो है, लेकिन सब्जी कितनी है, दाल या कोई प्रोटीन वाली चीज है, सलाद है और तेल कितना है। हम अक्सर कहते हैं मैं तो बहुत कम खाती हूँ, लेकिन अगर प्लेट में पोषण का बैलेंस नहीं है तो सिर्फ कम खाना ही सॉल्यूशन नहीं है। एक और बात, खाना खाते समय मोबाइल चलाना, टीवी देखना या जल्दी जल्दी खाना, इससे भी हमें ये समझ मुश्किल हो जाती है कि हम कब पर्याप्त मात्रा खा चुके हैं। तो अगली बार खाना खाते समय थोड़ा रुकिएगा, धीरे धीरे खाइए, खाना चबा कर खाइए और अपनी प्लेट को देखिए, क्योंकि हेल्दी ईटिंग का मतलब भूखे रहना नहीं, हेल्दी ईटिंग का मतलब है अपने शरीर को समझ कर खाना। लेकिन अब सवाल ये है कि खाना तो हम दिन में 3 बार खाते हैं, लेकिन बीच में जो छोटी छोटी चीजें खाते हैं उनका क्या, एक बिस्किट, एक नमकीन, एक कप चाय, यहीं से असली कहानी शुरू होती है।
13: और वो छोटी छोटी चीजें होती हैं, चाय के साथ 2 बिस्किट को क्या आप पूरा खाना मानती हैं? शायद नहीं। शाम की थोड़ी सी नमकीन, अरे बस थोड़ी सी तो थी, किसी के घर गई तो मिठाई का एक टुकड़ा एक ही तो खाया, लेकिन यही थोड़ी थोड़ी अगर रोज होता रहे तो हमारी ईटिंग हैबिट्स का हिस्सा बन जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आपको मिठाई या चाय हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए, बात सिर्फ इतनी है कि हमें अपनी आदतों को पहचानना है। अगली बार जब बिना भूख के कुछ खाने का मन करे ना, तो खुद से पूछिए, मुझे सच में भूख लगी है या बस आदत है। और हाँ, और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, कभी कभी हमें भूख नहीं होती फिर भी खाने का बहुत मन करता है, क्यों? क्या इसका कनेक्शन हमारे स्ट्रेस और मोशन से भी हो सकता है? इसका जवाब अगले लिंक में आपको रीना जी देने वाली है, तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अभी आपको मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: खाने पीने के बात हो और मुंह में पानी ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। साथ ही साथ आपने गाना भी इतना जबरदस्त वाला सुना ना श्रोताओं। सो चलिए बात करते हैं, भूख पेट की है या मन की? कभी बहुत तनाव हुआ और अचानक मीठा खाने का मन किया हो, कभी किसी बात से परेशान होकर लगा हो चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं, इसे हम इमोशनल ईटिंग कह सकते हैं। यानी कई बार हम पेट की भूख से ज्यादा अपने इमोशंस की वजह से कुछ खाने लगते हैं। और महिलाओं की जिंदगी में स्ट्रेस की कमी तो नहीं, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता, नौकरी, परिवार, रिश्ते, कई बार महिला सबको संभालते संभालते खुद को अंदर का तनाव दबा लेती है और फिर बिना सोचे कुछ खा लेना आसान लगता है। तो अगली बार जब अचानक खाने की बहुत इच्छा हो सिर्फ 10 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, मुझे भूख लगी है या मुझे आराम चाहिए? शायद जवाब आपको खुद मिल जाएगा। लेकिन स्ट्रेस की बात निकलती है तो एक और चीज याद आती है, नींद, जो कि नींद बहुत मायने रखता है हमारे लाइफ में, क्योंकि कई महिलाएं तनाव तो झेलती है लेकिन आराम वो सबसे आखिरी में करती हैं। और नींद का हमारे ईटिंग हैबिट से क्या रिश्ता है इसके बारे में भी जानेंगे।
1: देखिए, नींद बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, और घर में सबके सोने का समय तय है, बच्चों का, पति का, ऑफिस का, लेकिन आपका नहीं। कई महिलाएं रात को सबसे आखिरी में सोती हैं और सुबह सबसे पहले उठती हैं और फिर दिन भर थकान रहती है। जब नींद पूरी नहीं होती हमारी एनर्जी, मूड और खाने की आदतों पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ डाइट नहीं, खाना सही, मूवमेंट सही और नींद भी सही। आज रात एक काम कीजिएगा, सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अपने शरीर को आराम देने का मौका दे रही हूँ? क्योंकि शरीर दिन भर आपका साथ देता है, उसे रात में आराम देना भी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन बहनों, महिलाओं की जिंदगी में ना एक और चीज है जो धीरे धीरे शरीर को बदलती है, उम्र के साथ आने वाले हार्मोनल चेंजेस, और कई महिलाएं इसे सिर्फ वजन बढ़ गया समझकर छोड़ देती हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, हार्मोनल का भी यही खेल है। महिला का शरीर बहुत खास है और जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर इसमें बदलाव आते रहते हैं, पीरियड्स, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, और इनमें स्टेजेस में हार्मोनल चेंज होते हैं और इनके साथ वेट, स्लिप और बॉडी शेप में बदलाव भी महसूस हो सकते हैं। इसीलिए हर बार वजन बढ़ने पर खुद को दोष देना ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर बदलाव को सिर्फ हार्मोन्स कहकर छोड़ देते हैं। अगर वजन तेजी से बढ़ रहा हो, पीरियड्स में बदलाव है या कोई और परेशानी लगातार बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना ही समझदारी है, क्योंकि अपने शरीर को समझना कमजोर नहीं समझदारी है। और अब बात उस समय की जब बहुत सी महिलाएं कहती हैं, पहले तो मैं कितना भी खा लेती थी वजन नहीं बढ़ता था, अब थोड़ा खाती हूँ वजन बढ़ जाता है। आखिर उम्र के साथ ऐसा क्यों महसूस होता है?
1: उम्र के साथ बदलती जरूरतें, जो हमारी फीमेल से समय हमें सुनिए वो जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आपकी ही बातें हो रही हैं इसमें। आपने अपनी माँ या किसी बड़ी बहन को ये कहते जरूर सुना होगा, हमारे जमाने में तो इतना खाती थी फिर भी मोटी नहीं होती थी। ऐसा महसूस होना कई महिलाओं में देखा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ हमारी एक्टिविटी कम हो सकती है, शरीर की एनर्जी नीड्स बदल सकती हैं और हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। तो जो रूटीन 20 इयर्स की उम्र में ठीक था, जरूरी नहीं कि वो 40 या 50 में वही रहे। इसलिए उम्र के दोष

0: समय बाद जब वजन कम नहीं होता तो वह खुद को दोष देने लगती हैं। अपने शरीर को थोड़ा वक्त दीजिए। सोशल मीडिया पर किसी और पोस्टम बॉडी देखकर अपनी तुलना मत कीजिए। हर महिला का शरीर अलग है, हर प्रेगनेंसी अलग है और हर रिकवरी में भी अलग है। इस समय जरूरत है बैलेंस न्यूट्रिशन, पर्याप्त आराम और अपनी स्थिति के अनुसार फिजिकल एक्टिविटी की। और अगर आप इमोशनल है तो डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद की बात से हमें एक और सवाल मिलता है, क्या घर की महिला सच में खुद की थाली पर ध्यान देती है?
1: और हमारी महिलाओं की ना एक बात बड़ी कहते हैं कि उनको ना शुरू से सिखाया जाता है कि आप सबका ख्याल रखो और जब आप सबका ख्याल रखेंगे तो सब आपसे खुश रहेंगे। और इसी चक्कर में वो क्या करती हैं, सबको खाना खिला देती हैं और सबसे लेट खुद खाना खाती हैं। सुबह सबसे पहले बच्चों का नाश्ता, फिर पति का लंच, फिर घर का काम और जब खुद खाने की बारी आती है तो खा लूंगी, अभी भूख नहीं है। फिर वो अभी कब दोपहर में बन जाता है पता ही नहीं चलता। कई महिलाएं पूरे घर का न्यूट्रिशन देखती हैं लेकिन अपनी प्लेट पर ध्यान नहीं देती। बच्चों को दूध चाहिए, पति को हेल्दी खाना चाहिए लेकिन खुद के लिए कभी बचा हुआ खाना, कभी जल्दी जल्दी खाना और कभी खाना स्किप कर देना। याद रखिए, अपने लिए खाना बनाना और समय पर खाना सेल्फिश होना नहीं होता है। अगर आप घर की जिम्मेदारी है लेकिन आप खुद भी एक इंसान है, आपका शरीर भी केयर डिजर्व करता है। अब बात करेंगे उस चीज की जिसे हम अक्सर बस पेट निकल आया कहकर हंसकर टाल देते हैं, लेकिन क्या पेट की बढ़ती चर्बी को इतना हल्के में लेना चाहिए?
0: मुझे तो लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना?
1: Exactly.
0: क्योंकि हमारा अगर मोटापे की शुरुआत की बात करूँ तो पेट से ही शुरू होता है। कभी कपड़े पहनते हुए आपने कहा है बस पेट थोड़ा बढ़ गया है, वहीं से असली शुरुआत होती है। अगर वहां पर आपने कंट्रोल कर लिया खुद पर तो ठीक है, अदरवाइज वो चर्बी और भी ज्यादा बढ़ती जाती। हम अक्सर इसे सिर्फ लुक्स का मामला समझते हैं लेकिन शरीर में खासकर कमर के आसपास बढ़ती अतिरिक्त चर्बी को सिर्फ सुंदरता के नजरिए से नहीं देखना चाहिए, ओवरऑल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सिर्फ वजन मशीन पर नंबर मत देखिए, अपनी वेस्ट एक्टिविटी, एनर्जी और ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर वजन लगातार बढ़ रहा है या आपको कोई दूसरी परेशानी भी महसूस हो रही है तो मेडिकल एडवाइस जरूर लें। लेकिन वजन की बात करते करते हम एक्सरसाइज को कैसे भूल सकते हैं? अब महिलाएं कहेंगी हमारे पास एक्सरसाइज का टाइम ही कहाँ है। तो देखिए, टाइम आपको खुद निकालना पड़ता है। टाइम कभी आपसे ये नहीं कहता है कि मैं 6 बज गया हूँ उठ जाओ एक्सरसाइज करो, वो खुद आपके लिए और आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा।
1: जिम नहीं तो क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि आप जिम जाकर ही फिट रह सकते हैं, आप घर पर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और एक्सरसाइज शब्द सुनते ही ना कई महिलाओं के दिमाग में जिम और भारी वर्कआउट आ जाता है और फिर मन कहता है मेरे पास तो इतना टाइम कहाँ है। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं है, दिन में पैदल चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, लगातार घंटों बैठे रहने से बचना चाहिए और अपनी कैपेसिटी के अनुसार एक्टिव रहना भी मूवमेंट का हिस्सा है। जरूरी है ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी उम्र और आपकी हेल्थ के हिसाब से हो। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन उसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाने की कोशिश कीजिए। और एक बात, एक्सरसाइज को सजा मत समझिए, आप अपने शरीर को पुश करने के लिए नहीं मजबूत बनाने के लिए मूव कर रही हैं। लेकिन अब आते हैं उन डाइट्स पर जो इंटरनेट पर देखकर हर महिलाएं सोचती हैं शायद यही मेरे लिए भी काम कर जाए, क्या हर वायरल डाइट हमारे लिए सही होती है? इसका जवाब हम सुनने वाले हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब आप भी जानने के लिए तैयार है ना? क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया तो हर कोई चलाता है ना और उस पर अच्छी अच्छी रील्स सबको देखनी पसंद होती है और कुछ भी हेल्दी डाइट आती है तो हमें लगता है हाँ यार ये तो मैं भी बनाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। लेकिन दोस्तों पता है, जरूरी नहीं है कि वो डाइट अगर उस पर काम करी तो वो हम पर भी काम करेगी। हर किसी की बॉडी अलग होती है एंड इसीलिए एवरीवन, जरूरी नहीं है कि जो मैं खाऊं वो मेरे आपके लिए भी अच्छा हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके वो ना शूट करे। तो आगे हम जानेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, फिर आपसे बात करते हैं।

0: क्या बात है जी, शानदार गाने बाद अर्जुनी नाम सभी के साथ कनेक्ट हो गई हैं। और जैसे कि खुशी ने बताया ही है कि इंटरनेट वाली डाइट, अक्सर इंटरनेट वाली डाइट हर किसी के लिए सूटेबल भी नहीं होती है, क्योंकि खुशी ने बता दिया है कि हर किसी की बॉडी अलग होती है और जरूरी नहीं है कि जो आप खा रहे हो दूसरे को भी वही सूट हो, दूसरा एक्सरसाइज वो कर रहा है तो वही के लिए भी बेनिफिट हो और आप भी वैसा ही एक्सरसाइज करने लग जाओ। इसीलिए कुछ चीजें हैं जो वायरल पे नहीं जाना चाहिए, आपको सोच समझ कर करना। आजकल फोन देखते ही डाइट की दुनिया सामने आ जाती है, कोई कहता है ये खाओ, कोई कहता है वो मत खाओ, कोई कहता है इतने घंटे खाना बंद करो। लेकिन जरा सोचिए, जिस महिला के लिए वो डाइट बनी है, क्या आपका शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है? हर महिला की उम्र, एक्टिविटी, लाइफस्टाइल और हेल्थ नीड अलग हो सकती है, इसीलिए किसी की डाइट देखकर उसे कॉपी करना हमेशा सही नहीं है। खासकर प्रेगनेंसी, ब्रेकफास्टिंग या किसी मेडिकल कंडीशन में बिना एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, हमेशा एक्सपर्ट से ही सलाह ले। देखी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा ना करे। वजन कम करना तो शॉर्टकट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है, ऐसी आदत बनाना जिसे आप लंबे समय तक निभा सके। लेकिन अब सवाल ये है, क्या वजन कम करने के लिए हम अपनी पसंद की सारी चीजें छोड़ पाएंगे? उसके बारे में सोचना और कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कभी कभी होता है कि आपकी जो बहुत अच्छी फेवरेट डिश होती है उसको हमें छोड़ना भी पड़ता है। अगर आप अपनी रूटीन को, अपने आप को हेल्दी से मतलब ठीक करना चाहते हो तो थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ता है,
1: कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है यार। हेल्दी रहने का मतलब जिंदगी से स्वाद निकाल देना नहीं है। अगर आपने तय कर लिया है कि आप कभी मिठाई नहीं खाऊंगी, कभी अपनी पसंद की चीज नहीं खाऊंगी, तो शायद कुछ दिन बाद वही चीजें और ज्यादा याद आएंगी। बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को बैलेंस करें, घर का खाना ज्यादा खाएं, प्रोटीन पर ध्यान दें, रोज की छोटी छोटी अनहेल्दी आदतों को पहचानें और अपनी पसंद की चीजों को समझदारी से लें। और सबसे जरूरी, एक दिन कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है तो ये मत सोचिए कि अब तो सब खराब हो गया। एक मील आपकी पूरी जर्नी तय नहीं कर सकता, अगला मील बेहतर हो सकता है। और अब बात उस चीज की है जिसे हम अक्सर वजन से भी ज्यादा गंभीरता से ले नहीं लेते, खुद को लेकर हमारी सोच।
0: ये तो बिल्कुल सही कहा, हमारी सोच पर डिपेंड होता है हर चीज। आईना आपका दुश्मन नहीं है। अक्सर हम जब भी आईने के आगे खड़े होते हैं ना, तो खुद से यही कहते हैं, यार मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, और अपने आईना को ही दुश्मन समझ लेते हैं और उसे देखना ही बंद करते हैं। फिर तो छोटे छोटे मिरर में ही देखकर अपना मेकअप कर लेते हैं ना। कभी आईने में देखकर खुद को कहा है मैं कितनी मोटी हो गई हूँ? अगर कहा है तो आज खुद से थोड़ा प्यार से बात करके देखिए। आपका शरीर सिर्फ आपकी बॉडी शेप नहीं है, इसी शरीर ने आपको कितने साल संभाला है, काम किया है, परिवार संभाला है, प्रेगनेंसी और डिलीवरी झेली है, बीमारियों से लड़ा है, थककर भी आपको आगे बढ़ा है। तो बदलाव करना है तो जरूर करिए, लेकिन खुद से नफरत करके नहीं। हेल्थ का मतलब सिर्फ पतला दिखना नहीं है, हेल्थ का मतलब होता है खुद को बेहतर महसूस कराना, एक्टिव रहना और अपने शरीर का ध्यान रखना। और अब सवाल ये है, अगर आज से शुरुआत करनी है तो क्या करें? क्या एक साथ 10 चीजें बदलनी होगी?
1: नहीं नहीं बाबा, 10 चीजें क्यों बदलोगी आप, एक ही बदलाव काफी है। आज से अपनी जिंदगी में 10 नियम मत बनाइए, बस एक चीज सुनिए, शायद सुबह का नाश्ता स्किप नहीं करना, शायद जो रोज थोड़ा सा चलना, शायद चाय बिस्किट की आदत कम करनी है। जब एक आदत दिख जाएगी तब दूसरी आदत जोड़िएगा, ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ा बदलाव अक्सर छोटी छोटी आदतों से ही बनता है। और अगर आपका वजन लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है या साथ में दूसरे सिम्टम्स भी हैं, तो खुद से डाइट एक्सपेरिमेंट करने की बजाय डॉक्टर से बात करना बेहतर है। लेकिन एक बात और एक चीज है जिसे महिलाएं अक्सर भूल जाती हैं, पानी। जी हाँ, वो बहुत जरूरी है। क्या आप सच में पूरे दिन पर्याप्त पानी पीती हैं?
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, अक्सर हम इसको ही भूल जाते हैं।
1: लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ।
0: मैं भी नहीं भूलती हूँ यार। मैं भी पी लेती हूँ पानी,
1: दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं।
0: हाँ, मैं देखती हूँ ये बोतल दोबारा भरने गई है, मैं भी फटाफट खाली करती हूँ, दोबारा भर के लेकर आती हूँ। तो मतलब पानी, देखिए एक टाइम के लिए आप खाना, जहाँ आपको 2 रोटी की भूख है, 1 रोटी खाइए, लेकिन पानी 2 बोतल पीजिए, क्योंकि पानी आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और फेस के लिए भी अच्छा होता है। अगर जितना पानी पियेंगे फेस पर ग्लो भी उतना ही ज्यादा आएगा। सुबह से शाम तक हम कितने काम कर लेते हैं लेकिन पानी पीना याद नहीं रहता। एक बार फोन देख लिया, बच्चे को स्कूल भेज दिया, काम में लग गए और पूरा दिन निकल गया, यही रहता है। अपने शरीर की बेसिक जरूरतों को इग्नोर करना हमारी आदत बन जाती है। पानी की जरूरत हर व्यक्ति में अलग हो सकती है और मौसम, एक्टिविटी और हेल्थ के हिसाब से भी बदलती है। इसीलिए अपने शरीर के सिग्नल्स पर ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन में फ्लूइड इनटेक को लेकर डॉक्टर ने कोई अलग सलाह दी है तो उसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूले, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन आज का असली सवाल पानी से भी बड़ा है। हम अपने शरीर के सिग्नल्स को सुनते कितनी बार हैं? क्योंकि शरीर बार बार संकेत देता है, बस हम अक्सर उन्हें कल देंगे कहकर टाल देते हैं और यही हमारे लिए गलत हैबिट बन जाता है।
1: शरीर की सुनिए, थकान है फिर भी काम, नींद आ रही है फिर भी मोबाइल, भूख लग रही है फिर भी पहले सबको खाना, स्ट्रेस है फिर भी चुप, और फिर एक दिन हम कहते हैं पता नहीं मेरा शरीर इतना बदल क्यों गया है। शरीर अचानक नहीं बदलता, हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर धीरे धीरे बड़ा बदलाव लाती हैं। इसलिए आज से अपने शरीर को सुनना शुरू कीजिए। अगर कोई परेशानी लगातार बनी हुई है उसे इग्नोर मत कीजिए, जरूरत पड़े तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने लिए समय निकालना लग्जरी नहीं है, लेकिन क्या हम सच में अपने लिए रोज थोड़ा समय निकाल सकते हैं?
0: बिल्कुल निकाल सकते हैं, अगर अपने हैबिट को खुद को चेंज करें तब।
1: खुद को इम्प्रूव करना है हमें तो हम हर चीज कर सकते हैं रीना।
0: बिल्कुल, और साथ ही साथ श्रोताओं आज का चैलेंज बहुत आसान है। अगर घर में किसी एक मील के समय सिर्फ अपनी खाने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल एक तरफ रखिए, जल्दी जल्दी मत खाइए, खाना को हमेशा चबाल कर खाना चाहिए, अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए मैं अपने शरीर को क्या दे रही हूँ। फिर रात को सोचिए आज मैंने अपने लिए क्या किया, शायद आपने थोड़ा वॉक किया हो, शायद समय पर खाना खाया हो, शायद पानी ज्यादा पिया हो, या शायद पहली बार खुद को आराम दिया हो। यही छोटी चीजें हमें अपने शरीर से जोड़ती हैं। और अब इस पूरे सफर का आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं, ऐसी बात जो मैं चाहती हूँ कि हर महिला अपने दिल में रखे और अपने आप से वादा करे। तो खुशी बताइए जरा।
1: तो एवरीवन, आप भी हमारे लिए जरूरी हैं और हमारी हेल्थ भी। आज हमने सिर्फ वजन की बात नहीं की, पता है आपको, हमने बात की है अपनी प्लेट की, अपनी नींद की, स्ट्रेस की, हार्मोन्स की, प्रेगनेंसी के बाद शरीर की, उम्र के साथ होने वाले बदलाव की, और सबसे जरूरी अपने लिए समय निकालने की। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो खुद को दोष मत दीजिए, पहले समझिए कि आपके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है, अपनी आदत को देखिए, छोटे बदलाव कीजिए और जरूरत हो तो डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लीजिए। क्योंकि बहनों, वजन आपका पूरा परिचय नहीं है, आप सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, एक पत्नी हैं, कामकाजी महिला हैं, और इन सबसे पहले आप खुद भी एक इंसान हैं जिसका ख्याल रखा जाना जरूरी है। तो आज घर जाते हुए खुद से एक वादा जरूर कीजिएगा, मैं सबका ख्याल रखूंगी, लेकिन खुद को भूल कर नहीं। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी, और अब हम लेते हैं आपसे जाने की अनुमति। सुनते रहिए ऐसे ही हमारा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखिए।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। फरमाइश शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। श्रोताओं, समय की बात करूं तो 3:16 हो चुके हैं और आपने क्या करना है, हमें कॉल करना है। नंबर है 9823789698 पर कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल मुरादाबाद के टेम्परेचर की बात करूं तो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज मुरादाबाद का। या और साथ ही साथ राधा अष्टमी, तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और फास्ट तो खुल ही गया होगा, है ना जी? मुझे पता है क्योंकि फास्ट 12 बजे तक ही रहता है। तो चलिए अपने फर्स्ट कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी मैम, कहाँ से बात करिए? नमस्ते।
1: नमस्ते मैम, यहीं मुरादाबाद लाइन कॉल से बात कर रहे हैं हम।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अनीता है
0: जी। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ, मैं हीर तेरी तू गाजरा मेरा।
0: ओके ओके, किसी का नाम लेना चाहेंगी आप?
1: नाम गाना अपने हस्बैंड को डेडिकेट करना चाहती
0: हूँ। चलिए ठीक है, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाती हूँ। ठीक है जी, जी ओके ओके जी, कोई बात नहीं मैम, हम तो है आपके कॉल अटेंड करने के लिए, गाना प्ले करने के लिए। बस आप कॉल करिए, नंबर है 9823789698 पर आपने कॉल करना है और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया था, तू मेरा हीर मैं तेरी रांझना। सच में कुछ गाने ना बहुत ही शानदार होते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये जो दोपहर वाला मौसम है और भी सुनहरा हो जाए, तो उसके लिए आप कॉल करिए और अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। आर्जेरीना आप सभी के साथ कनेक्ट है फरमाइशो में। और समय की बात करूं तो 3:22 हो चुके हैं। आइए अपने अगले कॉलर सेकंड कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन से गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या नाम है सर आपका?
1: मैम शिवा लोहट, MP विदिशा से आपका नियमित श्रोता बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आपको और आपकी पूरी टीम को और सभी सुनने वालों को और आपके घर परिवार को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: आपको भी जी,
1: राधा जी की कृपा जी,
0: राधा अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हम सब पे कृपा राधा जी की बनी रहे, पूरे भारत वर्ष पे, पूरे विश्व पे बनी रहे, ऐसी राधा जी से कामना है मैम।
0: जी जी जी जी, तो बताइए सर कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: मैम एक गाना रहेगा ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनोखे चुपके चुपके मूवी का मैम।
0: ओके, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मैम हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, अमल जी, विमल जी और तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा और स्पेशली आपको।
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए श्रोताओं, गाना एंजॉय करते हैं, बहुत ही शानदार वाला गाना है। और अभी कोई गाना सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कॉल करिए, नंबर है 9837896896।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: हेलो जी, गर्ड वाली आफ्टरनून है। आर्जेरिना के साथ आप कनेक्टेड शो तो फरमाइश शो में, और समय की बात करूँ तो 3:32 हो चुके हैं, और आपने बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। ये मेहंदी के बूटे हमको तुमसे प्यार है मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है। 2006 में ये मूवी रिलीज हुई थी, और साथ ही साथ गाने की बात करूँ तो अलका याग्निक और उदित नारायण जी के आवाज में बहुत ही शानदार वाला गाना एंजॉय किया है। और सर ने क्या गाना चूज किया भी है आज, क्योंकि राधा अष्टमी है और राधा अष्टमी पर इन्होंने ये वाला गाना चूज किया है, बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो मैम, आदाब।
0: जी आदाब, कैसे हैं आप?
1: खैरियत से है मैम।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैम मैं भोपाल से आरिफान नर्सरी बात कर रहा था।
0: जी बताइए, उधर का वेदर कैसा है?
1: मैम मौसम अभी धूप निकल रही है, कल हल्की बारिश हुई थी, बाकी आज सुबह से जो है धूप निकल रही है और गर्मी के आसार हैं।
0: ओके, क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं टेलर हूँ, सिलाई कर रहा था, आपका प्रोग्राम सुन रहा था और मैंने सोचा कि मैं भी लगा लूँ, कम से कम मेरी बात हो जाए आपसे।
0: ओके तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: मैम मैं फिल्म का नाम है अनमोल मोती और गाने वो ने एक गाने चमन।
0: ठीक है सर, किसी का नाम लेना चाहिए?
1: महेंद्र कपूर जी की आवाज में है ये सॉन्ग। और हमारे मित्र हैं दया लोधी जी हैं, कैलाश राजपूत जी हैं और तारून और अंसारी जी हैं।
0: ठीक है जी, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: थैंक यू।
0: ओके जी, ओके, वेलकम। चलिए गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला है, ओल्ड गाना है, और ओल्ड गाने हमेशा फैंटास्टिक होते हैं।

0: क्या बात है जी। आशा भोसले जी की आवाज में, महेंद्र कपूर जी की आवाज में बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और ओल्ड इज गोल्ड यानी कि जो सदाबहार वाले गाने होते हैं ना, हमेशा बहुत ही शानदार होते हैं। आप इन गानों को जितनी बार भी सुनोगे ना, उतना ही आपको कम लगेगा। बार बार आपको मन करता ही रहेगा, भैया ये गाना हम दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। फिलहाल आप सभी के साथ आपकी अपनी आरजे रीना है, और समय की बात करूँ तो 3 बजकर यानी कि 40 मिनट हो चुके हैं। तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं। हेलो,
1: हाय दी,
0: हाय,
1: कैसे हो मैम?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे हो,
1: मैं अच्छी हूँ।
0: क्या नाम है आपका
1: मैं रावी बात कर रही हूँ। मैं
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं,
1: गोदी से
0: गोदी से।
1: जी। मैं
0: अच्छा जी, तो बताइए कौन से गाना सुनना चाहती हैं।
1: गाना सुनना चाहती हूँ, तेरी मेरी गला होगी मस्त।
0: ओके, मशहूर हो गई, वैसे करती क्या हो आप।
1: कुछ नहीं मैम, घर पे रहते हैं और सिस्टर के साथ काम कराते हैं थोड़ा बहुत। घर
0: अच्छा, घर का काम कराती हो आप, छोटी बहन हो या बड़ी, तभी
1: छोटी
0: तो थोड़ा बहुत काम कराती हो आप।
1: हेल्प करा लेती हूँ तरस करके।
0: जब वो उसकी शादी हो जाएगी तब आपको पता लगेगा।
1: मैम रिश्ता हो गया, सिस्टर का इतनी टेंशन होती है बहुत ज्यादा, कैसे करूंगी
0: फिर अकेले ही करना पड़ेगा आपको
1: मैं। हाँ जी जी
0: जी। तो बताओ, अच्छा यही गाना सुनना है, किसी का नाम लेना चाहोगी आप।
1: कुछ दोस्त है मेरे, जैसे कि दरक्षा फातिमा, फरोज फातिमा, रुकैया फातिमा, लायला काजी, ये सभी सुनना चाहते हैं। ठीक
0: चलिए जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है,
1: है, बाय बाय।
0: बाय। तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार वाला इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, और साथ ही साथ आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896। ओए, सब ठीक ठाक, चिट्ठियां लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
5: हेलो जी, गर्ड वाली आफ्टरनून है आप सभी के साथ। और समय की बात करूं तो 3:45 हो चुका है। रांचना वाला अपने गाना एंजॉय किया है, जो भी नौटियाल जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना। और ऐसे ऐसे गाने ना सच में सुनकर बहुत ही आनंद होता है, यानी कि आनंद की अनुभूति होती है। और आप वैसे भी ट्रैफिक में हैं तो बस कुछ नहीं करना है, आपने वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करना है और फिर आराम से आप गाड़ी चलाइए। चाहे आप अकेले भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना, तभी भी आपको अकेला फील नहीं होएगा, क्योंकि कुछ गाने हमें ज़रूरी नहीं है कि साथ में कोई और हो, आप अकेले भी इंजॉय कर सकते हो। और साथ में हो तो खैर बात ही

0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हाँ दीदी, हमें दोस्ताना पिक्चर का गाना सुनना है, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्त
0: ओके, किसका नाम लेना चाहेंगे?
1: है मेरे दीदी, कुछ गजराज
0: जी
1: लोधी, नरेश प्रजापति, सुनील साहू, मांगीलाल चंदेल, भगवान सिंह परिहार, ये हमारे दोस्त दीदी, इनको डेडिकेट करना चाहता हूँ और
0: चलिए
1: सभी
0: सर,
1: दोस्तों को जो सुन रहे जिसको।
0: चलिए आपके दोस्तों के साथ और सभी सुनने वालों के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: ठीक है दीदी, धन्यवाद।
0: ओके ओके जी, ओके। तो चलिए, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, कॉल करते रहिए। लेकिन आपने ये जरूर याद रखना है कि अगर आपने इस वीक कॉल किया है तो आपने इस वीक अब अभी कॉल नहीं कर सकते हैं, अगले वीक कॉल करना है आपने, ठीक है? तो ये गाना सुनते हैं दोस्ताना मूवी से, यानी कि दोस्ताना गाना है ये, बहुत ही खूबसूरत

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है अर्जेंटीना के साथ और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, किशोर कुमार जी की आवाज में, साथ ही साथ मोहम्मद रफी जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना। और ये गाना ना वाकई में बहुत शानदार है। दोस्ताना मूवी से ये गाना आपने एंजॉय किया है। और चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। फिलहाल आप फरमाइश शो में कनेक्ट है और समय की बात करूं तो 4:52 हो चुके। ओहो, देखा, सेकंड सेकंड का हिसाब होता है भाई। 3:53 हो चुके हैं। जैसे 52 बोलो, 1 सेकंड का मतलब इंतजार करना पड़ता है और सेकंड सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती, बहुत अनमोल होता है। तो ये पता है, ये मिनट्स का पता चलता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, और पता चलता है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में चाहे आपके 2 क्वेश्चन रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 1 रहे, आपको वो कंप्लीट करना होता है। तब जाकर हमें एक्चुअल में पता चलता है टाइम का अहमियत। या फिर आपको कहीं जाना हो और आपको पता है कि हम मेरी ट्रेन की टाइमिंग ये है और आप घर लेट हो जाते हो तो ट्रेन निकल जाती है। तो समय का हमें हमेशा समय की इज्जत करनी चाहिए और समय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट जब आपको पता है कि मेरी बस और ट्रेन 6:30 की है तो आप 6 बजे निकल जाओ, तभी आप समय पर पहुंच पाओगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत ट्रैफिक है, आप कहीं भी चले जाओ। एग्जाम्स में क्यों बच्चों के रह जाते हैं, एग्जाम्स में सही समय पर नहीं पहुंच पाते, वो सिर्फ कारण ये है, एक तो भीड़, ट्रैफिक और एक हम लेट निकलते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप समय पर पहुंचे, क्योंकि समय बहुत कीमती है। समय किसी का इंतजार नहीं करना करता है, बल्कि हमें उसके साथ आगे बढ़ना होता है। चलिए फिलहाल अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: मैडम, मैं गांव लिहे दिगर तालुका जामनेर जिल्ला जलगांव महाराष्ट्र से दिनेश सोहन बात कर रहा हूँ मैडम।
0: ओके जी, महाराष्ट्र का वेदर कैसा है दिनेश जी?
1: अच्छा है मैडम, अभी थोड़ा धूप निकल रही है, कभी बीच में बारिश हो रही थी, कभी धूप पड़ता है, ऐसा मौसम हो रहा है मैडम।
0: अच्छी बात है ना, बारिश आ रही थी तो।
1: हाँ मैडम।
0: ओके जी, क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, मोटर वेल्डिंग का।
0: ओके ओके, तो बताइए जी कौन सा गाना सुनेंगे?
1: गाना है मैडम सूर्या फिल्म का गाना है, आ भगवान के घर आ, ऐसा गाने के बोले। तो ये गाना सुनना है मैडम
0: जी। किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: मैडम आपके लिए और खुशी मैडम के लिए और उमेश चौहान, आदित्य चौहान, मनीषा चौहान और जितने भी रेडियो FM मुरादाबाद सुन रहे सबके लिए मैडम।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: नमस्कार मैडम
0: जी। नमस्कार। चलिए श्रोताओं, आ भगवान के घर सूर्या फिल्म से आपको ये गाना सुनवाते हैं। मोहम्मद अजीज जी की आवाज में ये गाना है, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए। लौट कर आते हैं आप सभी के लिए।

0: किसने खोला ये मंदिर? मैं पूछता हूँ किसने खोला है?
1: मैंने खोला
2: जाती है मगर
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
4: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386
5: सिर दर्द लकवा ये रीढ़ की तकलीफ क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद

0: गुड वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ फरमाइश शो में आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूं तो 4:14 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है एक था टाइगर मूवी से। माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह। कुछ गाने सच में वाकई में बहुत ही शानदार है और कैटरीना सलमान खान इस मूवी के अंदर भाई एक था टाइगर मूवी के अंदर इस दोनों के ऊपर फरमाया गया था ये मूवी। श्रेया घोषाल जी की आवाज में आपने गाना एंजॉय किया है और साथ ही साथ अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, लगता है कि ये सो गई है भैया, इनको नींद आ गई है। कोई बात नहीं, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत गाने की हमें फरमाइश की है तो ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। जुबिन नौटियाल जी की आवाज में ये गाना है बहुत ही खूबसूरत, सो इस गाने को सुनते हैं उसके बाद कनेक्ट होती है आप सभी के साथ।
1: वेलकम वेलकम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड जुबिन नौटियाल।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती हाँ। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: आपके बच्चे दाल चावल खा के बड़े हुए होंगे।
1: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
1: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
2: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
3: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
4: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
3: पर पापा।
4: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
3: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद। Thank you.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

वाली इवनिंग है अर्जेंटीना के साथ, फरमाइश शो में आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूं तो 3:27 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। और साथ ही साथ जिन्होंने अगला जो गाना है रिक्वेस्ट की है, फिलहाल तो ट्रैफिक में है, ट्रैवलिंग कर रही हैं मैडम जी, तो कह रही है कि भैया आज मैं मैम मतलब गाड़ी चला रही हूँ और ऑन द वे हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा क्योंकि मैं अभी राइट नाउ हाईवे पर अभी मतलब हूँ, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो दिल्ली से वो निकल रही हैं मुरादाबाद आने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ गाना प्ले कर दीजिएगा और बहुत ही शानदार गाने की रिक्वेस्ट की है। सो इस गाने को हम सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप भी कॉल करते रहिए, नंबर है 9823789689 पर।

वाली इवनिंग है आज। रीना के साथ कनेक्टेड शो होता हो, फरमाइश शो आप सभी के साथ तो है। और फरमाइश शो में आपने क्या करना होता है? ठीक, कुछ नहीं करना होता है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपने हमारा नंबर है 9823789689 पर कॉल करना है और आप अपने फेवरेट वाले गाने एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल समय की बात करूँ तो 4:34 हो चुके हैं और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र गिल, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अच्छा, जम्मू के अंदर पोस्टिंग है, तो बताइए कौन से गाना सुनना चाहते हैं आप? नहीं, ऐसे अलाउ नहीं है, ऐसे अलाउ नहीं है। दर्द भरा गीत कोई और गाना बताओ आप, कोई और गाना बताओ। सर ये हमारे प्लेलिस्ट में नहीं है ये वाला गाना। आप कोई बॉलीवुड के गाने बताओ, जैसे भी आपको पसंद हो, लेकिन सैड थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम का मौसम, मतलब दोपहर का मौसम है और जो जिसका दिल टूटा हुआ हो,

0: जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है, दो घुट पिला दे साथिया। यानी कि इस गाने की अगर मैं बात करूँ तो इस गाने को गाया है नरेंद्र चंचल जी ने, और लिरिक्स की बात करूँ तो बप्पी लहरी जी ने इस गाने में लिरिक्स दी है। और साथ ही साथ गुड वाली इवनिंग है जी। समय की बात करूँ तो 4:43 हो चुकी है, फरमाइश शो में आप आज जरीना के साथ कनेक्ट है। और आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। हेलो हेलो
1: जी मैम, बोलिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7066002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 के लिए सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 के लिए सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस।
4: सुर में गाना सीखिए,
1: 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा, लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070।

0: और आरजे रीना के साथ अब कनेक्ट है और अब लेने वाली आरजे रीना यहाँ से जाने की इजाजत। फिलहाल समय की बात करूँ तो 4:51 हो चुके हैं और अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो फरमाइश
0: जी सर, नमस्कार
1: जी। नमस्कार मैम, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम मिलकपुर चौरासा बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोल रहा हूँ मैम।
0: जी राजा हुसैन जी, बताइए कैसे हैं आपकी फैमिली में सब?
1: सब बढ़िया हैं, आज है मुरादाबाद में सभी लोग कैसे हैं?
0: एकदम फर्स्ट क्लास।
1: ठीक है, आप टाइम ज्यादा नहीं है तो गाने बोल बता दूं मैं?
0: जी बिल्कुल टाइम है हमारे पास।
1: गाने के
0: बताइए।
1: गाने के बोल रहेंगे, हंसी हो जवा हो नशा हो तुम।
0: ओके, किसके लिए आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
1: कछुआ कांट है सितारा हनी खान।
0: ओके
1: ठीक है,
0: ठीक है जी, आपको हम ये गाना सुनवाते हैं। बाय। चलिए गाना सुनवाते हैं कुमार।

0: हर शहर गली और घर।
1: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है, फरमाइश उमिया पाजोरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओ। लेकिन अब मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। जाते जाते एक अपनी पसंद का आपको गाना सुनवाती हूँ, यानी कि हरियाणवी ट्रैक। और हम मिलने वाले हैं आप सभी को मंडे इवनिंग मस्ती शो में, मिलेंगे शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और यूं ही मुस्कुराइए।

0: गई है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हुए हैं।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं ज्यादा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटका उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों की को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की गई हैं। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवोल्ट की एक यूनिट से 25 किलोवोल्ट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भी 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फोरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया यह वायुसेना का नवा विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। पिछले महीने नेपाल में भीषण बाढ़ में जान माल का व्यापक नुकसान हुआ था। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा कि भारत और नेपाल के पास मौजूदा मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में बदलते वैश्विक माहौल में भारत नेपाल संबंधों पर नए सिरे से विचार विषय पर सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। इससे पहले टेकबॉल स्पर्धा में भारत की क्विंसी डिसोजा कल कांस्य पदक मुकाबले खेलेंगी। महिला सिंगल सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की सुमाया ने क्विंसी डिसोजा को 2-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: 就该。
1: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, एक खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बिठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
1: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल।
1: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
2: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
1: जी,
2: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
1: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
1: जिसका
3: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
1: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
3: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
1: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
3: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
1: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
3: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
1: करेक्ट करेक्ट।
3: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
1: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
3: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
1: बहुत जरूरी है।
3: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी पड़ती है, और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
1: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
3: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
1: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
3: ये टॉपिक इतना डीप में कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
1: आई थिंक
3: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
1: क्या बात है।
3: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
1: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीछे,
3: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
1: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना।
3: बिल्कुल।
1: जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
3: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके है ना, तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
1: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है,
3: कहीं
1: ना कहीं में चल रही है,
3: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
2: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
3: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
1: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
3: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
1: ओके,
3: ठीक है, जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
1: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
3: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
1: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर,
3: PIL,
1: PIL का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
3: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
1: लिटिगेशन के बारे में बात।
3: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
1: ठीक है,
3: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
1: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
3: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
1: करेक्ट,
3: उसको बैठ के
1: समझौता किया जाए,
3: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
1: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
3: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाए।
1: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
2: जी। हाँ हाँ, बिल्कुल।
1: यस, तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
3: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
1: हाँ ठीक है,
3: सुनी होगी ना,
1: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
3: तो PIL क्या होता है, एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
1: करेक्ट
3: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
1: राइट,
3: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
1: ठीक है,
3: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की है वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
1: ओके,
3: ठीक है,
1: अच्छा,
3: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होती है, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
1: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
3: बिल्कुल,
1: तो पब्लिक की हित की बात,
3: पब्लिक की बात होनी चाहिए।
1: करेक्ट,
3: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
1: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
3: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
1: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
3: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी आप
1: पब्लिक के लिए,
3: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
1: राइट,
3: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
1: बेसिकली मॉडल का पॉइंट कि कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
3: है, बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके।
1: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर पहला क्वेश्चन। इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बेसिकली।
3: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है होती है और पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही
1: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
3: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम
1: आवाज उठाना और
3: उसको लेके ही हम PIL दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और दो एप्लीकेशन।
2: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
3: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
1: ठीक है,
3: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप PIL दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशंस हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 FM पर। सर अच्छा ये बताइए, PIL और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
3: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं,
1: ठीक है,
3: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
1: ठीक है,
3: लेकिन PIL सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता PIL नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
2: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
3: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है उसके अंगेश आप PIL दाखिल कर सकते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ PIL की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
3: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो PIL की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
1: करेक्ट, अरावली। हाँ,
3: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे या लैंड माफिया थे वो खनन वहाँ पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ PIL डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
1: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ या नहीं?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत लेती हूँ। अच्छा सर, अभी हम PIL के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे होंगे ये है क्या, व्हाट इज दिस PIL, इसके थोड़ा सा इसका एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
3: देखिए PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
1: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से। ध्यान रखना,
3: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIL की फुल फॉर्म।
1: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
3: लिटिगेशन
1: यार, पब्लिक सीखने को मिली है।
3: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
1: सर,
3: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
1: ओके
3: ठीक है।
1: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं। और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था। और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए। हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आपको गूगल नहीं करना
2: चाहिए, भी गूगल करके निकाल लेंगे। तो
1: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ। जितना दिमाग तू चलाती इतना हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
2: हाँ तो हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
3: यस बिल्कुल कराई जा सकती है। अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
1: हाँ जी हाँ जी,
3: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो, तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
2: क्या बात
1: okay.
2: है।
1: so, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए जरा।
3: देखिए डिजिटल जब से युग आया है, डिजिटल ट्रेंड आया है, तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे हैं ना गूगल पे, तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
1: एब्सोल्युटली 100%
3: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है। और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को, चैट भी करें, तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है। तो इसको लेके भी कई PIL जो है दाखिल करी थी और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शंस दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
1: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
3: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता
1: से। तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
3: भाई ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस होने, तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
1: करेक्ट करेक्ट वही ना,
3: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
1: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
3: हाँ
1: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
3: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
1: याचिका
3: रहती है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
2: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
3: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है। तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
1: ऑल राइट सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया. और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में. एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि ये बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है. सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे. एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना. और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
3: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है, जी जी सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
1: भी अपने ऐड कीजिए,
3: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM.
1: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला. और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
3: अच्छा,
1: के लोग हैं.
3: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं, जी सर, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है.
1: हम अपने समुदाय की बात करते हैं
3: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं.
1: गॉट इट सर. और रेडियो बेसिकली है पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
2: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे
1: लेकिन
2: में पता भी
1: मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
2: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
1: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सोई बिल्कुल मत घुमाइए. नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी.
2: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
1: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
2: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं
1: वो मुझे नहीं पता. फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
2: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं. हम श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर. अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
1: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धिविहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

आप सुन रहे हैं अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बचाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना।

0: और आज हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं। इनफैक्ट आपके साथ हम ढेर सारी बातें तो करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बात करने वाले हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं। हर बच्चे को पढ़ने, खेलने, सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण बच्चों को अधिकारों से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सो इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी। तो हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे, बस आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहिए। मोस्ट वेलकम है सर, आप कैसे हैं? आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
1: देखिए, मैं प्रोफेशनल एज एन एडवोकेट वर्किंग करता हूं और मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूं।
0: हाँ जी।
1: और हम लोग कहीं भी अगर कोई अन्याय करता है या कोई भी हमें गलत बात लिखती है तो उसके लिए हम लोग आवाज उठाते हैं।
0: लेकिन सर आपका नाम बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: मेरा नाम अनिरुद्ध अरोड़ा एडवोकेट है।
0: तो सर मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी, बच्चों के अधिकार आखिरकार है क्या?
1: देखिए, जैसे समाज में बच्चे भी एक समाज का ही हिस्सा है, तो हमारे सरकार ने उनके लिए भी कुछ राइट्स बनाए हुए हैं। खास तो जो बच्चों के अधिकार है वो हर बच्चे को जन्म से वो अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, सुरक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, शोषण से बचाव का अधिकार है और अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करने का अधिकार है। ठीक है, भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून भी बनाए गए हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: और आजकल कई एनजीओ भी आप देख सकते हैं, वो भी कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए कई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में।
0: बिल्कुल।
1: तो हमें राइट्स बच्चों के पता होना सबको जरूरी है।
0: बिल्कुल। सो सर अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों के सुरक्षा के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं?
1: देखिए, कानून बच्चों के लिए तो कई बने हुए हैं। जैसे अगर हम लेबर की बात करते हैं, कई फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा कि बच्चों से बाल श्रम कराया जाता है, तो लेबर डिपार्टमेंट उसका संज्ञान लेता है, उस पर एक्शन लेता है वो। ठीक है,
0: बिल्कुल सर।
1: और कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि बच्चे कहीं अगर पढ़ने जाते हैं या कहीं किसी जो है स्कूल में जा रहे हैं या कहीं पे कोचिंग जा रहे हैं, तो उनके साथ कई ऐसी घटनाएं भी आती हैं जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की भी घटनाएं हमने देखी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उसमें भी सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को भी अवेयर रहना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होना चाहिए। और कानून तो है ही है अपनी जगह।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो
0: सर
1: उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और सबसे मेन बात तो सर इसमें यही है कि पेरेंट्स को बहुत इसमें ध्यान रखना होता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल तो सर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि आखिरकार बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार क्या है?
1: देखिए, शिक्षा का अधिकार हमारा राइट टू एजुकेशन, हमारा फंडामेंटल राइट भी है ये। और ये प्रत्येक बच्चे को जन्म के साथ जो शिक्षा का अधिकार मिल जाता है वो 14 साल तक के लिए उसको होता है। सरकार भी हमारी काफी इसको प्रमोट कर रही है शिक्षा को लेके, क्योंकि अगर हर बच्चा शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पे वो अपने साथ हुए अन्याय के लिए बता भी सकता है और खड़ा भी हो सकता है। और जो है सबसे बड़ी चीज है, अगर वो सजग होगा तो उसके साथ कोई ऐसी घटना भी नहीं होगी, अगर उसे नॉलेज होगी पूरी।
0: तो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं, आपको पता है जो गवर्नमेंट स्कूल में, उनको तो फ्री ऑफ कोर्स हर चीजें मिलती है।
1: ठीक है।
0: और जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि आपको बुक्स भी हमारे स्कूल से ही खरीदनी है, यूनिफॉर्म आप लेना है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से पेरेंट्स होते हैं कि सर इतनी चीजें अवेलेबल नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल ठीक बात है रीना जी आपकी। देखिए, मैंने भी कई काफी सोचता हूं मैं कि शिक्षा हमारी सरकार कहां, जहां एक तरफ शिक्षा को बढ़ावा दे रही है, वहीं कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा को एक बिजनेस बना लिया है जो गलत है। तो सोच उनकी थोड़ा सा मैं यही बोलूंगा कि हर चीज में कमर्शियल नहीं देखना चाहिए। एट आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कराएं। ये नहीं होना चाहिए कि आप शिक्षा के नाम पे बुक्स भी यहाँ से लीजिए, ड्रेसेस भी यहाँ से लीजिए। कमर्शियल मैं मानता हूँ, चलिए रेवेन्यू हर चीज में, स्टाफ को सैलरी देनी रहती है, एक्सपेंसेस होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन इतना कमर्शियल नहीं होना चाहिए कि कम से कम जो पेरेंट्स हैं जो इस एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर सकते उनको कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स फील हो कि हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: और सरकार को भी हमारे कुछ स्टेप लेना चाहिए कि एक मापदंड ऐसे होने चाहिए, एक फीस, एक रिस्ट्रिक्शन बाउंड्री लगानी चाहिए कि भी इससे ज्यादा कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता। और बुक्स का भी मैं देखता हूँ हर सिलेबस में, हर ईयर जो सिलेबस चेंज हो जाता है। हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जैसे बुक्स होती थी हम पास आउट होते तो पुरानी बुक से भी हम लोग पढ़ लेते थे।
0: अब तो ये है कि हम यूज ही नहीं कर सकते उस बुक को।
1: अब बुक्स का हर बार सिलेबस चेंज कर देते हैं, हर बार तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे उस चीज को।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो ऐसा भी कुछ सरकार को होना चाहिए कि 5 साल तक के लिए अगर कोई सिलेबस वो लगा रहे हैं तो 5 साल तक उसे चेंज ना करें वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसा कुछ उनको एक
0: नहीं, ये जो पहले जैसे चलता था कि एक ही बुक अवेलेबल होती थी 10th तक, तो मतलब सेम होती थी सर।
1: बिल्कुल,
0: तो बुक्स आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते
1: सीनियर से, जैसे कोई सीनियर पास आउट होता था उनकी बुक से हम लोग भी पढ़ लेते थे, वही हमें भी उसी,
0: और कुछ समझ नहीं आता तो उनसे भी पूछ लेते थे।
1: बिल्कुल, गाइडेंस मिल जाती थी।
0: अब तो ये है कि हम बच्चे के अगर बुक पढ़ रहे हैं, अगर वो मुझसे कुछ पूछेगा तो पहले तो मैं उसके उस चीज को पढ़ूंगी,
1: हर साल समझूंगी। तो एटलीस्ट प्रोविजन गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि 5 साल तक कम से कम बुक्स में कोई सिलेबस ऐसा चेंज ना हो कि
0: बिल्कुल, वो बिल्कुल कंफ्यूज
1: हो और जो है नई बुक्स खरीदनी पड़ जाए।
0: लेकिन पढ़ाई के साथ साथ देखिए सर, अभी अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई ना करके अभी काम में लग जाते हैं, मजदूरी करने लग जाते हैं, तो क्या सर मुझे लगता है कानूनी अपराध है, तो इसके लिए ये क्या करना चाहिए?
1: देखिए, कानूनी अपराध कहीं ना कहीं हम लोग अब खुद ही आगे बढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी फैमिलीज में बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, और खास तौर पे कुछ कम्युनिटीज में मैंने देखा है कि वो लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखते हैं, अर्निंग को प्राइमरी रखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जन्म के साथ ही जैसे बच्चे ने होश संभाला, चलना फिरना शुरू करा था, किसी चीज की उसके अंदर स्किल्स आई तो उसे काम पे लगा देते हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: जैसे किसी उसे फैक्ट्री में लगा दिया या कोई ऐसा लेबर का काम उसको कराने लग गए, तो बच्चे का क्या होता है जब वो अर्निंग करने लग जाता है ना, तो उसके अंदर पढ़ने की इच्छा धीरे धीरे
0: खत्म हो जाती है।
1: वो सोचता है भी मेरा तो यही, उसको सिखाया यही जाता है कि यही लाइफ है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: है ना, तो जब उसका बचपन ही आपने मार दिया उसको, तो वो बेचारा वो क्या करेगा वो बड़ा होकर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है, हम लोगों को पहले बच्चे को बचपन देना चाहिए, है ना।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: जब वो बचपन जिएगा सही से, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, तो ऑब्वियस है वो आगे चल
0: आगे भी बढ़ेगा,
1: बिजनेसमैन भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है, एडवोकेट भी बन सकता है, IAS PCS भी बन सकता है।
0: सर, तो आगे मेरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये बच्चों के साथ अगर जबरदस्ती करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, तो उनके लिए कोई हेल्पलाइन, कोई कानूनी नियम कुछ?
1: बिल्कुल, हेल्पलाइन भी है और हमारे कुछ एक लॉज भी ऐसे गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, अगर बच्चों के साथ कोई भी जबरदस्ती काम करवाता है या कोई भी ऐसी बात होती है, तो आप सबसे पहले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जो नजदीकी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सूचना दे सकते हैं। कई एक NGO से आप उनको भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, NGO भी आज की डेट में कई NGO जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है वो 1098 है। मैं अपने सभी कम्युनिटी रेडियो के श्रोताओं से बोलूंगा कि 1098 ये नंबर आपको इमरजेंसी में जरूर याद रखना है, अगर किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अप्रिय घटना या कोई भी हैरेसमेंट होता है तो तुरंत इस नंबर पे आप कॉल मिलाएं। 1098
0: जी, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 1098। और चलिए हम यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: तो श्रोताओ, म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से कनेक्ट हो गए आप सभी के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि बच्चों के साथ अगर कोई भी ऐसी धोखाधड़ी होती है या फिर छोटे बच्चे हैं जिनको आप काम करवाते हैं और जो बच्चे काम करे पढ़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, किसका हेल्प ले सकते हैं। तो सर हम आगे बढ़ते हैं और आपसे यही जानना चाहेंगे कि बच्चों की सुरक्षा आखिरकार क्यों जरूरी है।
1: देखिए, बच्चे समाज का भविष्य, अगर उन्हें सुरक्षित माहौल मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे।
0: बिल्कुल सर।
1: क्योंकि जो जैसे आपने देखा होगा, एक पौधा होता है, उसको अगर सही से आप खाद पानी दोगे तभी वो अच्छा बड़े होकर एक वृक्ष बनता है और फल देता है। तो सेम हमारे बच्चों के साथ भी, अगर हमें एक समाज के लिए, अपने देश के लिए एक अच्छा नागरिक चाहिए तो निश्चित तौर पे हमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना पड़ेगा, उन्हें अच्छा माहौल देना पड़ेगा।
0: और सर हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि ये कहा जाता है कि माता पिता ही बच्चे के लिए पहले गुरु होते हैं, तो सर माता पिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति?
1: देखिए, माता पिता का विशेष रोल होता है बच्चे के जो है भरण पोषण पे। सबसे बड़ी चीज तो ये कि वो गुरु, पहले गुरु वही होते हैं और बच्चे को प्यार, शिक्षा, अच्छा माहौल, सुरक्षा दें, उसका सही से विकास हो, तो यही सारी जिम्मेदारियां होती है। और खास तौर पे छोटे बच्चों के साथ तो बहुत ध्यान रखने वाली चीज है कि माता पिता को हमेशा वॉच करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे जा रहा है, किसके घर जा रहा है। कई बार हमने ऐसे केसेस भी हमारे पास में आए हैं कि जो बहुत ही नोन होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, उन्होंने भी सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों का किया होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और बच्चों में मैं दोनों की बात करता हूँ, मेल और फीमेल दोनों की। तो ऐसा नहीं है कि मेल्स का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केसेस नहीं आए, वो केसेस हमारे पास आते रहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बच्चों का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, उनको खास तौर पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है,
0: करेक्ट
1: पता होना चाहिए उनको। और बच्चों को ये शिक्षा घर के साथ साथ स्कूल्स में भी, जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं,

0: जहाँ बच्चे प्ले स्कूल्स में जाते हैं, क्रीच में जाता है, तो वहां पे भी ये शिक्षा उनको जरूर दिलवानी चाहिए बच्चों को, कि
1: बिल्कुल
0: उनको पता होना चाहिए कि किसकी इंटेंशन गलत है, कौन हमें कोई लालच दे के बुला रहा है, या जो है इंटेंशन उसकी, बच्चे क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती
1: बच्चे
0: है,
1: ये कहते हैं भगवान के रूप होते
0: भगवान का
1: सर।
0: रूप होते हैं, कोमल होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, तो हमें जो प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों को स्कूल में दिलवानी चाहिए एडमिशन
1: बिल्कुल
0: या
1: बिल्कुल सर।
0: ग्रोथ के टाइम।
1: और सर मुझे लगता है कि कई बार बच्चे जब अपनी बात रखते हैं ना, तो कभी कभी ना हम उनको दबा देते हैं, तो क्या बच्चों को अपनी राय रखने का अधिकार है?
0: बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर बच्चा कोई बात आपसे क्वेश्चन कर रहा है या किसी चीज को पूछ रहा है आपसे, या उसके मन में कोई जिज्ञासा है, अगर आप उसको डांट के डपट के उसे चुप करा दोगे तो उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पे पड़ेगा, है ना। और जब व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है तो उसका बड़े होके बच्चे का जो एक समाज का जो हिस्सा बनता है बड़े होके, कहीं जॉब में जाता है, कहीं बिजनेस में जाता है, तो उसका व्यक्तित्व वो निखर नहीं पाता है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: सर।
0: निश्चित तौर पे ये कि अगर बच्चा कोई प्रश्न पूछ रहा है या जिज्ञासा है उसके अंदर, तो आपको पोलाइट वे में उसकी बात को समझना चाहिए। हो सकता है वो इतनी लॉजिकल बात पूछ रहा हो कि आप उसको समझ पाए।
1: करेक्ट
0: कई बार
1: करेक्ट
0: हमें बच्चों की बातें, बचपन की बात, हम लोग उसे मजाक में उड़ा
1: मजाक
0: देते
1: में
0: हैं,
1: उड़ाते
0: लेकिन
1: हैं।
0: ऐसा नहीं होना चाहिए, हर बात मजाक की नहीं, कुछ बात गंभीर भी हो सकती है। बच्चा अगर
1: करेक्ट
0: आपसे कोई
1: करेक्ट
0: बात कह रहा है तो उसकी बात को सहजता से सुनते हुए उसको समझें और उसका निदान करें।
1: बिल्कुल जी। ये तो सर आपने बहुत सही बात कही कि बच्चों की बातें हर सिचुएशन में हमें सुननी चाहिए उनकी
0: बिल्कुल
1: बातें, कि क्योंकि कुछ नहीं पता उसके साथ बाहर क्या हुआ है और वो घर पर आके बता रहे, तो कभी कभी ना डिले कर देते हम कि नहीं
0: बच्चे डर
1: ऐसा नहीं
0: जाते हैं।
1: वहाँ।
0: अब पता चला बच्चे के साथ कोई हैपनिंग हुई है, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत गलत हुआ है, और बच्चा घर पे डर के मता नहीं पाता क्योंकि पेरेंट्स डांट डपट देते
1: हाँ
0: हैं उसको, है ना।
1: ये
0: तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत कुंठा का भाव बच्चे के अंदर भर जाता है, और जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। और कई केसेस में आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों के भी सुसाइड के केसेस आए काफी,
1: करेक्ट
0: है
1: करेक्ट
0: ना।
1: सर।
0: तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, तो आपको उससे फ्रेंडली एटमोसफियर रखना है एकदम,
1: सर
0: है ना।
1: आपने डिप्रेशन की बात कही है तो मैं एक बात और रखना चाहूंगी आपके साथ, कि आजकल देखते हैं आप फोन हर माता पिता के पास है, हर बच्चे के पास है, जिसके वजह से माता पिता बच्चों को टाइम कम दे पाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने टीना।
1: तो सर मुझे लगता है कि इस पर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे
0: देखिए
1: सभी
0: स्क्रीन
1: पेरेंट्स को?
0: टाइम तो बिल्कुल जो है बच्चों को नहीं देना चाहिए, मेरी राय यही है, लेकिन कोविड के बाद से जो चीजें अब चेंज हुई है तो लोग ज्यादातर स्क्रीन टाइम, मेरा भी स्क्रीन टाइम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम लोग उसे प्रोफेशनल वे में यूज करते हैं।
1: यस यस
0: अगर
1: यस
0: हमें काम की चीज देखनी होती है तभी हम यूज करते हैं उसको, लेकिन टाइम जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मोबाइल का कम यूज करें, टीवी कम देखें, उनको आदत डलवाइए, वो बुक्स पढ़ें, नॉवेल पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, तो पॉजिटिविटी थोड़ी सी एटमोसफियर क्रिएट हो। अब आज की डेट में सोशल मीडिया आप देखेंगे मोबाइल पे इतने वल्गर कंटेंट आते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ना
1: सर करेक्ट है
0: कंट्रोवर्शियल चीजें आती हैं, तो बच्चा उसको देखता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं जहन में चीजें बैठती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मोबाइल का यूज कम से कम करें, है ना, टीवी कम से कम देखें,
1: और मुझे लगता है कि इसका ध्यान पेरेंट्स ही देंगे तो बहुत अच्छा
0: पेरेंट्स को
1: रहेगा,
0: बिल्कुल डेफिनेटली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और
1: कि बच्चा
0: छोटे बच्चों को
1: आखिरकार।
0: तो खास तौर पे मोबाइल नहीं दें। बड़े बच्चों का तो चलिए ठीक है, मैं समझता हूँ कि उनके ऑनलाइन क्लासेस भी आजकल हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए गैजेट्स का यूज भी है, मिसयूज भी है, दोनों ही चीजें हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो एक सर्टन एज के बाद हमें जो है उन्हें यूज करने के लिए मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ऑनलाइन भी क्लासेस होते हैं।
1: अगर सर मैं अपने घर की बात करूं तो मेरी भाभी क्या करती है, काम करती रहती है। वो छोटा है अभी 2 साल का ही है, तो वो रोने लग जाता है तो घर पे कोई होता नहीं है संभालने के लिए, उनको फोन पकड़ा देती है। अब फोन पकड़ाने के चक्कर में उस बच्चे का आंख मतलब हमेशा रेड रहने लग गया।
0: हाँ, तो वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइमिंग बढ़ा है, इसी वजह से उसकी आईज पे इफेक्ट आया है,
1: वही ना बच्चों की लत लग गई, अब वो हटना।
0: तो फोन एडिक्ट हो जाते हैं, तो वो एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज है, किसी भी चीज का हो जाए, तो उस चीजों को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। सर तो हम आगे बढ़ेंगे कि स्कूल में बच्चों के साथ अगर गलत व्यवहार होता है तो उस टाइम क्या डिसीजन लेना चाहिए एकदम?
0: देखिए स्कूल में बच्चों के साथ अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है या कोई भी ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो सबसे पहले तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को तुरंत देनी चाहिए, जो संबंधित जो भी ऑफिसर या अधिकारी है उसको देनी चाहिए, और पेरेंट्स को तुरंत उस पर एक्शन लेके कार्य करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के सेहत से या उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ अगर हो रहा है तो निश्चित तौर पे बच्चा कोई भी सेटबैक का कोई ऐसा कदम भी उठा सकता है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए।
1: बिल्कुल सर, उनको जाति के ऊपर भी बोल देते हैं कि तुम्हारा जाति ये है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रीना आपने। तो ये कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस खास तौर पे इसको मॉनिटर करना चाहिए और ऐसी घटनाएं ना हो इसको लेके उनको एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, बच्चों को थोड़ा सा वॉच भी करना चाहिए।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: टीचर्स अपने ऐसे रखें जो माहौल अच्छा बना के रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों में हमें ना ऐसी, क्योंकि जिस तरीके से आप बच्चों के साथ बातें करते हैं, बच्चे मुझे लगता है कि वही सीखते हैं उस टाइम। तो कहीं ना कहीं तो एक तो हम ही होते हैं कि बच्चों को भेदभाव सिखाते हैं कि ये जाति ये है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इसी चीज को खत्म करना चाहिए।
0: बिल्कुल खत्म होना चाहिए,
1: तभी जाकर हम बच्चे भेदभाव जो हो रहे हैं उनके साथ स्कूल में वो नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल ठीक बात है, आप बचपन से ही बच्चों के बीच में जो आप माहौल क्रिएट करेंगे तो उसका ही प्रभाव आगे चल के आपको देखने को मिलता है।
1: सर तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि शो में समाज बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकता है, कैसे मदद कर सकता है?
0: देखिए, समाज के हर व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको लेके उसको शिकायत करनी चाहिए और बच्चे को सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचे कि भाई मेरा बच्चा नहीं है तो मैं इसकी हेल्प क्यों करूं। अगर कहीं भी आप किसी भी बच्चे के साथ अन्याय होता देखें तो आप तुरंत उसको हेल्प करें, लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, लोकल जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, मैंने एक आपको अभी नंबर बताया था 1098 हेल्पलाइन नंबर, तुरंत आप मिलाएंगे तो वहाँ से आपको तो हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पे जो है आप किसी का भविष्य बचा सकते हैं।
1: करेक्ट करेक्ट, वो ये ना कि भेदभाव ना रखे, चाहे बच्चे कैसा भी हो, किसी का भी हो, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं।
0: बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो आपको ये सोचना है कि भगवान का रूप है, हमें इसकी हेल्प करनी है।
1: करेक्ट करेक्ट। सो सर हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं। श्रोताओ, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है, अगर डाउट है तो आप हमारे साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा मैजिकल नंबर है 9837896896।
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
4: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
5: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: तो सर हम आगे बढ़ते अपने शो में और मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आज के टाइम अगर देखा जाए तो पेरेंट्स यानी कि बच्चों के पढ़ाई के ऊपर लेकर ना इतना हार्म हो कि उनको सुबह से लेकर शाम तक बुक पढ़ते रहो, मतलब खेलने की एक्टिविटी की बात आती है तो यही रहता है कि पहले अपना होमवर्क कम्प्लीट करो। तो लेकिन मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है।
1: देखिए बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जो लोड डाला जा रहा है आज की डेट में, जो ट्रेंड चल पड़ा है कि एक पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन लेवल, एक पैरामीटर उन्होंने बना लिया है कि वही पड़ोसी का बच्चा अगर टॉप कर रहा है तो हमारा बच्चा कम नहीं आना चाहिए, उसे ज्यादा मार्क्स लाना चाहिए।
0: हाँ हाँ।
1: तो ये ना कहीं बच्चों के बीच में कॉम्प्लेक्शन क्रिएट कर देगा और जो है ये जो कॉम्प्लेक्शन है ना ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: तो आप उसको हर समय अगर एक प्रेशर करो कि भाई बुक्स लेके पढ़ाई करो और तुम जो है मार्क्स कम है तुम्हारे, ये जो है उसका देखो कैसा आया तुम्हारे फ्रेंड का मार्क्स तुम्हारे कम क्यों है, तो इस तरीके से अगर आप उसको बोल रहे हो तो ये भी एक तरीके से जो है वो हैरेसमेंट की श्रेणी में आता है ना। आप उसको
0: कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हार्म ही हो रहा है,
1: हार्म हो रहा है उनका, उनका मेंटल पीस हार्म हो रहा है, उनकी हेल्थ हार्म हो रही है। आप बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, उसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो वहां जाएगा, उसको खेलने उतने का टाइम दीजिए, उसको एंजॉय करने दीजिए, क्योंकि देखिए जैसे पढ़ाई जरूरी है उसी
0: हिसाब से
1: खेल कूद भी जरूरी है, फिटनेस भी जरूरी है।
0: करेक्ट।
1: और खेल कूद से फिटनेस से हमारी जो बॉडी है वो थोड़ा सा पॉजिटिव फील आती है, हेल्थ भी अच्छी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि अगर बच्चे का इंटरेस्ट किसी दूसरी फील्ड में तो आप उस फील्ड में वर्क करिए, उसको जानने की कोशिश करिए कि हो सकता है भाई हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता।
0: करेक्ट सर, मैं यही पूछने वाली थी आपसे,
1: हर बच्चा एडवोकेट भी नहीं बन सकता।
0: करेक्ट।
1: तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है आप उसको उस फील्ड में डालिए।
0: बिल्कुल।
1: आप एक एक्सपेक्टेशन, एक पैरामीटर जो आपके माइंड सेट में है वो उसके ऊपर ना थोपिए, अपनी मर्जी ना थोपिए, तो उसको उसका डायरेक्शन खुद चूज करने दीजिए कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है।
0: करेक्ट।
1: हाँ उसको एक डायरेक्शन दीजिए जरूर, लेकिन उसको बाउंड मत करिए कि नहीं यही तेरे लिए सही डायरेक्शन है, वो उसको चूज करने दीजिए।
0: करेक्ट। और सही गलत का देखिए पेरेंट्स तो समझाते लेकिन हमें कहीं ना कहीं बच्चों के बारे में भी उनकी राय भी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, पढ़ना ही है चाहे कैसे भी करो, और बाद में ये होता है कि बच्चे पूरी जिंदगी कोसते रह जाए कि मैं करना क्या चाह रहा था, कर क्या रहा हूँ, उसको वो अच्छे से नहीं कर पाते,
1: कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चों हमने देखा है कि उनको जो है फील्ड उन्होंने करा बीटेक है और जॉब कर रहे हैं वो बैंक में मार्केटिंग की। बीटेक का आप रिलेशन आप सोचिए कि उसको मार्केटिंग की जॉब से आपने उसको कनेक्ट कर दिया, हो सकता है अगर आप उसे मार्केटिंग में एमबीए की होता तो हो सकता है वो उसको और अच्छा कैरियर में ग्रोथ मिलता।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट समझिए, कई कई एग्जाम्पल्स हैं, सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि कम से कम बच्चे को फ्री छोड़ें, उसको सही डायरेक्शन खुद चूज करने दो, उसके ऊपर कम से कम बाउंडेशन ना लगाएं। हाँ उसको ध्यान जरूर रखिए, उसको डायरेक्शन जरूर दिखाएं आप।
0: करेक्ट।
1: लेकिन डायरेक्शन दिखाने के बावजूद उसका अगर इंटरेस्ट आपको लगता है दूसरी फील्ड में तो आपको उसी फील्ड में उसको थोड़ा सा पुशअप करना चाहिए।
0: बिल्कुल सर। सो हम आगे बढ़ते सर और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे कई बार ना सर बाहर जाते हैं या फिर घर किसी के घर भी जाते हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं और उनको वो उठा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और कभी कभी वो घर पर भी बताते हैं तो पेरेंट्स भी नहीं बताते कि नहीं हमारी बेइज्जती हो जाएगी हम नहीं बताएंगे, उस चीज को दबा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस चीज आगे बढ़ा रहे, उनको फोर्स कर रहे कि तुम जब बच्चों को डांट नहीं रहे हो तो इसका मतलब बच्चे आगे ही जाएगा, उसको यही लत लग जाएगी, चाहिए तो अच्छी बात है, जब हमारे घर वाले ही कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ और ही होगा ये। तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए ये बहुत गलत हैबिट है, अगर आप बच्चे आपके बच्चे के अंदर ये आदत है कि वो किसी भी चीज को उठा लेता है बिना पूछे आपसे ले लेता है ना, दुबका देता है कहीं, तो अभी तो देखिए बचपन में आपको लगेगा कि बच्चा है, बचपन की बातें हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के यही जो छोटी छोटी बातें होती हैं बड़ा रूप ले लेती हैं, हो सकता है कल को उसके अंदर ये जो हैबिट्स है इतनी ज्यादा पनप जाए कि कोई बड़ा क्राइम कर दे।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: और जब बड़ा क्राइम करेगा तो निश्चित तौर पे उसको कैरियर पे भी उसके टैग लगेगा और आपकी भी उसमें इंसल्ट होगी, तो मैं तो पेरेंट्स से यही कहूंगा कि अगर बच्चे के अंदर ऐसी कोई आदत है या कोई चीजों को छुपाने की आदत है तो सबसे पहली चीज तो ये उससे फ्रेंडली अप्रोच रखिए बच्चे से। मैंने पहले भी अपने एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि बच्चे से हमें फ्रेंडली अप्रोच रखनी है, उसको डांटे मारे नहीं, और काउंसलिंग सेशंस, एजुकेशन सेशंस उसके लिए अरेंज करें, उसको बताएं कि क्या सही है क्या, क्या गलत है। आप किसी दूसरे के घर पे अगर जा रहे हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए,
0: करेक्ट।
1: तो इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों को आपको बचपन से ही उसको थोड़ा सा एक डिसिप्लिन, एक मैनर्स, उसको एटिकेट्स सिखाने पड़ेंगे। अगर उस चीज को आप बचपन में सोच के टाल देते हैं तो आगे चल के यही जो बचपन की बातें हैं बड़ी हो जाती हैं, और बड़ा जब कोई क्राइम होता है तो उसका कुछ आंसर नहीं होता,
0: उसका सॉल्यूशन फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है,
1: बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन चीजों को हमें अभी से ही ध्यान रखना चाहिए।
0: और सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, पहले के टाइम में क्या होता था ना कि बच्चे अगर टीचर उनको मार भी रहा है तो अच्छे चीज के लिए मारते थे, लेकिन उसके टाइम अगर मार देते हैं बच्चों के ऊपर तो पेरेंट्स सर पर चढ़ जाते हैं कि मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगा दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम बच्चों के साथ, बच्चों के ही मतलब साथ दे रहे हैं कि गलत चीजों का साथ दे रहे हैं, तो क्या सर ये सही है?
1: देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: मैं इसमें ये नहीं कहता कि टीचर जो मारते थे वो ठीक करते थे, और ये भी नहीं बोलूंगा कि टीचर नहीं मारते तो ठीक करते। जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, जब हम एजुकेशन अपनी प्राइमरी एजुकेशन ले रहे थे, हम स्कूलिंग करते तो हमें टीचर्स डांटते भी थे, डपटते भी थे, पनिशमेंट भी देते थे, लेकिन उस पनिशमेंट का लेवल इतना नहीं होना चाहिए कि आपको कोई हर्ट हो।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: आपके मन पे, आपके दिमाग में वो चीज इतनी बुरी तरह छप जाए कि आप उसको भूल ना पाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो पनिशमेंट भी थोड़ा जरूरी है, लेकिन उस लेवल तक कि बच्चे को एटलीस्ट लगना चाहिए हाँ भी ये गलत काम है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है, मैं अच्छा करूंगा, तो उसका आपको एप्रिसिएशन भी दीजिए बच्चे को।
0: बिल्कुल,
1: अच्छा करे तो एप्रिसिएशन भी दीजिए उसको, तो उसको कम से कम बच्चे को फील नहीं होगा नहीं हर बार मुझे डांटा जाता है। और देखिए हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कुछ केसेस ऐसे भी आए कि टीचर

0: कोई भी हार्म ना हो चीज, ताकि उस चीज को उस चीज से वो निकल ही ना सके, आगे बढ़ ही ना सके,
1: बढ़ ही ना सके, उसको सोच के बैठ जाए
0: कि हाँ उसको आगे कहीं आगे भी बढ़ रहा है तो सोचेगा नहीं ये मेरे साथ तो ये हो चुका है तो मैं शायद ये चीज को इस कदम को नहीं उठाऊंगा, क्या पता वो सर सही भी हो।
1: डेफिनेटली वो मैंने बताया ना आपको कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वही एक इस चीज को हम कह सकते हैं, हर चीज एक लिमिट में होनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं मिलते हैं आप सभी से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
4: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
3: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
4: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण पिछले कई हफ्तों से आप लोग सुन रहे हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो पर, और इसमें हम आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं चंबल फर्टिलाइजर्स के, और आज ये हमको इस विषय में जानकारी देने वाले हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आज किस विषय की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है।
2: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार संज्ञा जी। और आज का जो हमारा विषय है वो है संतुलित फसल पोषण, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके क्या लाभ है खेती, और उसके बारे में चर्चा करेंगे।
1: जी हाँ, इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय है उसके संचालित PMKSK एक जो केंद्रों के बारे में योजना है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहिए।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को

0: वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो
1: हम्म,
0: एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं, जो पीएम केयर्स के हैं, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है। और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे। अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी
1: नहीं
0: नहीं दे
1: है।
0: पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है। और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है कि सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है। तो वह तालिका है अब पीएम की एस के पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: पीएम के एसके के बारे में तो ये जानकारी आपने हमको बहुत अच्छी तरह बताई, लेकिन अब आप ये बताइए कि उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है
0: जी,
1: वो क्या है और उसका क्या उद्देश्य है?
0: जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया है तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं, और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीदते, उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल।
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद चलिए अब हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं, जो है संतुलित फसल पोषण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसलों के संतुलित पोषण से तात्पर्य क्या है।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर बात आती है कि यार ये तो खेती बाड़ी है, इसमें संतुलित पोषण ये सब बातें क्या आ गई, खेत की मिट्टी है इसमें कुछ भी डाल दो और हो जाता है अपने आप, अगर एक्स्ट्रा डाला है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डाला है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं है। संतुलन से होता है कि हर चीज में संतुलन है, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो कोई चीज उसी अनुपात में कम होने लगती है, और कोई चीज अगर जो है मतलब जो कम हो जाए तो फिर उसका उसी तरह से उसका असर दिखता है। अब अगर ऐसा कोई कहे कि भाई पंजाब में जो धान होता है और जो छत्तीसगढ़ में धान होता है उसकी की जो जो मांग है वो एक ही होगी, ऐसा नहीं है। आमतौर पर धान की फसल के हिसाब से देखें तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन धान की जो हम छत्तीसगढ़ में उगा रहे हैं उसकी जो उर्वरक की मांग है, जो पोषण की मांग है वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ के जो खेत, यहाँ की जो मतलब मिट्टी और आबोहवा है वो थोड़ी अलग है, और जो हम जो पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं वहां पे वो अलग होगी। तो अब हर जगह के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या और भी जो संस्थाएं हैं जो कि सॉइल टेस्टिंग कराती हैं, मिट्टी की जांच कराती हैं, वो उसमें अनुसंधान उन्होंने किया है और वो देखते हैं कि इस जगह पर इस तरह से हम अगर पोषण देंगे, अतिरिक्त पोषण, अतिरिक्त पोषण से उर्वरक के द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और जैसे कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, हरी खाद है, इनके द्वारा दिया जाता है, तो हमारी फसल को एक जो आहार चाहिए उसको, जो उसको पोषण चाहिए वो पूरा मिलेगा। ये हर राज्य का, और मैं तो कहता हूँ एक राज्य में हर क्षेत्र का अलग अलग भी हो सकता है, तो उसकी मांग के अनुसार ही अगर हम जो पोषण देते हैं तो उसके उससे हमें काफी लाभ होते हैं, और लाभ से संदर्भ भी है कि हो सकता है कि क्षणिक रूप से हमें कुछ ऐसा न लगे लेकिन लंबे समय के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलित पोषण से तात्पर्य यही है कि जितनी मांग, जितनी आवश्यकता उतना ही हम दें और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाए। ज्यादा देने का अर्थ या असंतुलित अगर हम देंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ज्यादा लाभ उससे मिलेगा, उससे लाभ की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर हम सही मात्रा में सही समय पर उर्वरक देंगे या पोषण देंगे तो उसे ही हम संतुलित पोषण कहते हैं, तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे।
1: तो फसलों में संतुलित पोषण से क्या तात्पर्य है श्रोताओं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है फसलों में, आइए अब हम ये जानते हैं डॉक्टर सिंह से।
0: जी हाँ, क्यों आवश्यक है? अगर आप देखें तो जैसे आज के समय में सघन खेती हो रही है, सघन खेती से ये अर्थ है कि एक फसल ली उसके बाद दूसरी फसल ले ली, अगर खेत खाली हुआ और मौका है तो हम तीसरी फसल भी लेने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज के समय में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम क्षेत्र से ज्यादा लाभ ले सके। मांग भी है उत्पादों की, जैसे कि मान के चले कि अभी हमारे यहाँ धान हो रहा है, धान के बाद हमें लगेगा हम गेहूं ले लेंगे, गेहूं अगर टाइम पे कटाई होगी तो उसके बाद मक्का ले लेंगे और मक्का के बाद फिर हम धान ले लेंगे। तो आप देखिए कि साल में हमने तीन फसलें ले ली और तीन फसलों के हिसाब से ले लेंगे चार महीने के हिसाब से, तो लगभग ये है कि 12 महीने पूरे हो। अब ऐसी सघन खेती में अगर पोषण का हमने सही ध्यान नहीं रखा तो फसलें हमारी कमजोर होने लगेंगी और हमें उत्पादन सही नहीं मिलेगा। उत्पादन सही मतलब ये है कि हम बीज डालेंगे, जैसे आज की तारीख में अगर हम सघन खेती करें तो हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना, बहुत महंगे आते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट में भी सूखा बारिश ये भी इनके भी असर होते हैं। तो अगर हमने संतुलित और सही समय पर पोषण नहीं दिया तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, फसल कमजोर रहेगी, उसमें रोग बीमारी या जो मतलब कीटे हैं उनका भी प्रकोप ज्यादा होगा। जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें बीमारियां कम लगती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इम्यूनिटी आहार विहार और विचार तीन चीजों से आ जाती है। अगर हम अपने शरीर का देखें, आहार मतलब हमारा भोजन और मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम करें, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करें, व्यायाम करें तो संतुलन शरीर का बना रहता है। और थॉट प्रोसेस हम अपनी संतुलित रखें, बहुत ज्यादा उद्दीलना में रह रहे हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से ठीक रहता है। लेकिन अगर हम इससे हट जाए तो फिर हमारी स्थिति ये हो जाती है कि छोटी छोटी जो समस्याएं आती है या कोई मतलब मौसम का परिवर्तन हुआ क्या या कोई और चीज हुई तो हमें कभी जुकाम हो गया, तो कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, ऐसी बहुत सारी। इसी तरह खेत में है, अगर संतुलित पोषण देंगे तो खेत के अंदर पोषक तत्वों की जो एक स्तर होना चाहिए वो सही बना रहता है, फसल अच्छी होती रहती है, उत्पादन ठीक मिलता है और जो आपने इनपुट लगाया है, जो आदान आपने दिए हैं उसके हिसाब से जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलता रहता है। इसलिए आवश्यक है संतुलित पोषण।
1: फसलों में संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है ये जानकारी तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये संतुलित पोषण हम कैसे फसलों तक पहुंचा सकते हैं, किस किस मात्रा में हमको पहुंचाना चाहिए, कैसे ये पता चलेगा कि संतुलित पोषण हम दे पा रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए।
0: संतुलित पोषण कैसे करें ये एक बड़ा सवाल है कि हमें तो भाई जो जानकारी नहीं है कि संतुलित पोषण हम कैसे करें, इस खेत को कितना चाहिए और इस फसल ने जो मतलब कितना लिया। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको सही रूप में या वैज्ञानिक रूप में हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बड़ी साधारण सी और अच्छी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, वो है मिट्टी परीक्षण। हम खेत की मिट्टी की जांच कराएं। वैसे तो अगर हम कहें कहीं पर अगर कोई वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो वो हर फसल से पहले कराते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम साल में एक बार खेत जब आपका खाली हो तो मिट्टी का नमूना लें और उसकी जांच कराएं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व आपके खेत में उपलब्ध है और क्या उनकी मात्रा होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ आप ये भी लिखते हैं कि कौन सी फसल आप लेने जा रहे हैं। फसलों का जब आप नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक उसमें अपनी तरफ से मिट्टी की जांच को देखकर लिखते हैं कि इस फसल को इस समय पर ये आपको पोषक तत्व देने हैं, इस समय पर ये पोषक तत्व देना है। तो उससे क्या है कि जो फसल आप ले रहे हैं उसकी पूर्ति होगी और जो खेत में पोषक जो स्तर रहना चाहिए वो उसमें बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती। तो अगर आप इस ओर जाना चाहते हैं कि आप जो संतुलित पोषण हो आपके खेत में तो मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं।
1: श्रोताओं, हम पिछले अंक में खेती किसानी के आप लोगों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। वो मिट्टी का नमूना अगर आप लोगों को भेजना चाहें तो वो कहाँ भेज सकते हैं? हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से इस बारे में भी बता दो।
0: उसके लिए देखिए, एक तो क्या है, आपके क्षेत्रीय लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। वहां मिट्टी का नमूना लेके जाए और फ्री में जांच होगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी अपनी प्रयोगशालाएं होती है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। दूसरा, अगर वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोई या रिसर्च स्टेशन है, वहां पर मिट्टी की जांच की भी जो सुविधा है वहां करा सकते हैं। तीसरा, जितनी उर्वरक कंपनियां वो भी मिट्टी की जांच जो कराती है, बीज कंपनियां भी कुछ है जो कराती है, तो उनके लिए जो पीएम केएसके है वहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नमूना दे सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर की भी हमारी दो प्रयोगशाला है, हम साल में लगभग 70,000 सैंपल जो है अपने चेक करते हैं।
1: अच्छा।
0: और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसमें कोई हम चार्ज नहीं लेते, सैंपल वहां तक पहुंचना चाहिए। पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप सीधे भेज दें, कोरियर से भेज दें, डाक से भेज दें, या आप जो पीएम केएसके है और वहां पर अगर हमारे उर्वरक आते हैं तो वहां पर हमारे क्षेत्र के काम करने वाले अधिकारी जाते हैं, फील्ड अफसर जाते हैं, वो आपके यहाँ अगर वो नमूने इकट्ठे तो वहां से वो नमूना भेजेंगे, मिट्टी की जांच होगी और रिपोर्ट आपके एड्रेस पे भी आ जाएगी और हमारे आदमी के पास भी।
1: यदि कोई कोरियर से भेजना चाहे तो मिट्टी कितनी होनी चाहिए?
0: मिट्टी जो है लगभग 400 ग्राम आप लें, गीली न हो, और उसके अंदर सूचना पत्र होना बहुत जरूरी है। सूचना पत्र मतलब आपकी पूरी जानकारी, आपकी खेत की पूरी जानकारी और कौन कौन सी फसलें आप उसमें लेंगे
1: लेते हैं वो जानकारी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी किसानों तक, और किसानों से अब अनुरोध है कि वो लोग अपने फसलों को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाएं और संतुलित पोषण जरूर दें। तो अब संतुलित पोषण कैसे करें ये तो हम जान चुके हैं, संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान क्या है?
0: हाँ जी,
1: इसके बारे में अब हम
0: बिल्कुल संतुलित पोषण देखें। अगर हम तो मुख्य रूप से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन चीजों की आवश्यकता होती है, तो इसके उर्वरक हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन अगर अकेला चाहिए तो यूरिया नाम का एक हमारे पास उत्पाद आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर तीनों चाहिए जो कि शुरुआत में फसलें लगाए जाते हैं तो उसके लिए एनपीके आ रहे हैं अलग अलग तरह के, उनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटास भी होता है, तो जो पौधे का शुरुआती विकास है उसके लिए वो बहुत ही लाभकारी होता है। कभी कभी कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें खास तरह का ही जो जो आपका खाद चाहिए, ऐसा ना देखें, खाद के अंदर क्या पोषक तत्व है उसके हिसाब से देखें कि अगर पोषक की जो मांग उस उर्वरक से पूरी हो रही है तो वो उर्वरक आप लें और अपनी फसल में आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, बहुत सारे, उनके लिए अलग अलग उत्पाद दुकानों पर उपलब्ध होते हैं, उस नाम से होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे कैल्शियम की जो मेरे उसमें जो थोड़ी कमी है तो मुझे कौन सा उत्पाद है, तो वो दुकानदार आपको बताएगा, उस पर लिखा होगा कि भाई इसमें इतने परसेंट है, उसका रेट होगा, कैसे इस्तेमाल करना है, और उसमें कंपनी का भी एक टोल फ्री नंबर हो सकता है या उनके अधिकारी का, तो अगर कोई शंका है तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनका देने का समय होता है, उसमें खेत की तैयारी के टाइम पर देना है। बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो मतलब पोषण है जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि आप जो है ये ड्रिप इरिगेशन है उसे कर सकते हैं, तो ये आप जब वो उत्पाद लेंगे तो उससे होगा। हमेशा ही एक स्थूल उर्वरक का देना उचित नहीं होता, एक अवस्था तक तो स्थूल उर्वरक काम करता है, उसके बाद फिर जब फसल 40 रोज से ऊपर की हो जाती है उस समय पर आप अगर स्प्रे के द्वारा दें, क्योंकि फसल का उस समय पर काफी विकास हो चुका होता है, उसका हरा भाग काफी ऊपर होता है, तो आप उसमें जो भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो हरा भाग है या उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो उसको सोखता है और वो अपने सिस्टम में उस पोषण को ले जाता है और वो उसको धीरे धीरे पुष्ट करता है। इसकी जगह अगर आप स्थूल उर्वरक देंगे वो अच्छे से पौधा नहीं ले पाता क्योंकि उसकी इतनी अवस्था हो जाती है, फिर आप जब उसको फेंक के डालते हैं तो वो अगर जो पौधे के पत्ते के ऊपर गिरा तो क्योंकि वो केमिकल है तो वो नुकसान करेगा, और जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें पानी की मात्रा इतनी है वो नुकसान नहीं करेगा।
1: संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान के बारे में तो आप लोगों ने सब जान लिया है। अब संतुलित पोषण करने से क्या लाभ होते हैं,
0: जी जी
1: आपके खेत में आपकी फसलों में क्या फर्क पड़ता है,
0: जी
1: उसके बारे में हमारे श्रोताओं
0: हाँ,
1: को जानकारी दी।
0: संतुलित पोषण जैसे कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर अगर आप लाभ समझे तो आप ये समझिए कि जितनी उपज आपको चाहिए उतनी मिलेगी। जैसे कि आप हाइब्रिड मक्का लेने जा रहे हैं, उसमें पर एकड़ आपको 25 क्विंटल उन्होंने कहा है कि इस बीज के हिसाब से हमें आपको यील्ड आएगी, उपज आएगी 25 क्विंटल एक एकड़ में या 30 क्विंटल आएगी। अगर आपने संतुलित पोषण दिया, मतलब हर पोषण की जो मात्रा चाहिए उतनी दी, तो वो 25-30 क्विंटल संभव है उसमें। लेकिन अगर एक एक खास चीज ही आपने अधिक मात्रा में दे दी और कुछ चीजें छोड़ दी, तो वो उतनी उपज आपको संभव नहीं, तो मतलब जो जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो आपको जो नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई एक सब्जी आपको बनानी है, उसके लिए खास तरह के इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी इतनी, काली मिर्च इतनी, लाल मिर्च इतनी, ये इतना, ये उतना, सारी चीजें आप ऐड करते हो सही और समान मात्रा में, तो उस सब्जी से जो उसका टेस्ट आना चाहिए या जो उससे उसको स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए वो होएगा। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं उसमें अगर कोई वो खास चीज आपने नहीं डाली तो वो स्वास्थ्य के लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहती। अब जैसे कि एक जो सब्जी होती है जिमीकंद होती है, उसको एक खास तरह से तैयार करना होता है। अगर वो विधि आपने नहीं अपनाई तो वो न तो आपको स्वाद आएगा ना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो इसी तरह से है कि संतुलित पोषण में जितनी जरूरत और जैसे आपको देना है वो अगर आप देते हैं तो एक तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, उपज अच्छी मिलती है। दूसरा उसमें हर चीज दे रहे हैं तो किसी चीज पे आप ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे कोई आदमी को बोल दो कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो घी पिया करो, तो वो घी ही पिए जा रहा है तो बीमार हो जाएगा वो, और घी पे खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अब उसके साथ अगर वो सब्जी खाए तो सब्जी सस्ती भी आती है, लेकिन एक सही मिक्स बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। इसी तरह से पोषण के बारे में हमेशा ये ध्यान रखें, जो चीज जितनी जरूरत है उतना अगर आप देते हैं तो उसके आपके खर्चे कम होते हैं, फसल स्वस्थ होती है, उपज अच्छी मिलती है, और जो उससे उत्पादन आपको मिल रहा है, जो उपज आपको मिल रही है, चाहे वो सब्जी ले रहे हैं आप, चाहे आप अनाज ले रहे हैं, उसकी पौष्टिकता और उसकी जो क्वालिटी चाहिए, जैसे मान के चले सरसों है, सरसों की फसल आप ले रहे हैं, सरसों में हमें सल्फर चाहिए, सल्फर से क्या होता है प्रोटीन बनती है और ऑयल की जो जो जो, जो उसके अंदर तेल के कंटेंट है वो बढ़ते हैं, और उसका जो स्वाद है उसमें जो एक तीखापन होता है वो उससे आता है सल्फर से। आप जो सब चीजें आपने डाली लेकिन सल्फर छोड़ दी, अगर खेत में सल्फर अच्छी मात्रा में है तो ठीक है अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी कमी हो गई है, लगातार आप सरसों उगाते आ रहे हैं, तो क्वालिटी में आपको फर्क आएगा। जैसे मैं एक बार जो बंगाल गया था तो वहाँ वहाँ के लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्ट मस्ट मस्टर्ड ऑयल उनका एक जो है अपना स्लोगन है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो कहाँ की सरसों जो पसंद करते हैं, उन्होंने कहा राजस्थान की। मैंने हमारे यूपी में और हरियाणा में बहुत होती है, तो बोले नहीं राजस्थान की जो है उसमें तीखापन ज्यादा, पंजनसी बहुत है, तो वहाँ उसकी जो क्वालिटी है सल्फर वहाँ होगा उस हिसाब से उसके अंदर पंजनसी आती है। तो संतुलित पोषण से हमें अनेक लाभ होते हैं, और आज की तारीख में जो मतलब उपभोक्ता है वो हर चीज देखता है और समझता भी है, तो जहाँ समझ है तो वैसा आदमी पाने की चेष्टा करता है। तो हम संतुलित पोषण करेंगे तो हम एक अच्छी उपज लोगों तक दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ दे पाएंगे, और हम अच्छा लाभ ले पाएंगे।
1: तो अच्छा लाभ लेने के लिए सभी श्रोताओं से, सभी किसान भाइयों से हमारा यही कहना है कि जो भी फसल उगाएं संतुलित फसल उगाएं, जिसमें सही पोषण हो, और सही पोषण रहे उसके लिए आप लोग अपने यहाँ की मिट्टी का परीक्षण कराएं, मिट्टी में जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए वो दवाएं, वो उर्वरक उनका इस्तेमाल करें। तो आज के इस अंक में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए.के. सिंह ने, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की हमको अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
2: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: चॉइसेस के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: मेले में नवनियुक्त कर्मचारियों ने नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
2: नमस्कार, मेरा नाम वाणी बालिया है और मैं दिल्ली की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में कार्यालय अधीक्षक के पद पर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का इस नियुक्ति के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मैं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए अपने देश और विभाग की उन्नति में योगदान देने का प्रयास करूंगी।
3: मेरा नाम नेहा है और मैं हरियाणा के रोहतक जिले की निवासी हूँ। मेरा चयन आयकर विभाग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर हुआ। मुझे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर मिला।
1: इससे पहले नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य पर एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत से आधे से भी कम है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है। श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम

0: निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दक्षिणी रिज के करीब 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दे दी है। इस निर्णय के बाद अधिसूचित रिज क्षेत्र बढ़कर करीब 13000 एकड़ हो जाएगा। दिल्ली की पारिस्थितिक सुरक्षा, हरित आवरण और वायु गुणवत्ता को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। रिज राजधानी की प्राकृतिक विरासत होने के साथ साथ उसका हरित सुरक्षा कवच है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि केवल भूमि को कानूनी संरक्षण देना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, बल्कि रिज के पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने, क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनर्जीवन और आक्रामक प्रजातियों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली सचिवालय में विरासत क्लब योजना की शुरुआत की। योजना के पहले चरण में राजधानी के 75 सीएम श्री स्कूलों में विरासत क्लब बनाए जाएंगे। इस दौरान दिल्ली के कला संस्कृति भाषा विभाग के अंतर्गत अभिलेखागार की ओर से इन विरासत क्लबों के छात्रों के लिए कई व्यावहारिक और छात्र केंद्रित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। योजना का उद्देश्य दिल्ली के छात्रों को राजधानी की समृद्ध सांस्कृतिक स्थापत्य और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु आज पीएस मौर्य एनक्लेव में थाना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिकों से सीधे बातचीत करने, शिकायतें सुनने और तय समय में उनका समाधान करने का एक मंच है। श्री संधु ने कहा कि भरोसा कायम करने और दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए मार्केट समिति के साथ सक्रिय साझेदारी बहुत जरूरी है। उपराज्यपाल शकुरपुर में आयोजित स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस अभियान में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों के साथ वृक्षित फाउंडेशन के युवा स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी की। उपराज्यपाल ने स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों को अपने आसपास की स्वच्छता के प्रति जागरूक होकर श्रमदान के माध्यम से पार्क की सफाई करना और उसमें सकारात्मक बदलाव देखना बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर सवेरे 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे।
2: इन शिविरों में मतदाता अपना नाम और विवरण जांचने के साथ जरूरी फॉर्म जमा करने की जानकारी भी ले सकेंगे। पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं होने पर फॉर्म 6, किसी नाम को शामिल करने या हटाने पर आपत्ति के लिए फॉर्म 7 और नाम, पता या अन्य विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म 8 भरा जाएगा। ये फॉर्म संबंधित निर्वाचन कार्यालय BLO या ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते हैं। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए 1950 हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है। नोटिस चरण और दावों या आपत्तियों का निपटान 29 अक्टूबर तक चलेगा। SIR के अंतर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन 4 नवंबर 2026 को होगा। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशेष शुक्ला।
0: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव के पद जीत लिए हैं। यश डबास अध्यक्ष, रिया छाबड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव बने हैं। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन उपाध्यक्ष पद पर विजयी रहे। अध्यक्ष यश डबास ने कहा कि PG और हॉस्टल की ऑडिट उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
3: हमारे लिए सबसे जो पहला विशेष मुद्दा रहेगा वो रहने वाला है कि हर एक PG और हॉस्टल का एक सेफ्टी ऑडिट कराया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा जो सत्य निकेतन पे दुर्घटना हुई थी। हम नहीं चाहते आने वाले भविष्य में ऐसी दुर्घटना किसी के भी साथ हो।
0: सचिव रिया छाबड़ी ने कहा कि परिषद को जीत युवाओं की बदौलत मिली है।
4: अपनी सीट से बहुत प्राउड फील हो रहा है और बहुत थैंकफुल फील हो रहा है अपने संगठन को, अपने जिन स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया उनको, अपने टीम मेंबर्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को। जेंजी प्रोटेस्ट में जेंजी हमारे साथ है, तभी हम 3 सीटों से जीते हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों में इस जीत पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि यह जीत राष्ट्र प्रथम की नीति में युवाओं

0: के अटूट विश्वास का प्रतीक है। गृह मंत्री ने कहा कि यह जीत परिषद की विद्यार्थियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता में युवाओं के अटूट भरोसे को दर्शाती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तीनों विजेताओं को बधाई दी। दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जीत एबीवीपी पर युवाओं के भरोसे को दर्शाती है।
1: दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जीत, तीन सीटों पर एबीवीपी ने स्पष्ट रूप से जीत हासिल की है। ये दिखाता है कि आज का युवा भ्रमित नहीं है, इसलिए आज का युवा एबीवीपी को समर्थन देता है।
0: दिल्ली के उच्च शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को केवल कक्षा और किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के बीच जाकर उसकी वास्तविक चुनौतियों को समझना और उनके समाधान विकसित करना चाहिए। श्री सूद ने बताया कि दिल्ली स्टार्टअप नीति के अंतर्गत दिल्ली में 10,000 स्टार्टअप और 4,00,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @ AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर @ AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ नशा मुक्त पंजाब यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का आह्वान किया। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि पंजाब के युवाओं और परिवारों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाना सभी का दायित्व है।
3: वो युवा भाई जो इस नशे की गिरफ्त में है, उनको कैसे छुड़ाया जाए? आज गांव-गांव, शहर-शहर में ये नशे का दानव अपना रूप बढ़ाता जा रहा है। अब इसे समाप्त होना होगा और ये नशा मुक्त पंजाब यात्रा उसी की शुरुआत है।
0: पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने कल चंडीगढ़ में भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया। श्री कटारिया ने कहा कि ये पहल चंडीगढ़ की विकास यात्रा में एक प्रमुख उपलब्धि है। इससे श्रम का सम्मान, सहकारी स्वामित्व, तकनीकी आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जोनल कार्यालय ने वित्तीय धोखाधड़ी मामले में एक कंपनी के 42 करोड़ रुपए से अधिक के इक्विटी शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल मजबूत संबंधों के आधार पर साझेदारी को नया रूप दे सकते हैं। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक संगोष्ठी में डॉक्टर वागले ने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत की त्वरित सहायता की सराहना की।
4: I think close to 8 cargo planes have arrived.
5: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
4: The Indian government is looking at the issue of assistance very positive.
0: दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी में व्यापक स्वच्छता और सफाई गतिविधियां जारी रखी। इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जीजे क्लस्टरों, प्रमुख मार्गों, सेंट्रल वर्ज और अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता व्यवस्था में सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल ने कहा है कि एआई आधारित टूल्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों की स्क्रीनिंग आसान हो गई है। राजधानी में दो दिन के डॉक्टर एआई ग्लोबल सम्मेलन में डॉक्टर बरनवाल ने कहा कि बीमारी के समय पर पहचान होने से शीघ्र उपचार संभव होगा, जिससे मरीजों को लाभ मिलेगा। इंडियन डेंटल एसोसिएशन का दो दिन का IDA दिल्ली स्टेट कॉन्फ्रेंस आज से पश्चिम बिहार में शुरू हुआ। सम्मेलन के दौरान देश भर से आए विशेषज्ञ डेंटल क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान कई कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के बरसाना सहित कई स्थानों पर आज राधा अष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। श्री मोदी ने कहा, सरकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय में नियुक्ति को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज में लगभग 1,000 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित वन घोषित करने को मंजूरी दी। विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में सुधार के लिए कल से 27 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद जीते। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
8: कॉल 7500153841।
9: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। मैं हूं आपका दोस्त आनंद, और एक बार फिर से आपकी शाम को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खूबसूरत लोगों को स्टूडियो में हम लेकर हाजिर हो गए हैं। हमारे बीच में एक बहुत ही कमाल के कलाकार मौजूद हैं जो आज आपकी शाम को और भी खूबसूरत और भी शानदार बनाने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए मेरे दोस्त, और साथ में अखिल भैया भी मौजूद हैं स्टूडियो में, और आज हमारे बीच में शाम को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए कमल शर्मा जी हैं। तो और वो क्या करते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड है, मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोताओं को वो जरूर बताएं अपने बारे में। और मैंने ऐसा सुना है कि वो पहले भी रेडियो पे आ चुके हैं, तो यानी कि उनकी आवाज पहली बार नहीं जा रही है श्रोताओं आपके कानों में, हो सकता है पहले भी आपने उनको सुना हो। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत बहुत वेलकम है।
10: मैं बहुत बढ़िया हूँ, धन्यवाद आपका बहुत इंट्रोड्यूस कराने के लिए। मेरा नाम कमल शर्मा है।
9: जी कमल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मुझे अपना नाम भी तो बताना पड़ेगा ना अखिल भाई, बहुत जरूरी है क्योंकि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनको पता तो होना चाहिए।
11: आपका नाम आनंद है और यहाँ आनंद मैं सीन चल रहा है।
9: देखो, A4 आनंद, A4 अखिल, K4 कमल शर्मा जी। तो सर, कैसे हाल चाल है आपके?
10: बहुत बढ़िया।
9: अरे वाह, जैसे मैंने बताया अपने श्रोताओं, क्योंकि आप पहले भी आ चुके हैं, तो पहले आप आ चुके हैं या मैंने मतलब वैसे फ्लो फ्लो में बोल दिया?
10: नहीं, पहले आ चुके हैं।
9: अच्छा, यानी कि आपने प्रोग्राम कर दिए हमारे स्टूडियो में, लेकिन मेरा और आपका फर्स्ट टाइम संवाद हो रहा है।
10: मे बी शायद टाइम
9: नहीं, हाँ मे बी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं मिला सर से, इसलिए मैं, मेरे को लगा शायद आप पहली बार आए हैं।
10: नहीं, हमारे जो प्रोग्राम रिकॉर्ड होते थे ज्यादा संडे में होते थे।
9: संडे में हमारी छुट्टी होती है ना, यही
11: संडे इज लाइक फंडे ना।
9: सही बात है,
10: क्योंकि संडे में शायद कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम होता नहीं है, तो इसलिए दोपहर में हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग करते थे।
9: अच्छा जी, रिकॉर्डिंग वाला शो, आप समझ गया मैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज हमारे श्रोताओं को आप बहुत कुछ सुनाने वाले हैं, हमें सूत्रों से पता लगा है।
10: सूत्रों से
9: लोगों ने हमें ऐसा मैसेज दिया है कि आज जो है कमल शर्मा जी हंसाने वाले हैं, और हमारे जो पड़ोस अखिल भैया बैठे हैं वो भी कुछ जो है आज बढ़िया सी चटपटी बातें करने वाले हैं। क्यों अखिल भैया, अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी अखिल भैया बताओ जरा।
11: मैं अपने बारे में यही बताना चाहूंगा कि मेरे अंदर भी एक शायरी और एक पोइट्री वाली चीज है। मतलब क्या, मुझे भी उन चीजों से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है, मैं बहुत सुनता भी हूँ इन सब चीजों को, और जो मेरे साथ है ना वो चलती फिरती आती है, मतलब एकदम एट रैंडम आती
9: है, रैंडम आती है,
11: और मैं एकदम आपको सुना देता हूँ। तो ये तो मेरे पास अच्छा मौका है।
9: मैं तो अखिल जी को जितना मैं जान पाया हूँ, ये वो आदमी, इनको जहाँ शिफ्ट कर देते हो वही शिफ्ट हो जाते हैं। इनको शेरो शायरी में डाल दो आप वही शुरू हो जाते हैं, इनको RJ में डालो, इनको इंस्टाग्राम की रील में डालो ये वहाँ फिट हो जाते हैं। आज ही ये मेलोडी खा के आए हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। ये मतलब ऑलराउंडर वाले हैं, बढ़िया वाले, जबरदस्त इंसान। तो सर, आपका हम स्वागत करते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वालों को आप भी थोड़ा अपने बारे में बताएं।
10: मेरा नाम कमल शर्मा है
9: जी।
10: मैं यहाँ मुरादाबाद में ही जॉनसन जॉनसन सर्जिकल सेल्स में पॉइंट हूँ।
9: अरे वाह।
10: तो जैसे कभी बोलता हूँ तो लोग ये सोचते हैं कि भाई एक तरफ ये और एक तरफ लिखना, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है?
9: जी, ये तो मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि कैसे पॉसिबल होता होगा।
10: बट ये है कि अब अगर हम इस चीज को मैनेज कर पाते हैं, कुछ ऐसा कर पाते हैं, तो अच्छी चीजें निकल रही। अगर दोनों विपरीत छोरों को मिलाकर हम एक नई चीज निकाल रहे हैं,
11: नहीं तो ये अच्छी बात है। ये तो आप ऐसे कहते हैं कि ये भी एक तरीके से जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है।
9: करेक्ट करेक्ट, और ये भी एक क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं। और सर जो इंसान का लगाव होता है ना जिस चीज से, वो उसके लिए समय भी निकाल लेता है और टाइम भी मैनेज कर लेता है।
11: कभी कोई ऐसा वाक्य हुआ है आपके साथ कमल जी कि आप वहाँ बैठे हो और आपने वहाँ पे अपने सेल के अपने प्रोडक्ट के साथ साथ शायरी भी सुना दी हो?
10: नहीं नहीं, अब तो ऐसा है ना कि जो खासम खास लोग हैं सब जानते हैं कि हाँ कमल कुछ लिखता है, तो जैसे कभी कभी बैठे होता अच्छा है चल उसको सुना दो चल, तो फिर वो उस समय ये है कि अब आप उसमें मुकर नहीं सकते,
9: अंदर का जो शायर बाहर आ ही जाता
10: वो,
9: है।
10: नहीं नहीं वो तो काफी बार आ चुका है।
9: अच्छा
10: तो काफी बार आ चुका है, इतना बार आ गया कि आसम पे भी आ गया।
9: अरे वाह बहुत बढ़िया। तो सर आज मैं भी सुनना चाहूंगा आपके वो अच्छी अच्छी शायरी और जो आपका अंदाज है उसको अपने श्रोताओं के साथ। तो आप कैसे शुरुआत करेंगे, क्या कुछ खास सुनाएंगे आज?
10: तो पहले तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा अपना परिचय दे दूं कुछ पंक्तियों।
9: मैं वही चाह रहा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए सर, मजा आएगा।
10: माध्यम से
9: बिल्कुल सर, पंक्तियों के माध्यम से दीजिए।
10: तो लीजिए पेश है कि जीवन अपना क्या है कमल,
9: जी
10: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है।
9: वाह।
10: जीवन अपना क्या है कमल, बस चादर एक झीनी है, खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है।
9: क्या बात है।
10: खुशियां मिले या गम हमको अब जैसी है जीनी है, कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं।
9: वाह।
10: कुछ कोरे पन्ने हैं जिन पर शब्दों के रंग भरने हैं है। और अदरक वाली चाय कमल सुबह शाम पीनी
11: है। अरे क्या बात, बहुत खूब।
9: मजे की बात ये कि आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी
10: बिल्कुल,
9: है।
10: बिल्कुल बिल्कुल
9: ये तो आपने
10: या मैं को रिलेट किया
9: हाँ, मैं भाई आप सुबह हमने सेलिब्रेट किया और देखिए चाय की बात भी हो गई है, तो हम आपको चाय पिलाकर ही भेजेंगे और अदरक भी डलवाएंगे, आप चिंता ना करें। समझ गए हम आपकी बात, आपकी शायरी से। तो श्रोताओं ये जो मस्ती है जो फन है वो लगातार बरकरार रहेगा इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6, आरजे आनंद अखिल और कमल शर्मा जी के साथ।

0: और फिर से वेलकम बैक है आज हंसने के लिए और कुछ प्यारी प्यारी बातें सुनने के लिए और सुनाने के लिए हमारे स्टूडियो में इस वक्त उपस्थित हैं कमल शर्मा जी। सर एक बार फिर से आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर
0: जी। अदरक वाली चाय तो आपने हमें याद दिला दी, अब उम्मीद करेंगे कि हमें पिलवाई भी जाए। क्यों अखिल जी?
2: बहुत बहुत सही कहा आपने।
0: नहीं लेकिन इस वक्त कमल सर कह रहे हैं कि नहीं बेटा इस टाइम पे चाय आप हमें पिलवाइए, हमें ज्यादा जरूरत है, हम आपके गेस्ट हैं। जी सर।
1: यस सर।
0: जोक सपाट तो चलता रहेगा श्रोताओं। फिलहाल कमल सर हम आपकी तरफ आना चाहेंगे। आपने चार पंक्तियां सुनाई लेकिन वो जबरदस्त वाली थी, अब कुछ और हो जाए हमारे श्रोताओं के लिए बढ़िया सा, जो अपने हाल फिलहाल में कुछ अच्छा लिखा हो।
1: हाल फिलहाल में क्या, बस अभी अपने घर से यहाँ तक आते हुए दो लाइनें दिमाग में आई थी।
0: अरे वाह, यही तो खूबसूरत होती है खूबसूरती कलाकार की। जी सर।
1: कि बुढ़ापा कह रहा है जवानी दे दो।
0: वाह
2: क्या बात है।
1: बुढ़ापा कह रहा है जवानी
0: दे दो
1: और आत्मा कह रही है गिलास ठंडा पानी दे दो।
0: बहुत ही बढ़िया, क्या बात।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: पानी की बोतल है कि ठंडी?
2: बगल वाला, बगल वाला नाई कह रहा है कि भाई साहब कलर वाली डाई दे दो।
1: चलिए मैं आपको कलर करवा लिया था, वो मैंने कलर करवा लिया था।
0: सर को देख के लग रहा है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया।
2: आनंद तुम्हारी तरफ से शायरी बोलना चाहूंगा।
0: सर बिल्कुल, मैं तो बोल नहीं पाता हूँ, आप मेरी
2: जैसे मैंने पिछली बार तुम्हारी तरफ से बोली थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल श्योर सर।
2: मैं अभी अपने सभी श्रोताओं से कहूंगा कि जो मेरे शब्द हैं वो कहीं ना कहीं आनंद के शब्द हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ रहे हैं, जहाँ पे जूता पढ़ने की बात आएगी वो अखिल जी के शब्द हैं, आप थोड़ा समझ जाइएगा।
2: तेरी डीपी पे आज भी दिल जाता है।
0: वाह।
2: तेरा ऑनलाइन आना मौसम बदल जाता है।
0: वेरी नाइस।
2: अब मोहब्बत खतों में कहाँ मिलती है जनाब। अब तो टाइपिंग टाइपिंग में ही दिल बहल जाता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। फिलहाल तुम टाइपिंग टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हम बातें बातें कर रहे हैं और वो भी हमारे कमल जी के साथ। बहुत ही अच्छा अखिल भैया आपने बताया और ये अखिल जी ऐसे बीच बीच में अपने मजेदार शायरी से आपको हंसाते रहेंगे। और एक बार फिर से हम कमल सर की ओर आगे बढ़ेंगे। जी सर, आपने वो दो शब्द तो सुना दिए जो आपके जहन में अभी आए और बड़े मतलब इस्तफाक की बात है कि एकदम रियल वाले थे।
2: अच्छा,
0: ऐसा लग रहा
1: है
0: अचानक तो आए, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं भी ये बात कहने वाला हूँ थोड़े दिन के बाद। ठंडा पानी, ठंडा पानी पिलवाएंगे, चिंता ना करो आप। जी सर, आप थोड़ा सा कुछ और नया सुनाइए। सर
1: सर नया क्या सुनाऊं, बस
0: जो आपके पास है आज आप वो सुना दीजिए।
1: नाम की वजह से मतलब लोगों की नजरों में रहता हूँ हमेशा।
0: अरे वाह क्या बात है, आज से हम भी आपको अपनी नजरों में रखेंगे। आप
2: चिंता मगर ये खिले हुए तो बहुत टाइम से हैं।
1: उसका कारण तो जानो ना।
0: जी जी सर प्लीज।
1: कि सामाजिक रूप से तो बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: कमल कमल कमल।
0: जी जी जी।
1: अगर आप उसका पॉलिटिकल एंगल देखें तो फिर कमल, अच्छा पिछले 12 साल से इन्होंने तो जान खा रखी है, खा देना रखी।
0: समझ सकते हैं सर, लेकिन आज हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि ये वाले जो कमल है इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही है।
2: हाँ।
0: तो आप अपनी बातों से और अपने शब्दों से इस कमल की खूबसूरती को और बढ़ा देंगे सर आज की शाम।
1: तो लीजिए चार पंक्ति इसी के नाम पे लीजिए।
0: बिल्कुल सर।
1: कि रोज एक किस्सा नया सहने की आदत हो चुकी है।
0: वाह।
1: रोज एक किस्सा नया
0: सहने
1: की आदत हो चुकी है। क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है।
0: क्या बात है जी।
1: क्या करें हमको भी अब कहने की आदत हो चुकी है
0: जी।
1: और हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर।
0: वाह।
1: हर कदम पर नई सियासत है कमल के नाम पर। जिंदगी लगता है तू भी भाजपा सी हो चुकी है।
0: अरे क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त।
1: तो मैं तो इसको मतलब एक बहुत अच्छा, हम लोग जो होते ना लिखने वाले वो बड़े मतलब चारों तरफ निगाह रखते हैं कि कहाँ से सब्जेक्ट मिले लिखने का।
0: करेक्ट, कहाँ से कंटेंट मिले, ऑब्जर्व करते रहते हैं आसपास में चल क्या रहा है।
1: क्योंकि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट गया, माइनस पॉइंट गई है, मैं सुबह कम से कम आधा पौना घंटा अखबार पढ़ता हूँ, दो खबर।
0: बहुत ही बढ़िया,
1: ताकि एक नई चीज आपको पता चलती है, सब्जेक्ट आपको मिलता है कि आपके पास पड़ोस में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पे क्या हो रहा है।
0: ये तो सर हम रेडियो में बताते हैं, ये हम रेडियो में भी बताते हैं सर।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो आजकल जरा आनंद जी बताएंगे क्या हो रहा है।
0: हम भी रिसर्च करते रहते हैं देश विदेश में क्या चल रहा है, ग्लोबली क्या चल रहा है दुनिया में, क्योंकि लोगों को रेडियो का सुनने का फायदा भी तो होना चाहिए।
1: अब कुछ सोचे कि 1 रुपए की टॉफी मशहूर हो गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे।
0: सही बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आजकल की शादीशुदा लोगों के बारे में कुछ है आपके पास पंक्तियां? बड़े परेशान रहते हैं आजकल।
1: दुखती रख क्यों छेड़ दिया आपने?
0: अरे मैं आपकी बात नहीं करना चाहता,
1: ये जरूरी था।
0: मैं सोच रहा हूँ जब आप आए हैं तो कुछ सुन लेते हैं।
2: एक बार भाभी ने इनसे पूछा भी
1: नहीं, हंसी माहौल का,
2: कितना प्यार करते हो आप हमें
0: जी।
2: तो इनका पता जवाब क्या है?
0: हाँ जी,
2: जितना फोन 1% बैटरी होने पर चार्जर से प्यार करता है।
0: ये तो जबरदस्त वाली बात कर दी आपने भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त। अखिल भैया ने जो शायरी सुनाई है उससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी शादी करूं और फिर मैं इस पे जरूर चर्चा करूंगा। फिलहाल तो अभी मेरा कोई इरादा नहीं है दोस्तों। जी अखिल भैया, आप अपनी शायरी को थोड़ा संभाल के रखें, बाद में सुनूंगा। जी कमल सर, आप थोड़ा कुछ फरमाएं, चार पंक्तियां आपकी कुछ बढ़िया सी हो जाएं।
1: तो जो आपने बात करी ना शादीशुदा वालों की,
0: जी जी,
1: तो वो दर्द थोड़ा बाद में खोलेंगे, भी हंसी खुशी का माहौल चला थोड़ी।
0: अगर आप चाह रहे हैं कि अभी जो है लोगों का दिल वैसे ही टूटा है आजकल, बहुत
2: जाके इन्हें बेलन ना चलाना पड़े,
0: हो सकता है इनके ऊपर चल जाए भाई, कुछ भी हो सकता है।
1: हंसी खुशी का माहौल तो अच्छी लाइन निकलती रहनी चाहिए।
0: अच्छी वाली सुना दो, पॉजिटिव वाली, मजा आ जाएगा।
1: कि अच्छा, मैंने जैसे बताया ना कि हम लोग तो सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी।
1: तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी थी कोरोना में।
0: अरे वाह,
1: क्योंकि सब्जेक्ट था बहुत बड़ा, सब्जेक्ट
0: बहुत
1: था
0: बड़ा टॉपिक,
1: और हम लोग तो क्योंकि ढूंढते रहते हैं, तो हमारी तो अपॉर्चुनिटी थी बहुत बड़ी।
0: बिल्कुल सर,
1: देखिएगा कि जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ,
0: वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ।
0: वाह जी वाह,
1: जब भी मिलता हूँ किसी से खुल के मिलता हूँ, मैं जमाने की हवा के साथ चलता हूँ, और वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, वैसे मुझे पाबंदगी अच्छी नहीं लगती, बस ढक के चेहरा आजकल घर से निकलता हूँ।
0: वाह क्या बात है, बहुत
2: क्या बात है, बहुत खूब
0: शानदार। और एक मैसेज भी दे दिया, आजकल गर्मियां बहुत है तो चेहरा ढककर ही निकले, हो सकती है
1: ये बात आज भी लागू हो सकती है।
0: एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने बोल दिया। वेल दोस्तों, अभी रात में तो खैर आपको धूप नहीं मिलेगी, तो आप चेहरा उघाड़ कर भी चल सकते हैं।
2: आनंद जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा।
0: प्लीज सर पूछिएगा।
2: इस मॉडर्न एरा, जो मॉडर्न एरा चल रहा है अभी अपना,
0: जी जी,
2: उसमें प्यार तो बहुत जल्दी हो जाता है।
0: हाँ जी,
2: जो ट्रस्ट है ना आपस में,
0: हाँ हाँ,
2: वो धीरे धीरे क्यों जल्दी खत्म होता है आपके हिसाब से?
0: मैं इस पे जरूर अभी लौट कर आऊंगा तो अपनी टिप्पणी करूंगा, लेकिन श्रोताओं भी एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा, बिल्कुल इस पे अपनी ओपिनियन दूंगा, अपनी टिप्पणी करूंगा, अपने राय दूंगा, अपनी पूरी वार्ता दूंगा, आप चिंता ना करें। पर अभी रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, उसके बाद वी कम बैक। आपके ही मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक है वंस अगेन, यू आर लिस्टिंग टू एफएम मुरादाबाद और एक शाम की धमा चौकड़ी मचाने के लिए मैं और मेरे साथ स्टूडियो में दो लोग और हैं, एक को आप जानते हैं, दूसरे को भी आप पहचान ही चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमल शर्मा जी की और साथ में अखिल जी भी मौजूद हैं और आज हम बातें कर रहे हैं बहुत सारी आपकी शाम को बेहतरीन बनाने की, कुछ शेर और शायरी से और कुछ जेन्युइन बातें दिल से जुड़ी हुई, प्यार से जुड़ी हुई। जैसे अभी अखिल भाई ने कुछ मेरे पे सवाल छोड़ा था, क्या था आपका क्वेश्चन भैया?
1: मेरा सवाल बस इतना सा है कि इस मॉडर्न एरा में प्यार बहुत जल्दी हो जाता है
0: जी,
1: मगर जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे खत्म होता है।
0: ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म
1: हो जाता है।
0: हाँ,
1: ऐसा क्यों?
0: क्योंकि मुझे प्यार नहीं हुआ इसलिए मुझे वो ट्रस्ट भी नहीं पता है। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा गाइस, अगर आप में से कोई ये टॉपिक पे कुछ भी कहना चाहता है तो वो इमीडिएटली इंस्टाग्राम पे आके मुझे बताओ ताकि मैं इनको इसका जवाब दे सकूं। मैं आगे बढ़ते हैं और शायद मुझे लगता है ट्रस्ट इसलिए भी खत्म हो जाता है क्योंकि ट्रस्ट करने वाले लिए अब दुनिया बची नहीं है यार अखिल भाई, मुझे ऐसा लगता है टू बी ऑनेस्ट। मगर अगर मैं अपने तरीके से देखूं तो बहुत ट्रस्ट करके देख लिया लोगों ने एक दूसरे के ऊपर, बदले में सिर्फ एक ही चीज मिलती है, धोखा
1: दगा।
0: तो इसलिए लोग जो है करते नहीं है ट्रस्ट। खैर, हमारे बीच में सीनियर सिटीजन बैठे हैं एक सर, हम उनसे पूछ लेते हैं। आओ घूम फिर के जरा सर के पास चलते हैं। कौन सर, आप बताइए इसके विषय में जरा, जो अखिल सर ने पूछा है अभी।
2: अखिल सर धीरे धीरे उसी विषय पे पहुंचना चाँ रहे हैं,
0: आप समझ गए ना,
2: शादी के बाद वाली जल्दी
0: है ना, मैं ज्यादा
2: मैं उस हिस्से को भी छूना नहीं चाह रहा। मैं सोच रहा हूँ हंसी खुशी का माहौल है तो थोड़ी बातें ऐसी चलती रहे।
0: नहीं, ये उसमें भी खुश हो जाते हैं, ये वो उसमें क्या आदमी है, आप चिंता ना करें।
2: तो चार पंक्तियां देखिएगा
0: जी सर,
2: क्योंकि शादीशुदाओं की बात चल रही है तो चार पंक्तियां समर्पित किसको हो सकती हैं?
1: ये तो बाय डिफॉल्ट है,
0: समझदार है।
2: देखिएगा कि लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया।
0: वाह,
1: क्या बात
0: है।
2: लगता है मौसम शहर का अब सुहाना हो गया, गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया।
0: वाह जी वाह,
2: गुनगुनाए होठ जब भी एक तराना हो गया, वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे।
0: क्या बात है,
2: वैसे तेरी मौजूदगी जीवन का हिस्सा है मेरे, बैठ कर संग चाय पीना तो बहाना हो गया।
1: क्या बात है,
0: बहुत ही खूब। जी अखिल जी, आप इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं इसमें
0: हाँ, मैं आपसे भी पूछता रहूंगा, आपने बहुत सारी गूगल बाबा साइज निकाल के रखी हुई है सुबह से। हाँ,
1: तेरी आवाज आज भी कानों में रहती है।
0: वाह,
1: तेरी बातें अब भी रातों में रहती हैं। तू दूर होकर भी दूर नहीं मुझसे, क्योंकि तू मेरी हर धड़कन में रहती है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। मैं समझ सकता हूँ कौन रहती है, इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। जी कमल सर।
2: यस सर।
0: आप अब और क्या स्पेशल सुनाने वाले हैं हमारे श्रोताओं को? आप जो है लगातार बढ़िया बढ़िया पंक्तियां सुना रहे हो, ये चार पंक्ति के ना, आप मुझे लग रहा है हमें सच्चाई का आईना दिखा रहे हैं। क्यों अखिल भैया?
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, आजकल क्या है ना, रिलेशनशिप जो है वो टूटते कम है, ईगो ज्यादा जीत जाता है उनमें। तो ऐसे जो है ना, एक मतलब अगर आप छोटी सी सॉरी भी बोल दो किसी को तो बहुत ही एक बहुत अच्छा रिश्ता आपका टूटने से बच जाता है।
0: अरे भैया, आजकल सॉरी बोलने से भी कुछ ना होता, जिनको ब्लॉक करना होता है वो करके भाग जाते हैं, भले वो दो दिन बाद अनब्लॉक कर दें, वो बात अलग है। खैर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, तू जेन्युइन ही है, आजकल के रिलेशनशिप में ईगो बहुत है क्योंकि सामने वाले का पहल वो करे और जो इस पार बैठा है उसको लगता है पहले वो करे, इस चक्कर में क्लैशेस होते रहते हैं और चीजें खराब हो जाती है, ऑलमोस्ट यही हो रहा है आजकल,
2: बिगड़ जाती है।
0: एब्सोल्युटली सर, क्योंकि वही रीजन है ना, सामने वाला चेहरा तू आ, वो चाह रहा है कि भैया नहीं तू आज इस चक्कर
2: में, पहले आप ट्रेन निकल गई, ट्रेन चली गई लखनऊ से।
0: सही कह रहे हैं,
2: बनारस।
0: इससे पहले हमारी ट्रेन निकल जाए हम सर आपके पास वापस आ जाते हैं। आप प्लीज कुछ सुनाइए हमारे लिसनर्स को और बढ़िया जबरदस्त सा श्रोताओं।
2: अगर जी, अगर मेरे दोस्त राघव पंक्तियां सुन रहे हो तो मैं चार पंक्तियां उनको ये समर्पित करना चाहूंगा,
0: जरूर सुन रहे होंगे।
2: कि महफिल का हर शेर उभरता उसका था,
0: अरे वाह,
2: महफिल का हर शेर उभरता उसका था, एक क्षमा थी हर परवाना उसका था।
0: वाह,
2: एक क्षमा थी हर परवाना जिसका था, वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे।
0: जी गजब,
2: वैसे तो हम भी उसके दीवाने थे
0: जी,
2: चलो बताओ वो दीवाना किसका था।
0: अरे वाह, क्या बात है राघव जी, देख लो सवाल छोड़ के जा रहे हैं सर, मैं पूछ लूंगा फोन करके आपसे। लास्ट टाइम राघव जी आए थे सर हमारे स्टूडियो में अभी रिसेंटली, बहुत ही बढ़िया उनके साथ भी एक संवाद लगा हमने किया, अखिल भाई आप भी थे, बहुत अच्छा सेशन किया उन्होंने और बहुत ही कमाल किया, जबरदस्त लिखते हैं।
1: आप ये चीज देखे ना, वो एज अ प्रोफेशनली वो एक एडवोकेट है
0: 100%,
1: तो उनके यहाँ भी हल्की सी छाप थी, रिश्तों को कैसे टूट रहे हैं और कैसे उसे बचा रहे हैं। और हमारे केमिस्ट साहब हैं हमारे इधर, सर्जिकल सारी सप्लाई इनके हाथ में है, तो इनके में भी वही छाप आ रही है हल्की हल्की सी, कि कैसे किसी की तोड़ा है और कैसे किसे जोड़ना। आप क्या कहेंगे आनंद जी?
0: नहीं, मैं मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट सर आपसे मुलाकात करके, और जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे लिसनर हमें सुन रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। और बस यही है, छोटी छोटी चीजें हैं जो इंसान को हंसाती है।

0: बट सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगती है एक आर्टिस्ट की, कि जब वो लिखते हैं ना, चार चीजों को सोच के जब वो लिखते हैं और जब उनसे एक नई चीज बनती है उसकी बात ही अलग होती है। शायद अब आप जो सुनाने वाले हैं वो भी कुछ ऐसी होगी आई एम श्योर।
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे।
0: वाह,
1: वो कहती थी हमेशा साथ रहेंगे
0: जी।
1: अब उसकी स्टोरी में कोई और नजर आता है।
0: अरे वाह।
1: और हम आज भी वही पुराने स्क्रीनशॉट संभाले बैठे हैं।
0: बहुत ही बढ़िया, मुझे दिखा देना, मैं भाभी को दिखा दूंगा।
1: हाँ, तुमसे तो कुछ कहना ही गुना है, तुम तो हर बात पे एकदम जो है ना
0: भाभी को ले आते हैं।
1: बिल्कुल, गृह मंत्री को ही पकड़ लेते हो। छोटे मोटे मंत्रियों को पकड़ा करो एकदम, गृह मंत्री तुम।
0: अरे गृह मंत्री जो कर सकते हैं ना, वो छोटे मोटे मंत्री नहीं कर सकते ना, इसलिए हम सीधा वहीं पहुंच जाते हैं मेन पॉइंट पे। सर आप कुछ कह रहे थे।
2: अब अखिल भाई इतनी समय से पन्ना खोलना चाहो, थोड़ा सा तड़का उसका लगा देता हूँ।
0: अरे सर बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली
1: तैयार में।
2: तो तैयार है अखिल जी सुनने के लिए?
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में।
0: क्या बात है,
1: बहुत खूब।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, मिलकर भी वह मिलना सका जो था हाथों की लकीरों में।
0: वेरी नाइस,
1: क्या कहा।
2: मिलकर भी वो मिलना सका जो था हाथों की लकीरों में, लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया। लिखे हुए को किस्मत में वो अब तक समझ नहीं पाया, घूम रहा लेकर कुंडली पीरों और फकीरों में।
0: अरे बहुत, क्या बात है, बहुत ही खूब, बहुत ही।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, संगी साथी छूट गए, संगी साथी छूट गए, सब रिश्ते नाते टूट गए, बेरंग जिंदगी लगती है कोई रंग नहीं तस्वीरों में।
0: अजी वाह,
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने।
0: जबरदस्त,
1: बहुत खूब,
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: और जो आपने धोखे वाली बात करी
0: जी सर,
2: कि दिल अंदर छलनी छलनी है, दिल अंदर छलनी छलनी है
0: जी,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं।
0: क्या बात है,
2: पर बाहर से कोई घाव नहीं, जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में। शमशीर मतलब तलवार।
0: हाँ। जी जी।
2: जाने कितनी धार बची है समय की इन शमशीरों में, और कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, कोई दर्द भला कैसे समझे दिल के टूटे अरमानों का, रांझे की चिंता किसको है सब घिरे हुए हैं हीरो में।
0: अरे क्या बात है, गजब गजब शानदार।
2: जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीरों में, और कोई किस्मत बदल नहीं सकता
0: जी,
2: कोई किस्मत बदल नहीं सकता, कोई होनी पलट नहीं सकता, क्या पता कमल कुछ हो जाए शायद उसकी तदबीरों में, जाने कैसे लेख लिखे थे किस्मत ने तकदीर।
1: बहुत
0: वेरी नाइस सर, बहुत ही शानदार सर, पूरी हो गई
1: अंदर से, अंदर से निकल के
0: आई सर, लग रहा था और सुनता ही रहूं मैं तो, इतनी शानदार थी है। वाह जी वाह, गजब,
1: अंदर से निकल के आई,
0: बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, बहुत ही शानदार सर, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके साथ, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। और मैं बस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौट कर आता हूँ श्रोताओं, और हम उसके बाद सर से कुछ पंक्तियां सुनेंगे दोस्ती के ऊपर। आज के टाइम में कहते हैं दोस्ती दोस्ती नहीं रही है, अब जमाना सेल्फिश हो गया है, आजकल जमाना मतलब ही हो गया है, तो थोड़ा सा इस विषय में भी हम सुनते हैं सर के दिल के जज्बात क्या लिखते हैं वो इस पर, बट अभी नहीं, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, एक बार फिर से आपकी शाम को और शानदार बना रहे हैं मैं अखिल जी और साथ में हमारे कमल शर्मा जी। कुछ प्यारी प्यारी बातें वो कर रहे हैं आज की शाम, और वो बातें जो शायद कहीं ना कहीं आपके दिल को छू रही होंगी श्रोताओं, और जो शायद इस वक्त सुन रहे हैं उन आपको भी भैया दिल से हमारा सलाम है। अगर आप भी यहाँ पहुंचना चाहते हैं तो हो सकता है अगला स्टेज अगली कुर्सी आपकी नाम हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे इंस्टाग्राम पे आके हमें एक छोटा सा मैसेज करना है। अगर आप कुछ बेहतरीन लिखते हैं, आप कुछ बेहतरीन सुना सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं भी कर सकता हूँ बढ़िया शेर, तो मुझे भी मौका मिलना चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से मिलेगा, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके भी मुझे DM कर सकते हैं। रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं, वहां पर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई भी बढ़िया सा शेर व शायरी का टैलेंट है, या आप कुछ बढ़िया लिखते हैं, या किसी ऐसे पर्सनालिटी को जानते हैं जिसके अंदर ऐसा टैलेंट है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे वो रेडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। क्यों अखिल भाई?
1: बिल्कुल सही बात, और इसी बात से मेरे को एक बात याद आ रही है,
0: प्लीज
1: कि मैं सभी अपने दोस्तों से और उनके दोस्तों से भी बात कहूंगा कि इस बात को याद रखें, जो सच्चा प्यार है कभी खत्म नहीं होता।
0: क्या बात है,
1: बस लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही है कुछ कि जो प्यार सच्चा करने वाला है ना, उसका एक अलग है, उससे आप किसी से मैच नहीं करवा सकते।
0: आई एग्री विद यू, 100% सही बात है। अब सच्चा प्यार मिलता नहीं, वो बात अलग है, है ना?
1: कह सकते हैं।
0: ये भी सच्चाई है, बाकी अपना अपना लक है। क्यों कमल सर?
2: बिल्कुल
0: है ना। अच्छा कमल सर, अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात करी थी फ्रेंडशिप के बारे में, मैं बोल रहा था दोस्ती के बारे में कि लोग कहते हैं कि आजकल दोस्ती जो है पहले वाली नहीं रही, मतलब ही होगी है, जहां काम होता है वहीं दोस्ती होती है, उसके बाद दोस्ती टाटा बाय बाय, तू किसका दोस्त, तू मेरा कौन सा दोस्त, वो चीजें चल रही है बेसिकली। अब भाई देखो कलयुग का टाइम है, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, सच्चे दोस्त भी है आज की दुनिया में। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
2: दोस्ती एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है
0: जी, ठीक है,
2: दो लोगों के बीच में,
0: ठीक है
1: भाई। मुझे तो
2: सिर्फ एक के दम पर नहीं चल सकती,
0: करेक्ट, वन साइड तो हो ही नहीं सकती, चाहे प्यार हो या
2: डेडिकेशन, दोनों का होता है।
0: एब्सोल्युटली,
2: आपका भी, सामने वाले का भी,
0: सामने वाले का भी।
2: वो बॉन्डेशन आपकी सही है तो फिर तो दोस्ती हमारे।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना सर, राह चलते हमें कुछ लोग मिलते हैं, हमारी वाइब मैच होती है, हमें लगता है वो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया दोस्त है, या सामने वाले को लगता है वो पर्सन हमारे लिए बहुत बढ़िया है, और इस चक्कर में कई बार फ्रेंडशिप हो जाती है, बट वो पता चलता है कि वो एक तरफ से ही थी, दूसरी तरफ से था ही नहीं।
2: अब वही कह सकते हैं ना कि हर चीज के दोनों साइड होते हैं।
0: हाँ करेक्ट,
1: कहीं कहीं दिमाग नहीं लगा जाता ना,
2: डाकर भी है, लेटर भी है,
1: कहीं दिल लग जाते हैं, कहीं दिमाग लगा जाता है, तो हर तरह की दोस्ती है, आप चाहे दिल लगाएं या दिमाग लगाएं।
0: सही बात है, बिल्कुल, मैं आपसे दोस्ती करूंगा, आप टेंशन न ले, दिल तो नहीं लगा सकता।
2: हमें थोड़ी ना पता था कि उम्र के 4500 साल में हम अखिल भाई मिल जाएंगे,
0: सोचने
2: और चिपक जाएंगे बिल्कुल हमारे साथ।
0: बहुत ही बढ़िया सर, दोस्ती में कुछ बढ़िया सी चार पंक्तियां हो जाएं सर, जो दोस्त आपस में बैठ के इस वक्त गाड़ी में हमें सुन रहे हैं।
2: दो पक्के दोस्तों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है।
0: अच्छा,
2: पक्के दोस्त हैं लेकिन किसी विषय को लेकर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में।
0: हाँ हाँ,
2: तो एक दोस्त कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहा है
0: जी,
2: हालांकि उसमें उसका प्यार ही कह लीजिए, गुस्सा नहीं है उसका।
0: ओके, बहुत ही खूबसूरत,
2: कि बदला वक्त जमाना बदला,
0: बदला वक्त जमाना
2: बदला, वक्त जमाना बदला,
0: हाँ जी,
2: उसने आना जाना बदला।
0: वाह,
2: बदला वक्त जमाना बदला, उसने आना जाना बदला, इससे अच्छा बदले खुद को, इससे अच्छा खुद को बदले,
1: क्या बात,
2: उसने ठौर ठिकाना बदला।
0: वाह,
2: ठौर ठिकाना मतलब जो उसके रहने की जगह है
0: वो बदला,
2: उसने ठौर ठिकाना,
0: ठीक है।
2: पहले उसने देखे सपने, पहले उसने देखे सपने, बाद में बदली आंखें,
1: अच्छा,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला।
0: वाह
1: क्या बात,
0: क्या बात है,
2: फिर लिखी एक नई कहानी और किरदार पुराना बदला, हरदम पाने की चाहत, मतलब आदमी में लालसा होती है कि ये भी मिल जाए, वो
0: भी
2: मिल जाए,
0: करेक्ट करेक्ट,
2: कि हरदम पाने की चाहत अब उसको इस हद ले आई कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला।
1: क्या,
0: वाह क्या बात है,
1: बहुत खूब, मतलब एक तरीके से इन्होंने एकदम एक 95% वाला सच बोल दिया इन्होंने,
2: कि नए दोस्त पाने की खातिर उसने यार पुराना बदला, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, सड़कें बदली, गलियां बदली, बदले सारे रास्ते, घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला।
0: वाह,
2: घर की सभी दीवारों का उसने रंग दोबारा बदला, और खुद अपना आकाश बनाकर, खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला,
0: बदले चांद सितारा बदला, जी सर,
2: तो खुद अपना आकाश बनाकर अपनी चमक दिखाने को कल उसने सबसे छिपकर बदले चांद सितारा बदला। और आखिरी पंक्ति देखेगा कि मैं लिए कलम और एक कागज, मैंने कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं, मैं लिए कलम और एक कागज, बस इसी सोच में बैठा हूं कि उस पल में क्या होगा अगर वो शख्स दोबारा बदला।
1: क्या बात है, बहुत खूब,
0: बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। इन पंक्तियों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो मुझे लगता है कि आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं, आई थिंक।
2: नहीं मतलब जैसे मैंने पहले बोला ना, डेडिकेशन है दोस्ती तो दोनों तरफ से,
0: करेक्ट, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई ना जो आपने बताया,
2: तो डेडिकेशन दोनों का है।
0: करेक्ट करेक्ट,
2: मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी साइड से तो वो क्लियर हो जाना चाहिए।
0: करेक्ट, लेकिन तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है, तो फिर वो कंफ्यूजन बढ़ जाता है सर।
2: इसलिए जो भी कोई कोई ऐसा पॉइंट है दोनों को कहीं पिंच कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं बढ़ता रहेगा।
0: करेक्ट, और वो इतना बढ़ेगा कि एक दिन वो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा,
2: रिश्ता खत्म हो जाएगा,
0: है ना, वो मतलब रिश्ता कम और वो टॉक्सिक ज्यादा हो जाएगा।
2: बिल्कुल
1: हमेशा आपके जो जितने भी पुराने दोस्त है ना, जो भी आपके साथ बैठे हैं, जो इस समय भी आपके साथ मौजूद हैं, चाहे गाड़ी में मौजूद हैं, चाहे बाइक पे मौजूद हैं, चाहे कहीं बैठे हुए हैं, कहीं भी एक टाइम टुगेदर आप लोगों का चल रहा है, तो वो क्या है, पुराने जो दोस्त होते हैं वो ना एक गानों की तरह होते हैं, पुराने अच्छे गाने जो आप जिनकी बात आप हमेशा सुनना चाहते हैं, जिनको आप हमेशा
0: गुनगुनाना चाहते हो।
1: और जो आपके नए नवेले दोस्त बनते हैं ना, वो एकदम एक फ्री ट्रायल की तरह होते हैं, वो बस फ्री पैक आपका खत्म हुआ नहीं और वो आपके गायब हो गए,
0: आपका सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद जैसे ही आपका टाइम गया खत्म। चलो रुकते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए, मेरे दोस्त ही गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ, जितने भी मेरे श्रोता साथी हैं, जो मेरे प्यारे दोस्त हैं, उनके लिए एक दोस्ती वाला गाना, इतनी सुंदर बातें हो गई हैं तो ये गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: वेलकम बैक यू वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आरजे आनंद के साथ हैं आप और इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। फिलहाल आज की शाम मेरा दिल चाह रहा था कुछ बेहतरीन बातें सुनना और इन्हीं बेहतरीन बातों को जो है पेश कर रहे हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में। स्टूडियो में मौजूद हैं कमल शर्मा जी और साथ में अखिल जी। तो बीच बीच में आपको अब ऐसी चटपटी बातें और शानदार प्रोग्राम सुनने को मिलते रहेंगे इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
1: धन्यवाद सर।
0: थैंक यू सर। और अखिल जी अपने जो है लैपटॉप में घुसे हुए हैं, शायद कुछ अच्छा निकालने के प्रयास में हैं। चलिए अच्छी बात है, उनका प्रयास जरूर मुकम्मल होगा। फिलहाल सर मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अभी आपने दोस्ती के ऊपर तो बहुत बढ़िया सुना दी और मैंने शुरू में आपसे बीबी और वो हस्बैंड बीबी के बारे में कुछ पूछा था, तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको सुना दो बढ़िया सा।
1: नहीं मैं समझता हूँ, अगर हंसी खुशला चला तो वही चलता रहे।
0: अच्छा तो मतलब सर बार बार मुझे पीछे कह रहा है, अभी तो छोटा, अभी तो बच्चा है तू, अभी तो ये जानने की क्यूरियोसिटी हो रही है। जब
1: दो विवाहितों के बीच में आप गलत फंस गए हैं मुझे लग रहा है।
2: नहीं ये अभी ना इन्हें याद रहेगा, क्योंकि जब
0: देखिए दोस्तों मैं आपके फायदे की बात कर रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो दो विवाहित लोग हैं ना, ये चाह रहे हैं कि भैया हमारे घर की जो है ना बीबी अगर हमें सुन लेगी तो दिक्कत हो जाएगी, शायद इसीलिए।

0: ये बोलना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों,
1: हमको इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि आधी हो चुकी
0: है। देखिए सर, आप अभी अखिल भैया को उस स्टेज में मत पहुंचाओ, अभी अखिल भैया को पहुंचने में बहुत टाइम है।
1: क्या पता वो ये कहना चाहते हैं, पूछना पूछना
0: अखिल भाई। अखिल भाभी सुनती रहती है, ध्यान से बोलना है आपने।
2: मैं यही
0: रिकॉर्डिंग भेज दूंगा
2: आनंद से, तो मैं यही कहूंगा कि ये टाइम आप अपना अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि अभी जो है ना आप अभी दोस्तों के साथ आपका समय बीतता है
0: जी,
2: दोस्तों के साथ अभी आप समय बीतता है ना, तो जब भी अभी आप तो मना कर रहे हो कि भाई मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है अभी, मैं किसी से मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो, जल्दी आपको कोई चाहने वाली ले, और जब ऐसा मिले तो आप अपने दोस्तों को मत भूल जाना।
0: ओके, बहुत बढ़िया। इन्होंने जो ट्रैक था वो कहीं और से कहीं और शिफ्ट कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक्सफुल टू यू अखिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आपकी ये बात भी पूरी होगी माशाल्लाह, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, हम भी इसी मुराद में हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सफर को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। जी प्लीज अखिल भाई, आपको सुना रहे हैं क्या?
2: कुछ रिश्ते नाम से नहीं एहसास से जाने जाते हैं।
0: वेरी नाइस।
2: वो दोस्त कब मोहब्बत बन जाते हैं पता नहीं चलता। तेरे साथ बिताया हर लम्हा आज भी याद आता है।
0: क्या बात है।
2: कॉलेज की वो चाय और तेरा मुस्कुराना भी याद आता है।
0: वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। मैं आपके कॉलेज जरूर घूमने जाऊंगा, फिर मुझे पता चल जाएगा आप कैसे मुस्कुराते थे।
2: मैं तो कैंटीन में मेरे साथ तो ये था, मैं अपने कॉलेज में कैंटीन में ज्यादा मिलता था, क्लासेस में कम।
0: ओहो, वेरी वेरी वेरी अमेजिंग। मतलब आप तो वो जी सर,
1: उस हिसाब से तो सही प्रोफेशन में पहुंच गए ना।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बस वो प्रोफेशन का जो भांडा है मैं यहाँ फोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि फिर नहीं तो कई लोग पकड़ लेंगे उनके रेस्टोरेंट पे जाके। अच्छा, हो पर उस तुम जो अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। जी सर, आप जाते जाते अभी कुछ सुनाए बढ़िया सा हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऐसे विषय पे मैं एक कविता मैंने लिखी है और मैंने इसको काफी मंच पर सुनाया और लोगों ने काफी इसको पसंद किया है।
0: जी,
1: जो बच्चे हैं आज शिक्षा ले रहे हैं आपके घर में, आपके भतीजे भतीजी और बेटा बेटी, वो आपके कब तक है? सिर्फ इंटर तक, उसके बाद जाहिर सी बात है उनको उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना है।
0: बिल्कुल सर, सही कहा।
1: तो कहीं ना कहीं वो एक घर से कट रहे हैं, उसके बाद वो वापस लौट के कभी नहीं आते
0: जी,
1: क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए। फिर कहाँ नौकरी लग रही है
0: जी,
1: फिर वो कब आते हैं? छुट्टी वाले बच्चे,
0: छुट्टी वाले, ओकेजन्स हो गए, छुट्टियां हो गई,
1: त्योहार।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो कुछ पंक्तियां मैंने उसके ऊपर लिखी हैं
0: जी सर,
1: और मैंने इसको जहां भी सुनाया काफी इसको पसंद किया लोगों ने। पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं।
0: वाह।
1: पाने को उच्च शिक्षा जो घर को छोड़ रहे हैं, एकल घर की परिपाटी को देखो तोड़ रहे हैं। धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, धुन अपनी में भाग रहे भूल के सारे फर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही गहरी बात कही।
0: छोटी थी बड़ी जानदार और शानदार थी सर ये।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था।
0: जी,
1: बदल गया अब सब कुछ वरना ऐसा कहां चलन था, सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था।
0: वाह।
1: सुख में दुख में हर मौसम में सबका मधुर मिलन था, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, माता पिता की फरियादे जो करना पाते दर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात है, बहुत ही।
1: कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज। और क्या होली क्या रक्षाबंधन, क्या होली क्या रक्षाबंधन, और क्या बची दिवाली, माता पिता बस एक कमरे में सारा घर है खाली।
2: बहुत ही गहरी बात कही।
1: माता पिता बस एक कमरे में सारा घर है खाली, जो बच्चे ना जान सके माँ बाप के मर्ज, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों के कर्ज।
2: बिल्कुल सही कहा, बहुत ही सही।
1: और इसकी अंतिम पंक्तियां देखेगा कि घर के कच्चे रस्ते जिनको याद नहीं अब आते, घर के कच्चे रस्ते जिनको याद नहीं अब आते, छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते।
2: क्या बात कही, बहुत ही सुंदर।
1: छुट्टी वाले बच्चे केवल छुट्टी में घर आते, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, गांवों को घर कहने में लगता है जिनको हर्ष, कैसे अदा कर पाएंगे वो बुनियादों का कर्ज।
2: क्या बात कही, क्या बात कही। और ये चीज वाकई होती है, मगर अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, ये लोग समझ रहे हैं कि हाँ, चाहे आप कैसे भी रहें, किधर भी रहें, अपनी मिट्टी से जरूर जुड़े रहें।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा अखिल सर, और दोस्तों आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा इस सेशन को डेफिनेटली, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आप आए स्टूडियो में। कमल जी आपने तमाम बढ़िया बढ़िया बातों से, पंक्तियों से रूबरू कराया हमारे श्रोताओं को, और अब जाने का समय हो गया क्योंकि आप

0: बस ये मुलाकातों के दौर यूं ही चलते रहें।
1: हाँ,
0: और आप मेरे को बुलाते रहें और मैं जो अपना विषय आपके सामने रखता रहूं।
1: क्या बात है, आज आपको स्टूडियो में आके अखिल जी के साथ शो करके कैसा लगा?
0: स्टूडियो में पहले भी आ चुका हूँ, बस अखिल जी के साथ आज मिलके यहाँ
2: पहली बार है। पहली बार हमारा रहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही कोई अपने ही एकदम सब साथ में है और हम सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक आपस की बातें हो रही हैं, थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है।
1: क्या बात है अखिल जी, आप जो बोलते हैं ना एकदम जिंदा दिली इंसान है, आप दिल से बोलते हैं, मानना पड़ेगा, नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बोलते हैं आप। एक दिन आप आरजे पक्का बनी जाएंगे, ऑलमोस्ट तो बनी गए और हम बाहर खड़े होंगे आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए, आप चिंता ना करें। जी सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, अगर आप भी जो है कुछ सुनाना चाहते हैं तो अखिल जी कैसे सुना सकते हैं? हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करके,
2: हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं, FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे
1: जी।
2: और हमारे को आप जो है मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9837896 पर।
1: पक्का अभी आरजे बन गए, मुझे मानना पड़ेगा, नंबर याद हो गया इनको, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। बिल्कुल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है या आप किसी से टैलेंटेड पर्सन को जानते हैं तो आप बताइए, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है। अनिल जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप आए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी जरूर आएंगे। जाते जाते एक और कुछ बढ़िया सी लाइन, सर सोच रहे हैं कि ये लड़के ने क्या पूछ लिया, अभी तो ये बाय करने वाला था, अब इसने फिर से कुछ सुनने की फरमाइश कर दी है। सर जाते जाते कुछ एक बढ़िया सा सुंदर सा,
0: आपके श्रोताओं को थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, जज्बाती जज्बाती कर देते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जाते जाते
0: कि जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है
1: जी,
0: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत है।
1: क्या बात है,
0: जीवन की उलझनों से वो परेशान बहुत है, नाकामियों के सर पे निशान बहुत हैं, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, चुपचाप से मर जाना आसान नहीं इतना, कहने को इस शहर में शमशान बहुत है।
1: क्या बात है, गजब, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही बढ़िया। इन्हीं बातों के साथ अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, इजाजत, फिर जल्दी होगी मेरी आपकी मुलाकात। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
3: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
2: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
3: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार मुरादाबाद, आप सुन रहे हैं 89.6 मेगाहर्ट्ज मुरादाबाद और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अखिल, और मेरे साथ है प्राची। प्राची, कैसे हो आप?
4: मैं तो एकदम बढ़िया हूं और उम्मीद करती हूं कि मैं हमारे लिसनर्स भी बढ़िया होंगे।
3: आज ये शो उन लोगों के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं पर डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है।
4: हाँ अखिल, जैसे कुछ लोग जिम ज्वाइन तो करते हैं पर सिर्फ सेल्फी के लिए, रिजल्ट के लिए नहीं।
3: बिल्कुल सही बात, और कुछ लोग करियर चूज करते हैं सिर्फ चाचा जी के कहने पर अपने।
4: तो फिर आज का हमारा टॉपिक है करियर कंफ्यूजन से करियर क्लैरिटी तक।
3: मुरादाबाद के दोस्तों, याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं।
4: अखिल, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, तो आप ये कहना चाहेंगे?
3: मेरे हिसाब से सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ तीन चीजों को लिखो अपने पास, मुझे क्या करना पसंद है, दूसरा मैं किस चीज में अच्छा हूँ, और तीसरा मार्केट में किस चीज की डिमांड है।
4: और अखिल, मुझे लगता है कि एक चीज और ऐड हो गई है आजकल की लाइफ में, करियर प्रेशर से ज्यादा डेंजरस आजकल कंपैरिजन प्रेशर बन गया है। लोगों बच्चों में कंपैरिजन, और कि मम्मी पापा की कंपैरिजन रहती है, बच्चों को वो कंपेयर करते रहते हैं दूसरे बच्चों से, तो इससे बच्चों के लिए जो पूरा एटमॉस्फेयर बन गया है बहुत ज्यादा मुश्किल बन गया है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
3: बिल्कुल सही बात कही। मतलब एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, शर्मा जी का हमारे पड़ोस में, वो IIT में।
4: अच्छा।
3: पर हाँ, पर जो एक और पड़ोसी है मिश्रा जी, उनका जो बेटा है उसका टैलेंट थोड़ा सा यूट्यूब पे, मतलब वो इस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और कई चीजों पे, जैसे आजकल फूड ब्लॉगिंग है, कभी बिजनेस को लेके किसी कोई मोटिवेशनल ब्लॉगिंग है, तो वो इज लाइक अ गुड स्पीकर। वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे आके अपने आप को दिखाऊं, मगर क्या है, बगल में शर्मा जी का बेटा जो है वो IIT में लगा हुआ है, तो ये बात रहती है, सुबह सुबह यही चर्चा रहती है कि भाई मेरा बेटा तो IIT के उसमें है और तुम्हारा बेटा देखो ये फालतू की चीजें कर रहा है, तो यहाँ पे लोग कंपैरिजंस में आ जाते हैं।
4: हाँ, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और पेरेंट्स का तो ये फेवरेट डायलॉग बन चुका है कि पहले गवर्नमेंट जॉब ले लो फिर अपना पैशन फॉलो कर लेना, जैसे पैशन कोई वीकेंड पिकनिक हो।
3: बिल्कुल सही कह रही है प्राची जी। चलिए, हम तो इस बात पे बात करते ही रहेंगे, अभी सुनते हैं बढ़िया सा गाना।

0: चलिए मान लीजिए एक स्टूडेंट कॉल करता है, नाम है राहुल।
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा फ्यूचर क्या है।
0: राहुल पहले ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है।
1: मुझे पसंद है डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया भी पसंद है। अच्छा राहुल, तो तुम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, फ्रीलांसिंग एक्सप्लोर करो।
0: आजकल ऑप्शन सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर तक लिमिटेड नहीं रह गया है।
1: डेटा एनालिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर, रेडियो जॉकी।
0: पर हाँ, अगर रेडियो जॉकी करना है तो सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
1: सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने अखिल। वो लिसनर्स, आप हमें बताइए कि आप किस करियर फील्ड को चूज करना चाहेंगे। आप हमसे बातें कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर 9837896896। तो सुनते रहिए हम अपने शहर का कम्युनिटी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद एफएम 89.6 मेगाहर्ट्ज़। हमारे इस कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है।
1: तो आज अखिल आप क्या लेकर आए हमारे लिसनर्स के लिए?
0: मुरादाबाद ब्रास सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ टैलेंट सिर्फ ब्रास तक लिमिटेड नहीं है।
1: वैसे ये तो सही कहा, क्योंकि हमारे मुरादाबाद के लोग बहुत सारी फील्ड में अपना नाम कमा रहे हैं।
0: यहाँ के यूथ ना स्टार्टअप तो शुरू कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी, फूड आउटलेट्स भी और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी चालू कर रहे हैं।
1: अगर आप स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं तो 2026 के लिए कुछ आइडियाज मैं आपको दे रही हूँ। होम बेकरी, डिजिटल सर्विस एजेंसी, ट्यूशन सेंटर, फूड कार्ट विद हाइजीन कॉन्सेप्ट।
0: लेकिन प्लीज हर गली में ना मोमोज मत खोल देना यार। जहाँ भी जाओ ना, जिस गली में जाओ, मैं अभी चला जाता हूँ बुद्धि विहार में, तो कहीं ना, मतलब वो जो अपना परशुराम चौक है और उससे थोड़ा आगे चलते हैं जब अपना हनुमान उसकी तरफ, जो हनुमान जी का पार्क है अपना, तो वहां पे भी भाई मोड़ पे भी वहां पे ही मोमोज वाला मिल जाता है। थोड़ा और आगे चला तो वहां पे भी एक शॉप पे मोमोज वाला है। तो प्लीज प्लीज प्लीज हर गली में हर जगह ना मोमोज नहीं होना चाहिए।
1: बस प्लीज आप ज्यादा मोमोज की बात मत करिए, बस मेरा बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का।
0: तभी ये इसलिए कह रहा था मैं, हर जगह मोमोज नहीं होने चाहिए। कम्युनिटी को ना सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि लोकल से खरीदो और लोकल को बढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है आजकल के समय।
1: तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि लोकल से मोमोज खरीदो और लोकल को बहुत बढ़ाओ। फिलहाल दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ। बस दोस्तों आपको ऐसे आइडियाज मिलते रहेंगे एफएम मुरादाबाद पर, और आप भी हमें भेज सकते हैं हमारी मैजिकल नंबर 9837896896 पर। और रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: वेलकम बैक टू मुरादाबाद FM 89.6 MHz, आपके अपने ही कम्युनिटी चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत। मैं और प्राची लेकर आए हैं आपके लिए एक मोटिवेशनल कहानी।
1: तो चलिए शुरू करिए आप।
0: एक छोटे से गांव का लड़का 3 बार एग्जाम में फेल हुआ।
1: लोग हंसते थे, कहते थे तुमसे नहीं होगा,
0: लेकिन उसने हर फेलियर का फीडबैक बनाया और आज वो अपना बिजनेस चला रहा है।
1: दोस्तों, फेलियर का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग।
0: लाइफ में गिरना अलाउड है, मगर रुकना अलाउड नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल आपने। तो दोस्तों, लाइफ में आप रुकिए मत, चलते जाइए, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे।
0: मगर वहाँ रुक जाना जहाँ पे आगे गाड़ी रुकी हुई हो, क्योंकि MDA में ना इस समय अच्छा खासा जाम मिलता है PAC से लेके किले तक। तो बहुत आराम आराम से गाड़ी चलाना भाई साहब, सीट बेल्ट जरूर पहनना।
1: पर दोस्तों टेंशन मत लेना, ये जाम शाम छट ही जाएगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हो प्राची। प्राची को तो जैसी शाम होती है ना, या प्राची का जहाँ भी कोई गोलगप्पे वाला स्टॉल दिख जाता है, प्राची की तो गाड़ी अपना आप ही वहाँ रुक जाती है।
1: फिलहाल बिल्कुल सही कहा आपने। और दोस्तों, तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। और अगर आपके पास भी है कोई मोटिवेशनल कहानी, आपकी दोस्तों की, आपकी अपनी जिंदगी की कहानी, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर जो है 9837896896।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: वेलकम बैक टू एफएम मुरादाबाद 89.6। आप है प्राची और अखिल के साथ, और दोस्तों आज हम खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर। तो अखिल आप शुरू करिए।
1: अच्छा ये बताओ प्राची, सक्सेस या स्लीप?
0: सक्सेस, स्लीप बाद में।
1: चाय या कॉफी?
0: करियर टेंशन में थोड़ी बहुत चाय सही है।
1: अच्छा गवर्नमेंट जॉब या स्टार्टअप?
0: दोनों, बस मम्मी खुश रहनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही, चाहे कुछ भी कर लो बस मम्मी जरूर खुश रहनी चाहिए।
0: हाँ अगर मम्मी खुश है तो सब खुश है।
1: तो मम्मी को खुश करने के लिए चलिए कोई गाना बजाते हैं।

0: कैसा लगा मामा?
1: क्या
0: मेरा गाना, मेरा पहला परफॉर्मेंस?
1: अरे सुनाई कहाँ दिया ये नालायक विवेक, बैटरी लाना ही भूल गया।
0: क्या यार विवेक?
2: अरे क्या भैया, मुझे क्या बोल रहे हो? आपको लाने को बोला था ना बैटरी।
0: कोई काम सब तो मैं ही करूंगा ना मामा, तू लाओ इधर। चलो मामा, जल्दी दिखाओ।

0: उसका डर।
1: तो दोस्तों, ये जो गाना है ये सिर्फ आपकी मम्मी के लिए डेडिकेटेड है। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: तो श्रोताओं, हम एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने ही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन मुरादाबाद FM 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मुरादाबाद, याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते।
1: तो दोस्तों, आज ही अपना गोल लिखिए और अब कल से एक्शन करना शुरू कर दीजिए।
2: अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, कंफ्यूजन को क्लियर करो और कुछ भी मन की बात हो ना, हमें जरूर मैसेज करो।
1: तो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप ट्यूनिंग करते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मैजिकल नंबर के साथ 9837896896। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

0: चतुर घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात। हम

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

समझे अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले

0: किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
1: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
0: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।